0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री रामदूताय नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में चल रहे इस विशेष कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के परिपूर्णतम रूप भागवत जी कहते हैं कृष्णास्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण में भगवान के सभी गुण प्रकट थे जो उनके चरित्रों से स्पष्ट होते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय करने की गुंजाइश नहीं है। संशय करने वाले विनाश को प्राप्त होते हैं, वे सुखी नहीं हो सकते। संशयात्मा विनिश्यन्ति न सुखम न संशयात्मनः। श्रोताओं, कृष्ण शब्द का अर्थ है कृषिर भावाचक शब्दे, कृषि भावाचक शब्देष्ण निर्वित्त वाचक तयोरै वाक्यम परः ब्रह्म कृष्ण इत्याभिधीयते। भगवान श्री कृष्ण सर्वकला पूर्ण है और यह उनकी समय समय की लीलाओं से स्पष्ट हो जाते हैं, किंतु चंद्रवंश में अवतरित होने से वे सुदश कला पूर्ण कहे जाते हैं। उन विशिष्ट 16 कलाओं के नाम इस प्रकार है। सबसे पहला अन्न, जिससे जीवन मात्र की उत्पत्ति होती है। अन्न भवंती भूतानि, अन्न से तृप्ति होती है, तथा छंदोग्य उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यंजनात्, उनको ब्रह्म जानकर उनकी कभी निंदा ना करें। उनकी निंदा करने वाले ब्रह्म की निंदा कर रहे हैं। दूसरा कला है स्वजनों की सृष्टि हुई। यह दूसरी कला अन्न और प्राणों से मिलने से हुई। इससे स्वजनों में चलने फिरने की शक्ति आ जाती है। फिर भगवान कृष्ण के तीसरा कला अन्नमय प्राणमय मनोमय की है। इसी से अंधजनों का जन्म हुआ और इनमें प्रेम आता है। चतुर्थ कला अन्न प्राण मन और विज्ञान की है। इसी से जरायुजों की सृष्टि हुई। पंचम कला अन्न प्राण मन विज्ञान और आनंद की है। पंचकोश मनुष्य मात्र में साधारण्यता होते हैं। इन सब का विस्तृत वर्णन अनेक ग्रंथों में आता है। फिर भगवान कृष्ण के षष्ठ कला उनकी विभूति उनकी ऐश्वर्य की है, जो मनुष्यों के कर्मानुसार न्युधादिक होते हैं, किंतु भगवान में एक रस परिपूर्ण है। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के 10वें अध्याय में अपने विभूतियों गिनाते हुए अंततः 41वें श्लोक में संपूर्ण विभूतियों मेरे से ही तेज अंश से उत्पन्न होते हैं, ऐसा भगवान

कृष्ण कहता है, सप्ता कला धर्म की है जिसके रक्षार्थ सदैव भगवान सनदत करते हैं। भगवान की रची सृष्टि भी धर्म के आधार पर स्थित है। जहां धर्म में कुछ भी विषमता आई अथवा धर्मनाशक मंडल उदय हुआ, वहीं भगवान किसी न किसी रूप में स्वयं प्रकट होकर के धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान ने अपनी यही विरुद्ध गीता के 4वें अध्याय में भी बताया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अष्टम कला है सर्व प्रकार के अर्थ भगवान की कृपा से सुलभ होते हैं। भगवान ही परम अर्थ माने जाते हैं। नवम कला है ज्ञान। सब प्रकार का परिपूर्ण ज्ञान भगवान में है। वह ज्ञान स्वरूप है। उनकी कृपा कटाक्ष के बिना ज्ञान का प्रकाश असंभव होते हैं। और दसवां कला है तेज, जिसको हम प्रकाश कहते हैं। संसार में जितना प्रकाश, जितने ज्योति है, सब भगवान कृष्ण की सत्ता से है। सारा विश्व प्रकाश्य है और भगवान कृष्ण प्रकाशक है। एकादश कला है यश। भगवान कृष्ण यश के अथाह सागर है। संसार का कोई भी व्यक्ति उनकी यश की था नहीं पा सकते। वेद भी नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं। शेष भी सहस्रमुख वाले, 2 सहस्र जिह्वाओं वाले भगवान के नित्य जीवन सुयशों का गान करने में असमर्थ हो जाते हैं। और फिर भगवान कृष्ण के 2वी कला है योग की। भगवान श्री कृष्ण समस्त योगियों के ईश्वर है, इसलिए भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्ण। फिर उसके बाद 3वी कला में सर्वज्ञाता है। भगवान ही पूर्ण सर्वज्ञ है। शेष सब में थोड़ी बहुत अल्पज्ञाता का भास झलक दिखता है। ब्रह्मा का जो स्वरूप है वह भगवान श्री कृष्ण का है। ब्रह्मा का बचरे तथा ग्वालों का छिपाना, शंकर का मोहिनी रूप देखकर मोहित होना, नारद का विश्व मोहिनी के संग विवाह करने के लिए भगवान का रूप मांगना, इंद्र का वज्रप्रल कोप करना आदि आदि सर्वज्ञाता के अभाव का ही आभास नहीं होते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वज्ञ है। 4वीं कला है इच्छा की। भगवान की इच्छा शक्ति से ही सृष्टि की रचना होती है। इनकी इच्छा अनुसार ही यह पूरा सृष्टि चलता है। भगवान की इच्छा शक्ति, इनकी योग माया, इनकी महामाया, इन सब को लेकर के यह सृष्टि आगे बढ़ता है। और 5वीं कला है सर्वतंत्र स्वतंत्रता। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में भी वर्णन करते हैं, भगवान के निमित्त परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। और 16वां कला है सर्वसिद्धि। संसार के सभी कार्य भगवान की कृपा से ही सिद्ध हो जाते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये 16 कलाओं होने के कारण इनको साक्षात परब्रह्म का अवतार माने जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत जी कहते हैं, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। चलिए आज की कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। पिछली आधिकारिक गणना 2013 में हुई थी, जब मॉरिशस में लगभग 3 लाख आवारा कुत्ते पाए गए थे। तब से इस संख्या में क्या बदलाव आया है, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और परोपकारियों का मानना है कि ये संख्या ज़रूर बढ़ी है। अब एम्सो जल्द ही इन जानवरों की नई गिनती शुरू करने वाला है। पहले की तरह रास्तों पर चलकर और पारंपरिक ट्रांसेक्ट सर्वे के बजाय अब इस कार्रवाई के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। एम्सो की तरफ से अब ड्रोन और थर्मल इमेजिंग के इस्तेमाल से आसमान से कुत्तों की गिनती की जाएगी। इन सेवाओं के लिए मार्केट रिसर्च का टेंडर पिछले फरवरी महीने में जारी किया गया था। ये एक ऐसा माध्यम है जिसका इस्तेमाल शायद ही कहीं और किया गया हो। यदि ये अभियान आगे बढ़ा तो मॉरिशस निश्चित रूप से इसे लागू करने वाला दुनिया के प्रथम देशों में से एक होगा। समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समाज के लिए सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बना रहा है। हालांकि इससे पैदा होने वाली संभावनाओं के अलावा इसे नियमबद्ध करने का मुद्दा भी अहम बनता जा रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अफ्रीकी देशों की तैयारी का स्तर जानने के वास्ते हाल में अफ्रीकन AI गवर्नेंस इंडेक्स नाम का एक नया टूल लॉन्च किया गया है। इसकी जिम्मेदारी होगी अफ्रीकी महाद्वीप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों, संस्थाओं और मैकेनिज्म्स का मूल्यांकन करना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, नेपाल में हाइड्रो पावर परियोजना स्थलों के सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस आपदा में लापता हुए 2500 से ज्यादा लोग इन सुरंगों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। बचाव टीमों में भारत और चीन के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। पिछले कई दिनों से अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। पिछले बुधवार को अचानक उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 794 तक पहुंच गई है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है, जो आज दिन की 10 बजे तक बरकरार रखी जाएगी। मस्करिंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, खासकर देश के पूर्वी, दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं और रह रहकर बारिश होती रहेगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। जनता से खास सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। ऊंची जगहों पर न जाएं और खासकर गाड़ी चलाते हुए सड़कों पर क्रॉसविंड वाली जगहों पर खास सावधानियां बरतें। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी और इनका असर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों तथा तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से इन इलाकों में न जाने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:19 पर सूर्योदय, शाम को 6:01 पर सूर्यास्त होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Rise and shine. Start fresh.

0: सुबह के 6:05 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। जी हाँ, आज सोमवार 31 अगस्त 2026 और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए हर सोमवार की तरह। जी हाँ दोस्तों, एक नई सुबह लेकर आई है, नई रोशनी और नए मौके। तो मुस्कुराइए, दिल को खुश रखिए और शुरू कीजिए अपना दिन एक खूबसूरत सोच के साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर एक नई सुबह के साथ और सुनते हैं जागृति आचार्य मोहन जी के साथ।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: वेद के सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते। मैं आचार्य मोहन आर्य श्रुत बंधु आज आप सभी के मध्य एक वेद मंत्र की व्याख्या को लेकर उपस्थित हुआ हूं और विषय है ईश्वर का। सामान्यतः व्यक्ति यदि ईश्वर का विषय सुन ले तो उसके मन मस्तिष्क में एक अलग प्रभाव आता है। आज हमारे समाज की परिस्थिति ऐसी हो गई है बंधुओं, हम ईश्वर को जानने वाले विशेषज्ञों के पास में नहीं जा रहे हैं। सामान्य जगत ऐसे व्यक्तियों के पास में जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानता है या ईश्वर के गुणों को नहीं जानता है या ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानता है, एक बात विचार करना, मनुष्य को यदि किसी भवन आदि बनाने की आवश्यकता है तो वो एक मिस्त्री के पास में जाता है, एक इंजीनियर के पास में जाता है। वहीं यदि उसे किसी बीमारी को ठीक करने की आवश्यकता हो तो वह एक डॉक्टर के पास जाता है। और यदि किसी केस आदि का कार्य हो तो एक वकील के पास में जाता है। तात्पर्य यह है कि जब भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है हम उसके विशेषज्ञ के पास में जाने का प्रयास करते हैं। परंतु जब ईश्वर को जानने की इच्छा हो तो हम विशेषज्ञों के पास में क्यों नहीं जाएं? बंधुओं, हमें जब भी ईश्वर के बारे में जानने की इच्छा हो हम लोग ईश्वर को जानने वाले विशेषज्ञों के पास में, वेद के विद्वानों के पास में जाने का प्रयास करें। और कोई विशेषज्ञ यदि आपको प्राप्त नहीं हो तो आप स्वतः वेदों के पास में जा सकते हैं और वेदों को उठा करके उसके वेद मंत्रों से यह जान सकते हैं कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, वह क्या कार्य करता है, कितने प्रकारों में वो जाना जाता है, किस किस प्रकार के उसके नाम हैं। तो उसी विषय को लेकर के ये वेद मंत्र ऋग्वेद का बड़े ही अच्छी भावना में हम सबको एक भाव प्रदान कर रहा है। और वेद मंत्र कह रहा है, ओम इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि माहु रथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। बंधुओं, वेद मंत्र सुनकर आपके मन मस्तिष्क में भावना स्पष्ट हो गई होगी कि वेद मंत्र हमें समझाने का प्रयास कर रहा है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ईश्वर एक ही है लेकिन सद्बुद्धि और विद्वानों के माध्यम से उसके अनेक नाम हमारे बीच में प्रकट होते हैं। वेद मंत्र का बड़ा सामान्य सा अर्थ है, विप्राह विद्वज्जन, एक को परमेश्वर युक्त मित्रवत वर्तमान श्रेष्ठ सर्वव्याप्त

विद्युत आदि लक्षण युक्त अग्नि को बहुत प्रकार से बहुत नामों से कहते हैं, अर्थात उस एक परमेश्वर को। हम लोग उसके गुणों को जानते हुए अनेकों नामों से उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। इसके अनंतर वह प्रकाश नामों से और प्रकाशित गुणों के कारण, प्रसिद्ध प्रकाशमय आदि के कारण सुवर्ण नाम से जाना जाता है। सुंदर पालनादि कर्मों के द्वारा वह सृष्टि का पालन कर रहा है, पालनमान वो व्यक्ति माना जाता है, महान आत्मा वाला है, इत्यादि बहुत प्रकार से बहुत नामों से उसे कहा जाता है। चिंतन इतना ही करना है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सब शक्तियों का राजा, सब देवों का देव, इस परम संसार को चलाने वाला, इस संसार का प्रलय करने वाला, इस संसार को उत्पन्न करने वाला, हम सबके कर्मों का फल देने वाला, वेद आदि वेद का ज्ञान प्रदान करने वाला, केवल एक ही परमेश्वर है, उसे जानने की आवश्यकता है। और हमारा शास्त्र भी कहता है कि वही पुरुष विशेष होगा, वही ईश्वर होगा, जो क्लेश कर्म आदि विपाक आदि से दूर होगा। जैसे योग दर्शन का वो सूत्र कह रहा है, क्लेश कर्म विपाका से अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, उसे ही ईश्वर मानना, जो अविद्या आदि पांच क्लेशों से दूर है, कर्मफल तथा इच्छाओं से रहित है, उस पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। बंधुओं, उसी ईश्वर का हम ध्यान करें, उसी का चिंतन करें और इस वेद मंत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि ईश्वर एक है और हमारे समस्त शास्त्र, वेदादि जितने शास्त्र हैं, सभी उसे एक ही बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपके बीच में रखूं, तो वेद का एक मंत्र आता है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न नाप्युच्यते, न पंचमो न षष्ठ न सप्तमो नाप्युच्यते, नाष्टमो न नवमो न दसमो नाप्युच्यते, वो न दो है न तीन है न चार है न पाँच है न छः है न सात है न आठ है न नौ है न ही दस है, वह केवल एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है जो इस संसार को चलाने वाला है। ऐसे ही हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग उदाहरण देखते चलें तो प्रत्येक जगहों पर ईश्वर का एक ही स्वरूप देखा जाएगा। जैसे एकेश्वरवाद के समर्थन में एक मंत्र आता है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा। यहाँ देव शब्द जो लिया गया वह एक वचन में लिया गया, अर्थात ईश्वर एक है। उसी ईश्वर स्तुति प्रार्थना का दूसरा मंत्र है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। यस्य शब्द एक वचन में लिया गया क्योंकि ईश्वर एक है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, वह एक ही आपका पति है, पति परमेश्वर परमात्मा एक ही है। यह प्राण तो निमिषतो महित्वेक इद्राजा, एक ही वो राजा है। येन द्यो पृथ्वीच दृढ़ा, येन ये शब्द एक वचन में लिया गया, ईश्वर एक है। प्रजापति न त्वदेतानन्यो, प्रजापति वह प्रजापति एक ही है। सनो बंधुर्जनिता, यहाँ पर भी स और बंधु एक वचन में प्रयोग हुआ, अर्थात ईश्वर एक है। अग्ने नय सुपथा, अग्ने शब्द एक वचन में लिया गया। ऐसे ही जहाँ पर भी आप वेद मंत्रों को या शास्त्रों को उठाकर देखेंगे तो आपको ईश्वर एक वचन में अर्थात एक की महत्ता दिखाते हुए कहेगा कि ईश्वर एक है, एक है, एक ही है। आज हम उसे अनेकों नामों से जानते हैं, भले ही अनेकों नामों से जाने, अनेकों नामों में उसकी उपासना करें, परंतु उस शक्ति को, उस परम अग्नि को हम एक ही स्वरूप में जानने का प्रयास करें। बंधुओं, जब हम प्रार्थना के प्रकरण में प्रार्थना मंत्र बोलते हैं, तेजोसी तेजो मई देहि, वीर्यमसि वीर्यम मई देहि, ओजोस्य ओजो मई देहि, यहाँ पर भी जो असी शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये एक वचन में ही हम ले रहे हैं, क्योंकि हम दर्शा रहे हैं परमात्मा एक ही है। ऐसे ही वेद

इसके अतिरिक्त जितने भी दर्शन शास्त्र हैं वह भी परमात्मा को एक वचन में ही वर्णित करते हैं। जैसे योग दर्शन का हम सूत्र लें तो योग दर्शन कह रहा है स पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात्, स वह एक है। वेदांत दर्शन कह रहा है जन्माद्यस्यतः, यस्य शब्द का प्रयोग किया गया। सांख्य दर्शन कह रहा है न सिद्ध शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्यथो गस्तद्योगाहते, यहाँ पर भी अश्य शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि ईश्वर एक ही मान

0: जब देखने के लिए चले तो वहाँ ईश्वर की महत्ता एकेश्वरवाद में ही आपको देखने को मिलेगी। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी ऋषिवर देव दयानंद लिखते हैं, स एष एक वृदेक एव सर्वेस्मिन् देवा एक वृतो भवन्ति। वह देवों का देव महादेव एक ही है, हम भले ही उसे अनेकों नामों में जान लें, अर्थात उसे एक ही नाम से हम प्रकट करें। और ईश्वर का मुख्य नाम वेदादि शास्त्रों में बताया गया ओम, तो ओम के माध्यम से हम उस ईश्वर की उपासना करने का प्रयास करें। बंधुओं, इसके अतिरिक्त भी ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रथम नियम में जब लिखते हैं कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है, सबका आदि मूल परमेश्वर एक ही निरूपित किया है। आर्य समाज के द्वितीय नियम में भी ऋषिवर देव दयानंद जब लिखते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान है, तो वहाँ पर भी जो वो लिखते हैं तो कहते हैं कि जो सृष्टि करता है उसी की उपासना करें, अर्थात अनेकों का प्रकट नहीं किया, एक ही एक वचन में प्रयोग किया। तो बंधुओं, हम सब लोग इन प्रमाणों को जानते हुए वेद की उस वाणी को अपने जीवन में धारण करें कि ईश्वर एक है, उसे अनेकों नामों से जाना जा सकता है। और जिस वेद मंत्र की बात हम सब लोग कर रहे थे, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ईश्वर एक है, अनेकों नामों से विद्वान लोग उसे जान सकते हैं। तो हम एकेश्वरवाद को मानते हुए एक प्रभु की उपासना करें तो हमारे जीवन में आनंद आएगा और हमारा जीवन उन्नत होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: छः बजकर 23 मिनट हुए हैं। जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी के सफ़र में हमें चलना ही अकेला है। ज़िंदगी का सफ़र हर किसी का अपना होता है, कभी साथ मिलता है, कभी रास्ते तन्हा हो जाते हैं, लेकिन जब रास्ता मुश्किल हो तब भी कदम रुकने नहीं चाहिए। कभी कभी अकेला चलना ही हमें अपनी असली ताकत से मिलाता है। इसलिए हौसला रखिए, अपने रास्ते पर विश्वास रखिए और बस चलते रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सफ़र जारी रखते हैं। चलिए ये प्यारा गाना लता जी की आवाज़ में और इसी गीत के साथ हम भरेंगे 6:30 बजे के समाचारों के, और हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाइए, सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। एमसो ड्रोन और थर्मल इमेजिंग के इस्तेमाल से आसमान से आवारा कुत्तों की गिनती का एक अभियान शुरू करने वाला है। यदि यह अभियान सफल हुआ तो मॉरिशस निश्चित रूप से इसे लागू करने वाले

0: दुनिया के प्रथम देशों में से एक होगा। AI से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए अफ्रीकी देशों की तैयारी का स्तर जानने के वास्ते हाल में अफ्रीकन AI गवर्नेंस इंडेक्स नामक एक नए टूल की लॉन्चिंग की गई। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जल्द ही मॉरिशस प्रतिभाओं की तलाश के वास्ते एक प्रतियोगिता शुरू करेगा, साथ ही एक मॉरिशस एंटरटेनमेंट एकेडमी का निर्माण होगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, नेपाल में उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 794 तक पहुंची। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली आधिकारिक गणना 2013 में हुई थी, जब मॉरिशस में लगभग 3 लाख आवारा कुत्ते पाए गए थे। तब से इस संख्या में क्या बदलाव आया है, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और परोपकारियों का मानना है कि ये संख्या बढ़ी है। अब MSAW जल्द ही इन जानवरों की नई गिनती शुरू करने वाला है। पहले की तरह रास्तों पर चलकर और पारंपरिक ट्रांसेक्ट सर्वे की बजाय अब इस कार्यवाही के लिए नई टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल होगा। MSAW की तरफ से अब ड्रोन और थर्मल इमेजिंग के इस्तेमाल से आसमान से कुत्तों की गिनती की जाएगी। इन सेवाओं के लिए मार्केट रिसर्च का टेंडर पिछले फरवरी महीने में जारी किया गया था। ये एक ऐसा माध्यम है जिसका इस्तेमाल शायद ही कहीं और किया गया हो। यदि ये अभियान आगे बढ़ा तो मॉरिशस निश्चित रूप से इसे लागू करने वाले दुनिया के प्रथम देशों में से एक होगा। चवि बाचू, विधिमासी बोरन।
1: सच तो ये है, खासकर जब हम डेटा को देखते हैं, 2018 में ग्वाटेमाला में 69,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में किए गए एक पायलट प्रोजेक्ट से इसकी कमियां सामने आईं। जमीनी सर्वे के मुकाबले ड्रोन से देखे गए कुत्तों की संख्या काफी कम थी। जिन 3 इलाकों में अध्ययन किया गया उनमें ड्रोन से ज्यादा सिर्फ 34% कुत्ते ही पता चल पाए, जबकि पैदल चलकर गिनती करने पर ज्यादा कुत्ते मिले थे। नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता इस परियोजना के मकसद का तो स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी कामयाबी को लेकर उन्हें चिंता है। खासकर इसलिए क्योंकि इस पहल पर 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होने वाले हैं। MSAW के निदेशक तिंगाहेन गोविंदा सामी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, फिर भी जब से उन्होंने संगठन की कमान संभाली है ये उन्हीं का विचार रहा है। उनका दावा है कि उन्होंने विदेशों में भी ऐसे ऑपरेशन किए हैं, लेकिन पेशेवर गोपनीयता का हवाला देते हुए वे ये बताने से इनकार करते हैं कि ये ऑपरेशन कहाँ किए गए। तरीके या मेथोडोलॉजी को लेकर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के साथ बातचीत चल रही है, यहाँ भी जानकारी बहुत कम है। निदेशक इसे एक संवेदनशील मामला बताते हैं। हालांकि वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि ड्रोन स्पेशलाइज्ड कई कंपनियों ने पहले ही इसमें दिलचस्पी दिखाई है। जहां तक NGO की बात है तो वे एक साफ बात की ओर इशारा करते हैं। ड्रोन उड़ाना एक बात है और डेटा का विश्लेषण करना बिल्कुल अलग बात है।
0: मॉरिशस में ईंधन की कीमतें निर्धारित करने में प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट अहम भूमिका निभाता है। ये सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मंडी में दामों के उतार चढ़ाव का असर कम करने में मदद करता है। हालांकि भारी घाटे के कारण ये स्थिति पब्लिक फाइनेंस के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। अर्थशास्त्री मनीषा दुखोनी का मानना है कि लंबी अवधि के संतुलन के लिए व्यावहारिक उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है। निर्मा नारायण रेड्डी ने उनसे बात की।
2: Donc un déficit du price stabilization account, ça veut dire que
3: अर्थशास्त्री मनीषा दुखोनी कहती हैं, प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट में घाटा होने का अर्थ है जब वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ रही हैं तो STC यानी सरकार को स्थानीय स्तर पर ईंधन के दामों में संतुलन लाना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्हें दाम कम करने में दिक्कतें आ रही हैं। हम जानते हैं कि मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन के दाम बढ़कर $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद कीमतें कम हुई हैं और अब दाम $80 से $90 प्रति बैरल तक पहुंचे हैं।
2: Et aujourd'hui, ça tourne autour de $80-$90 le baril.
0: समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समाज के सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बना रहा है। हालांकि इससे पैदा होने वाली संभावनाओं के अलावा इसे नियमबद्ध करने का मुद्दा भी अहम बनता जा रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अफ्रीकी देशों की तैयारी

0: का स्तर जानने के वास्ते हाल में अफ्रीकन एआई गवर्नेंस इंडेक्स नामक एक नए टूल की लॉन्चिंग की गई है। इसकी जिम्मेदारी होगी अफ्रीकी महाद्वीप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियों, संस्थाओं और मैकेनिज्म्स का मूल्यांकन करना। निर्मा नारायण रेड्डी, गीता स्मरण।
1: अफ्रीकन एआई गवर्नेंस इंडेक्स अफ्रीकन यूनियन के 55 सदस्य देशों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने और उसे रेगुलेट करने की क्षमता का आकलन करता है। ये विश्लेषण 8 मुख्य आधारों और 80 इंडिकेटर्स पर आधारित हैं, जिन प्रमुख क्षेत्रों की जांच की जाती है। उनमें राष्ट्रीय रणनीतियां, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, संस्थागत क्षमताएं, नैतिकता और अधिकारों से जुड़े मुद्दे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, कौशल और एआई से संबंधित निवेश शामिल हैं। इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 22 अफ्रीकी देशों के पास पहले से ही एक समर्पित राष्ट्रीय एआई रणनीति है, जबकि 21 अन्य देश अभी ऐसी रणनीति विकसित कर रहे हैं। मॉरिशस के लिए डैशबोर्ड अभी 60 का पॉलिसी प्रोग्रेस स्कोर दिखाता है। ये इस क्षेत्र में सार्वजनिक नीतियों की प्रगति को मापने वाला एक इंडिकेटर है। हालांकि ये अभी देश के कुल स्कोर को नहीं दर्शाता है। सभी चुने गए मानदंडों के आधार पर 55 अफ्रीकी देशों की पूरी रैंकिंग इस साल की चौथी तिमाही में जारी की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य अफ्रीका में एआई गवर्नेंस की स्थिति का अवलोकन प्रदान करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां और प्रयासों की आवश्यकता है।
0: स्थानीय अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, उभरते हुए स्क्रीन राइटर्स तथा सिनेमा के शौकीन लोगों के लिए ये खबर। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जल्द ही मॉरिशन प्रतिभाओं की तलाश के वास्ते एक प्रतियोगिता शुरू करेगा। देश में फिल्म उद्योग को नई गति देने के मकसद से इस परियोजना के अंतर्गत एक मॉरिशस एंटरटेनमेंट एकेडमी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक स्थानीय स्टूडियो और कैंपस की स्थापना भी शामिल है। जुराम गुलाम, रजनी बिकर।
2: हल्की रोशनी वाले कक्ष के द्वार पर लाल रंग के सोफे मानो कोई महोत्सव। हर कोई अपने कार्य एवं भूमिका निभाने की तैयारी में। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना चलाना चाहता है, स्क्रिप्ट से लेकर स्क्रीन तक के सफर तक। इस तरह मॉरिशस एंटरटेनमेंट एकेडमी कायम करना, सिनेमा के एक स्टूडियो के साथ साथ मॉरिशस में एक कैंपस भी। MFDC के CEO केविन गति ने कहा, यही उम्मीद है कि बॉलीवुड का समा बंध जाए। आज जो ढांचे कायम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए तैयार खड़े हैं, साथ ही हमारी स्थानीय कहानियों को भी विदेश की ओर भेजने के लिए तैयार है। परियोजना की कुल लागत कोई 5 बिलियन रुपए। चूंकि ये रकम आसमान से तो मिलने वाली नहीं, ना ही किसी स्पेशल इफेक्ट से, अतः MFDC ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के वास्ते एक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। मकसद है उनसे पहली भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। द स्टूडियो ग्रुप के फाइनेंस एवं इन्वेस्टमेंट प्रमुख मेरेडिथ ऑरेंट ने कहा,
3: sometimes sports and music and at the heart of these campuses is education and training.
2: ये फिल्म स्ट्रीमिंग है, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन, गेमिंग भी, कभी पोज, कभी संगीत। कैंपस में मुख्य रूप से शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा स्थानीय नौजवानों के लिए, ताकि यहाँ उद्योग कायम हो, न केवल स्टेज तैयार करें। कास्टिंग पर पॉल ब्रेट मौजूद, वे बर्तानी सिनेमा के प्रोड्यूसर एवं फाइनेंसर हैं। मुख्य रूप से उसका वाली फिल्म द किंग्स स्पीच या लेजिस्कू द रॉ और अमेरिकी कॉमेडी फिल्म शेफ के लिए, जिसमें डस्टिन हॉफमैन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और स्कारलेट योहानसन शामिल। द स्टूडियो ग्रुप के सह संस्थापक एवं प्रोड्यूसर पॉल ब्रेट ने कहा,
4: यहाँ पर
2: भारी संभावनाएं हैं। एक छोटा टापू है, दुनिया के कई इलाकों के लोग हैं और जियोग्राफिकली भी अफ्रीका के साथ बहुत ही अच्छे संपर्क है। पूरे महाद्वीप में सबसे विकसित राष्ट्रों में से एक, गल्फ राष्ट्रों के साथ भी बेहतरीन संपर्क है, चीन के साथ भी ये एक बहुत ही लोकप्रिय गंतव्य है। दूसरी तरफ अपना रुमाल निकाल कर रखने की तैयारी कर लीजिए, मागी माओ या तुलसी की ही तरह एक शो होगा जिनके 200 एपिसोड्स होंगे। इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है।
5: Sur des histoires qui vont parler de Maurice,
2: मेजावा अफ्रीका के प्रोड्यूसर अलेक्जेंड्र रिडो ने कहा, ऐसी कहानियां हैं जो मॉरिशस के बारे में बताती हैं, मॉरिशन जनता के लिए, साथ में इलाकाई दर्शकों के लिए भी।

0: दुनिया भर में लोगों को देखने और जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह यहाँ लोग खास जिंदगी जी रही हैं। ऐसे में स्थानीय प्रोड्यूसरों को भी कैमरा एक्शन बोलने की चाह। मॉरिशन प्रोड्यूसर निवेन पारिमानन ने कहा, आधारशिला रख रही है ताकि 10-15 वर्षों या इससे कम अवधि में ही एक वास्तविक फिल्म उद्योग हो, हर साल कलाकार हो, फिल्म निकले। तब तक पॉपकॉर्न तैयार रखिए। MFDC की ओर से जल्द ही स्थानीय लेजेंड पर आधारित एक फिल्म प्रसारित की जाएगी। संकेत के लिए यही बता दें कि वे स्पाइडरमैन की तरह पोशाक तो नहीं पहनते, पर नग्न ही घूमते थे। एक विनाशकारी तूफान के गुजरने के बाद लोगों को डराते थे।
1: अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि में मदद करते हुए जनता की भविष्य की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए मूल ढांचों पर फिर से गौर करना, ये दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में 20 से 25 अगस्त के बीच आयोजित सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिंपोशन सिडसा 2026 में चर्चा में रहे मुख्य मुद्दों में से एक रहा। मॉरिशस के सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश ने इस सम्मेलन में मॉरिशस का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें अफ्रीकी महाद्वीप में मूल ढांचा विकास से जुड़े विभिन्न साझेदार एकत्र हुए थे। बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, नेपाल में हाइड्रो पावर परियोजना स्थलों के सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस आपदा में लापता हुए 2,500 से ज्यादा लोग इन सुरंगों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। बचाव टीमों में भारत और चीन के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। पिछले कई दिनों से अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। पिछले बुधवार को अचानक उतरी इस विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 794 तक पहुंच गई है। उधर उत्तरी साइप्रस के समंदर में एक यात्री जहाज के उलट जाने से कम 8 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लापता बताए जा रहे हैं। जानकारियों के मुताबिक फेरी में 259 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। प्रारंभिक जांच के तहत लापरवाही के आरोपों पर जहाज के कैप्टन और 7 क्रू सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों और तेज हवाओं की चेतावनी जारी है, जो आज सुबह 10 बजे तक बरकरार रखी जाएगी। मास्कारेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जा रहे वाले जोरदार आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान खासकर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं और रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं और जनता से खास सावधानियां बरतने की मांग की जाती हैं। ऊंची जगहों पर न जाएं और क्रॉस विंड्स वाली जगहों पर सड़कों पर खास सावधानी बरतें। दूर समंदर में तथा कुछ लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है। दूर प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। इनका असर खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों तथा तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। इससे के लिए मछुआरों तथा समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से दूर समंदर और इन तटीय इलाकों में भी न जाने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:19 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:01 पर सूर्यास्त होगा।

0: देश विदेश की नई खबरों के साथ ही मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में कादिया हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुनिए। तमागे रोड शामुनी में, तमागे रोड शामुनी में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड श्री अनिरुद्ध जयराम, श्री अनिरुद्ध जयराम जो सोरेन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे, इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके बेटे श्री वशील जयराम के मकान तमागे रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपा शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडिया 2:30 PM। फॉरेस्ट लेन फ्लोरियाल में, फॉरेस्ट लेन फ्लोरियाल में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड श्री गिरजा कुमार अजोदा, श्री गिरजा कुमार अजोदा जो डोक नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके बेटे श्री गुलशन अजोदा के मकान फॉरेस्ट लेन फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडिया 3 PM। हाईलैंड्स रोड फिनिक्स में, हाईलैंड्स रोड फिनिक्स में 90 साल के 90 ईयर्स ओल्ड जनाब रोसेन अब्दुल्ला, जनाब रोसेन अब्दुल्ला जो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज सुबह 10 बजे, इनका जनाजा सुबह 10 बजे इनके मकान हाईलैंड्स रोड फिनिक्स से उठाकर दफनाने के लिए थामा मेल का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। नंबर 85 रॉयल रोड कोहोमोडेल में, नंबर 85 रॉयल रोड कोहोमोडेल में 95 साल की 95 श्रीमती महालक्ष्मी कोरलापू बंगारी, श्रीमती महालक्ष्मी कोरलापू बंगारी पैदाशी नाम चीनिया, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके मकान नंबर 85 रॉयल रोड कोहोमोडेल से उठाकर दफनाने के लिए सेंट जॉर्ज पेचिथरिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। नंबर 45 मोंसेलमा फियानी रिविया दे क्रेओल में, नंबर 45 मोंसेलमा फियानी रिविया दे क्रेओल में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड श्रीमती हीरामती सी गुलाम, श्रीमती हीरामती सी गुलाम पैदाशी नाम गणेश जो बाबून नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनके पति श्री बानू सी गुलाम के मकान नंबर 45 मोंसेलमा फियानी रिविया दे क्रेओल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। मरामाजो गुडलैंड्स में, मरामाजो गुडलैंड्स में 32 साल के 32 ईयर्स ओल्ड श्री जेविन ग्रीधर, श्री जेविन ग्रीधर जो चिपची नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके पिता श्री भगवान दास ग्रीधर के मकान मरामाजो गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाहुश गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM।

साल की 78 years old श्री धनेश बैजनाथ जो धनेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे लाशा पलौदौत एलियंसन्स रॉयल रोड बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिवेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रेजिडेंस नाथुआ रोड ट्रियांग गुडलैंड्स में, नाथुआ रोड ट्रियांग गुडलैंड्स में 84 साल की 84 years old श्रीमती सिवरानी परेस जो सोनी नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के बारह बजे इनके बेटे श्री नवीन गणेश के मकान रेजिडेंस नाथुआ रोड ट्रियांग गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। सिमिट्री रोड अमोरी में 76 साल की 76 years old श्रीमती पांजाली रंगन पिताशी नाम जॉन की जो सरोज नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के ग्यारह बजे इनके मकान सिमिट्री रोड अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अमोरी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी।

0: session today at 11 a.m. Number 9, Père Robert Giraud, Gully Rochebois. Number 9, Père Robert Giraud, Gully Rochebois. 76 साल की, 76 years old, श्री नारायण स्वामी उचामा. श्री नारायण स्वामी उचामा जो तो नारायण नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान नंबर 9 पेर रोबेर जीरो गली रोजबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2 PM. अलीजाक रोड नोवेल फ्रांस में, अलीजाक रोड नोवेल फ्रांस में 49 साल की, 49 ईयर्स ओल्ड श्री मनोज कुमार बैं. श्री मनोज कुमार बैं जो मनोज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती कल्याणी बैं के मकान अलीजाक रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोज बैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टू डेट हाउ फर्स्ट नोन. शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल में, शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल में 39 साल की, 39 ईयर्स ओल्ड श्रीमती शालिनी धनपत भवानी दीन. श्रीमती शालिनी धनपत भवानी दीन पिताजी नाम धनपत जो शालिनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके मकान शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है.
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार नमस्कार. स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है. मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस के हैट्रिक पर द रेड डेविल्स 5-2 से इपस्विच टाउन को हरा पाए. एक ऑन गोल रहा और एक एम्बुमो का. ओल्ड ट्राफिड में गोलों की बरसात, टोटल 7 गोल. वैसे मैच के अंत में सच में मैनचेस्टर शहर में जोरदार बारिश के साथ बादल गरजा, बिजली चमकी. एक संकेत, एक मेटाफर कि ये ऐलान है मैनचेस्टर यूनाइटेड में नए युग की शुरुआत. इसके पीछे कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस आर्किटेक्ट बना. दिसंबर 2024 से पहली बार मार्कुस राशफोर्ड को शुरू से खेलने का मौका दिया गया. कोबी माइनू भी था. ओल्ड ट्राफिड में 7 गोल तो चेल्सी के स्टैमफोर्ड ब्रिज में भी यही कहानी. चेल्सी 4-3 7 गोल थ्रिलर रहा. जावी अलोंजो की टीम 32वें मिनट में 3-0 से आगे थी. लाविया, नेटो और पेड्रो ऑन टारगेट. फिर फर्स्ट हाफ में ही ब्राइटन ने एक गोल किया, याल कुरिये का गोल. सेकंड हाफ में पेड्रो का ओन गोल, स्कोर 3-2. फिर पाल्मा का गोल 4-2. इंजुरी टाइम में पास्कल ग्रॉस ने ब्राइटन का तीसरा गोल स्कोर किया. फाइनल स्कोर चेल्सी 4-3. पहले मैच में 3-2 की जीत, कल 4-3. चेल्सी का अटैकिंग फुटबॉल बढ़िया है पर डिफेंस में छेद हैं. 5 गोल खा चुके हैं. कल मार्टिनेज गोलकीपर था, फिर भी 3 गोल कंसीड किया. जावी अलोंजो की दूसरी जीत पर टाइटल चैलेंज के लिए रक्षा पंक्ति डिफेंस को संभालना होगा, डिफेंस की समस्या को सुलझाना होगा, फिक्स करना होगा. अन्य मैचों में कल लीड्स और ब्रैडफोर्ड के बीच मैच ड्रॉ 1-1. सन्डरलैंड ने फुलहाम को 1-0 से हराया. आज इस सप्ताह का आखिरी मैच एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल. लिवरपूल वाले मैच में सब्स्टिट्यूशन टेबल में गड़बड़ तो था ही, चेल्सी के मैदान में भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. सेकंड हाफ में माइकल ओलिवर और उसके बाकी असिस्टेंट और वा के बीच आपस में बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि माइक्रोफोन और रेडियो नहीं थे. 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ. माइकल ओलिवर को शायद वे दिन याद आ गए जब बिना टेक्नोलॉजी से काम होता था और होता था. स्कॉटिश प्रीमियरशिप में कल रेंजर्स की जीत 1-0 से एबरडीन पर. डंडी 1, हिबेनियन 2, सेंट मिरन 3, मदरवेल 3. इंग्लैंड के लीग 1 में विंबलडन 1, विगान 0, मांसफील्ड 5, ल्यूटन टाउन 2. फ्रांस के लीग 1 में मोनाको ने मार्सेई को 2-0 से हराया. रेन 3, ले मान 2, पारी एफसी 3, नीस 0. स्पेन के ला लीगा में रियल मैड्रिड की शानदार जीत 4-0 से

0: अलागा को पछाड़ा। बेलिंगाम का एक गोल, एम्बापे का गोल, गुलर ने भी स्कोर किया और एक ऑन गोल। डिपोर्चुगो 3 वेलेंशिया 1 सेल्टा वीगो 0 एथलेटिक क्लब 2। जर्मनी के बुंडेसलीगा में फ्रीबर्ग 4 वेडे ब्रेमेन 1 ओर्सबर्ग 3 शाल्के 04-0। इटली के सेरी आ में नापोली की हार, होम मैदान में कोमो ने उसे 2-1 से हराया। इंटर मिलान की भी जीत हुई एवे मैदान में 1-0 से कागलियारी के खिलाफ। लाजियो 1 जिनोवा 0। लियोनेल मेसी का चौका, 4 गोल स्कोर कर पाया। उसकी इंटर मियामी ने मोरियाल को 7-1 से पीटा। काजेमिरो का भी एक गोल रहा। सुआरेज भी स्कोर कर पाया इस मैच में। ट्रांसफर न्यूज, ब्राडली बाकोला के बारे में कुछ खास खबर है नहीं, गायब है। 123 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग ट्रांसफर फी पर मंजूरी हो चुकी है पर हाजिरी अभी तक नहीं दी है। कल ट्रांसफर बाजार में कारोबार बंद हो जाएगा। आर्सेनल का ब्राजीलियन स्ट्राइकर गैब्रियल जेसस 8.5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर बार्सिलोना में जाने वाला है। आर्सेनल से एक और गैब्रियल जा रहा है, गैब्रियल मार्टिनेली अल हिलाल की ओर। उसके लिए 50 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से अधिक मिल सकती है। आर्सेनल में अब बचा है केवल एक गैब्रियल, गैब्रियल मगालाइस। अंडर 18 अकादमी में आतेता का बेटा गैब्रियल आतेता भी है। टोटनहम हॉटस्पर अभी तक नए खिलाड़ियों पर 350 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग खर्च कर चुका है पर खरीदारी समाप्त नहीं हुई। अब एवर्टन से लिमन एंजाई पर नजर है, बदले में रिचार्लिसन एवर्टन में वापस जा रहा है। क्रिकेट, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने आसानी से पाकिस्तान को हराया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान केवल 194 पर सिमट गई। 194 रनों से इंग्लैंड की जीत हुई। वीमेंस टी20 एशिया कप के अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने थाईलैंड को 94 रनों से हराया। 94 रन विन, 9 विकेट खोकर भारतीय टीम 159 रन बना पाई। शिफाली वर्मा टॉप स्कोरर रही 64 रनों के साथ। फिर थाईलैंड की टीम को केवल 65 रन पर ऑल आउट किया। टेनिस, यूएस ओपन में आज अरीना सबालेंका और कामिला ओजोरियो के बीच मैच है। कार्लोस अल्काराज खेलेगा रोमन साफ्यूलिन के खिलाफ। इसी समय नोवाक जोकोविच का मुकाबला मारियानो नावोरी से हो रहा है। लोकल स्पोर्ट्स, MFA चैलेंज कप जीत गया लाक्यूर वेव्स SC को 2 में। लाक्यूर वेव्स ने ISPL डेमिल और डूडू अंडर 20 को हराकर टूर्नामेंट जीता। अब इस 6 सितंबर को खुद 2 में ही लाक्यूर वेव्स लोहा लेगा दक्षिण अफ्रीका की चैंपियन टीम ओलांदो पारेट से। रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है। कल सतानिक रोशतिया की जीत हुई 3-0 से ओलंपिक ब्राम्स्तान के खिलाफ। कालबास में विलेज काउंसिल टूर्नामेंट के फाइनल में कोयराची SC ने 4-1 से लिस्पोर SC को हराया। चैंपियन टीम के गोल स्कोरर रहे उदय राजपाल सिंह, आदेश सूरत सिंह और अनूप होमू। इस्पोर का गोल प्रवेश जहाली का रहा। क्रिकेट में आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा टूर्नामेंट में कल वन हेल्थ जागोर्स की जीत हुई 3 विकेट से AAP लियोपार्ड्स पर। फिर टोमास कुक टाइगर्स की जीत कॉन्टिनेंटल चीताज के खिलाफ। याद दिला दें, ग्रैंड फाइनल अगले 13 सितंबर को SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड्स में। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड में नए युग, न्यू एरा की बात हो रही है पर दिल्ली अभी दूर है। एक बार जीतकर ज़्यादा फरफराना ठीक नहीं होता पर ड्रॉ से बेहतर, हार से बेहतर है जीत 3 अंक खाते में। कहते ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इसी के साथ आगे दीजिए नमस्कार आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनिए सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति। सेंट क्वा के आसपास के इलाके एमिली बासेट, सेंट मारी, इंपास सेंट मारी, रुट बासे नंबर 1 नंबर 2, मोसेल मोला वाले और सोफिया लेन के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि बुधवार 2 सितंबर 2026 दिन के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
3: सूरज की

0: सुबह के 7 बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। जी हाँ, एक बार फिर से और आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। आज सोमवार 31 अगस्त 2026 और मैं उषा कौर यहाँ पर और आपका मनपसंद प्रोग्राम फिर से एक बार प्रस्तुत कर रहे हैं। और बस उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है श्रोताओं, कल जो हुआ उसे जाने दीजिए और आज पर भरोसा रखिए। छोटा सा कदम भी आपको मंजिल के करीब ले जाता है। बस हौसला रखिए, मुस्कुराइए और आगे बढ़ते रहिए। और अभी के लिए चलिए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं चिंतन डॉक्टर शांति महावीर जी के साथ।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: मन जितना शांत हो उतना जीवन स्पष्ट दिखता है। धैर्य हर परिस्थिति को आसान बना देता है। शांत व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है। स्मरण रहे कि हर समस्या का हल होता है, बस स्वयं को स्थिर रखना सीखिए।

7:11 हुए हैं। श्रोताओं, पुराने बॉलीवुड का दौर अपनी सादगी, गहरे जज्बातों और यादगार गानों के लिए आज भी दिल में बसा है। और जब बात हो मुकेश साहब की, तो उनकी आवाज़ सीधा दिल तक पहुंचती है। तो इसी खूबसूरत यादों के सफर को आगे बढ़ते हैं फिल्म दीवाना एक दिलकश गीत के साथ। सुनिए मुकेश साहब की आवाज़ में।

7:16 जी नहीं 17 मिनट हुए हैं। और दोस्तों, बारिश का मौसम, ठंड का मौसम और सोमवार का दिन, बस काम के पहले दिन की एक नई शुरुआत। और मौसम चाहे थोड़ा सुस्त हो, लेकिन दिल और हौसला हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो एक गर्म सी मुस्कान के साथ अपने हफ्ते का पहला दिन शुरू कीजिए और बढ़ते जाइए। और यहाँ पर आपको सुनाने जा रहे हैं रेडियो सुर्खियाँ।

तो जी हाँ, अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम और 8 बजे भोजपुरी समाचार, समाचारों के बाद जी हाँ आपकी राशि और साथ में आप सुनेंगे 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद आपकी आज की चर्चा कार्यक्रम नीतूषा की प्रस्तुति में 11 बजे 10 बजे संक्षिप्त समाचार और समाचारों के बाद आप सुनेंगे भक्ति धारा कार्यक्रम रोशनी की प्रस्तुति में 11 बजे शाम में फरोजन उर्दू प्रोग्राम सायदा सुबह के साथ, दिन के 12 बजे मिसेस दरमिया की प्रस्तुति में मराठी प्रोग्राम और 1 बजे भूलिएगा नहीं आरएससी द्वारा तमिल प्रोग्राम और रत्ना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे रंगारंग प्रोग्राम दोपहर के 1:45 बजे और चाइनीज़ प्रोग्राम होंग के साथ 2 से 2:30 बजे। आपकी पसंद प्रोग्राम रत्ना के साथ आप सुनेंगे 2:30 से 4 बजे और 4 बजे के बाद प्रकाश कार्यक्रम, 4:15 रजेंद्र के साथ तेलुगु प्रोग्राम और 5:30 बजे बच्चों का कार्यक्रम रत्ना की प्रस्तुति में, 6 बजे समाचार और समाचारों के बाद 6:30 चाइनीज़ प्रोग्राम, पुवाना प्रस्तुत करेगी तमिल प्रोग्राम रात के 7 से 7:30 बजे तक, 7:30 बजे स्वराला वेदिका वंदना तेलुगु प्रोग्राम वंदना की प्रस्तुति में और नितिन बापू द्वारा मराठी प्रोग्राम गीत गंगा प्रोग्राम 7:50 पर, 8:10 पर, जी हाँ रात के 8:10 पर देवीना प्रस्तुत करेगी भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम महफिल शब प्रोग्राम अविनाश के साथ, 8:40 पर भोजपुरी तर का प्रोग्राम किरण जान की प्रस्तुत करेगी 9:00 बजे और गिनीशा प्रस्तुत करेगी सुनहरी पर प्रोग्राम 11:00 से 12:00 बजे तक और 12:00 बजे से कल सुबह के 6:00 बजे तक आप सुन पाएंगे हमारा ओवरनाइट प्लेलिस्ट। तो ये थी आप लोगों के लिए रेडियो सुर्खियां, 7:20 हुए हैं।

7:35 हुए हैं, बढ़ते हैं आगे। और जो लोग इस समय काम पर जा रहे हैं तो आपको हम कहते हैं बुकवा। जो लोग ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, क्योंकि अभी बारिश हो रही है, और प्लीज़ सावधानी रखिए।

चलिए श्रोताओं, बढ़ते हैं आगे इस खूबसूरत कार्यक्रम सुबह का नजराना प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। आपके लिए एक छोटी सी कहानी हम लेकर आए हैं हर सोमवार

की तरह एक गांव में रवि नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो रोज़ सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता और शाम को अपने पिता की मदद करता। एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आया, रवि के अंक बहुत कम आए। वो उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। तब उसकी माँ ने कहा, एक हार तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकती। रवि ने अपनी गलतियों से सीखा और भी मेहनत करने लगा। अगली परीक्षा में उसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उस दिन रवि समझ गया कि जीवन में हार वही होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी आए, हमें उम्मीद और मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

7:51 हुए हैं दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और इस खूबसूरत गीत को आप सुनते जाइए। और ये गीत हमें लेकर जाएगा 8:00 के भोजपुरी समाचारों की ओर। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

नमस्ते, पेशवा भोजपुरी के समाचार। गल आधिकारिक गणना 2013 में हो रहा जब मॉरिशस में लगभग 3 लाख आवारा कुत्ता दर्ज करल गल रहा, तब से ई संख्या में कौन बदलाव आनल बाटे एकरा लेके कोनो सटीक जानकारी नहीं उपलब्ध बा। हालांकि इस क्षेत्र में काम करे होला गैर सरकारी संगठन लोग और परोपकारी लोग के मानना है कि ई संख्या जरूर बढ़ल बा। अब एम्सो हाली ई सब जानवर के नवा गिनती शुरू करे चाहता। पहली नियन रास्ता पर चल के आर पारंपरिक

0: ट्रांसेक्ट स वे के बजाय अब इकारे वाई खातिर नवा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल हुई। एमसो देने से अब ड्रोन आर थर्मल इमेजिंग के इस्तेमाल से आसमान से कुत्ता लोग की गिनती करल जाए। ई सेवा खातिर मार्केट रिसर्च के एगो टेंडर गल फरवरी महीना में जारी करल गल रहल। ई एगो ऐसन माध्यम है जेकर इस्तेमाल शायद ही कहूँ परी होल बाटे। जे ये अभियान सफल हो जाए तो मॉरिशस निश्चित रूप से एकरा लागू करे होला दुनिया के प्रथम देश बन जाए। मॉरिशस में ईंधन की कीमत निर्धारित करे खातिर प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट अहम भूमिका निभावेला। इस सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मंडी में दाम के उतार चढ़ाव के असर कमती करे खातिर मदद करेला। हालांकि भारी घाटा के कारण इस स्थिति पब्लिक फाइनेंस खातिर चिंता के विषय बनता। अर्थशास्त्री मनीषा दुकोनी के ई मानना है कि लंबा अवधि के संतुलन खातिर व्यावहारिक उपाय अपनावल जाए के चाहेला। समय के संगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समाज के सब क्षेत्र में अपन महत्वपूर्ण पहचान बनावता। हालांकि एकर से पैदा होए होला संभावना के अलावा एकरा नियमबद्ध करे के मुद्दा पर भी अहम विचार करल जाता। इस सब चुनौती के सामना करे खातिर अफ्रीकी देश के तैयारी के स्तर जाने खातिर हाल में अफ्रीकन एआई गवर्नेंस इंडेक्स नाम के एगो नवा टूल के लॉन्चिंग करल गल है। एकर जिम्मेदारी होए अफ्रीकी महाद्वीप पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार विकास की बढ़ावा देवे खातिर नवा नीति संस्थान आर मैकेनिज्म के मूल्यांकन करेगी। स्थानीय अभिनेता लोग अभिनेत्री लोग उभरल स्क्रीन राइटर्स तथा सिनेमा के शौकीन आदमी लोग खातिर ई अच्छा खबर। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हाल ही मॉरिशन प्रतिभा के तलाशे खातिर एगो प्रतियोगिता शुरू करता। देश में फिल्म उद्योग की नवा गति देवे के मकसद से ही परियोजना के अंतर्गत एगो मॉरिशस एंटरटेनमेंट अकादमी के निर्माण करल जाए जेकर में एगो स्थानीय स्टूडियो आर कैंपस की स्थापना भी शामिल है। अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि में मदद करे खातिर जनता की भविष्य की आवश्यकता की बेहतर ढंग से पूरा करे खातिर मूल ढांचा पर फिरों से गौर करल जाता। ई दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में 20 से 25 अगस्त के बीच आयोजित सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिंपोशियम 2026 में चर्चा पर रहे होला मुख्य मुद्दा में शामिल रहल। मॉरिशस के सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश ई सम्मेलन में मॉरिशस के प्रतिनिधित्व करलनि करमें अफ्रीकी महाद्वीप में मूल ढांचा विकास से जुड़ल विभिन्न साझेदार लोग एकत्र होइलंजा। दूसरा देश की खबर में नेपाल में हाइड्रो पावर परियोजना स्थल के कईगो सुरंग में फसल सैकड़ों जना के बचावे के प्रयास तेज करल जाता। ऐसा आशंका है कि ई आपदा में लापता होल 2500 जस्ती जना इस सब सुरंग में काम करे होला कर्मचारी लोग हवनजा। बचाव टीम में भारत और चीन के विशेषज्ञ लोग शामिल हवनजा। गल एकाद दिन से अंदर फसल आदमी लोग के संगे संपर्क करे की कोशिश करल जाता बकीर हबीले कुछ हासिल नहीं होल बाटे। गल बुध के अचानक उतरल विनाशकारी बाढ़ में मरे होला लोग की संख्या 794 ले पहुंच गल बाटे। उधर उत्तरी साइप्रस के समंदर में गो यात्री जहाज के उलझला से कम 8 जना की मौत होल बा दर्जनों लापता होल हवनजा। इराहल भोजपुरी की समाचार तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

मरने के खबर सुना जा तमागाई रोड शामुनी में 68 बरिस के 68 तो के श्री अनिरुद्ध जोयराम जिस सुरेन नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के दो बज के आधा उनकर माटी आज दिन के दो बज के आधा उनकर बेटा श्री वशील जोयराम के घरे तमागाई रोड शामुनी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कौगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाल जाए। फोरेस्ट लेन फ्लोरियाल में 78 बरिस के 67 तो के श्री गिरजा कुमार ओजोदा श्री गिरजा कुमार ओजोदा जिद्दोक नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के तीन बजे उनकर बेटा श्री गुलशन अजोदा के घरे फोरेस्ट लेन फ्लोरियाल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थ्री ओले के

0: शमशान को मिले जाल जाए। हाईलैंड्स रोड फेनिक्स में 90 बरिस की का तंजीजों के जनाब रोसैन अब्दुल्ला, जनाब रोसैन अब्दुल्ला जिन नान नाम से जसी जान जात रलन, उनकर इंतकाल हो गल बाटे। उनकर जनाजा आज फजर के 10 बजे उनकर घर हाईलैंड्स रोड फेनिक्स से उठा के दफनाए खातिर थ्वामा मेल के कब्रस्तान ले जाल जाए। नंबर 85 रॉयल रोड को मॉडल में 95 बरिस की का कैजों के श्रीमती महालक्ष्मी कोल्लापू बंगारी, श्रीमती महालक्ष्मी कोल्लापू बंगारी पैदाशी नाम चिनिया गुजर गल हवन, उनकर माठी आज दिन के 3 बजे उनकर घरे नंबर 85 रॉयल रोड को मॉडल से उठा के दफनाए खातिर सेंट जॉर्ज पेशी त्रिविया की कब्रस्तान ले जाल जाए। नंबर 45 मोसलमा फैनी रिविया दे क्रियोल में 66 बरिस के 66 के श्रीमती हीरामती सिगुलाम, श्रीमती हीरामती सिगुलाम पैदाशी नाम गणेश जी बाबुन नाम से जस्ते जान जात रलन, गुजर गल हवन, उनकर माटी आज दिन की 11 बज के आधा उनकर पति श्री बानु सिगुलाम के खरे नंबर 45 मोसलमा फैनी रिविया दे क्रियोल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लान मानियो के शमशान को मिले जाल जाए। मदामाजो वुडलैंड्स में 32 बरिस के 32 के श्री जेविन गिरिधर, श्री जेविन गिरिधर जे चिपची नाम से जस्ती जान जात रलन, गुजर गल हवन, उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर पिता श्री भगवान दास गिरिधर के घरे मदामाजो वुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर वाउश वुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाल जाए। 78 बरिस के 78 के श्री धनेश बैजनाथ जे धनेश नाम से जसी जान जात रलन, गुजर गल हवन, उनकर माटी आज दिन के 1 बज के आधा लाशा पेलाव दौंत एलियंसंस रॉयल रोड बुबासन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर श्री बैल के शमशान भूमि ले जाल जाए। रेजिडेंस नाथुआ रोड थ्रियोंग गुडलैंड्स में 84 बरिस के 94 के श्रीमती सियोरानी पुरेस, श्रीमती सियोरानी पुरेस जे सोनी नाम से जैसी जान जात रलन, गुजर गल हवन, उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर बेटा श्री नवीन गणेश के घरे रेजिडेंस नाथुआ रोड थ्रियोंग गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाल जाए। सिमिट्री रोड अमोरी में 76 बरिस के 76 के श्री पंजाले, श्रीमती पंजाली रंगेन, श्रीमती पंजाली रंगेन पैदाशी नाम जौनकी जे सरोज नाम से जस्ती जान रात रलन, गुजर गल हवन, उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घरे सिमिट्री रोड आमोगी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुई के शमशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 9 पेरो बेजीरो गली रोजबा में 76 बरिस के 76 के श्री नारायण स्वामी उचामा, श्री नारायण स्वामी उचामा जे तो नारायण नाम से जस्ती जान जात रलन, वो गुजर गल हवन, उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर घरे नंबर 9 पेरो बेजीरो गली रोजबा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिपाही भूले वाले देपत के शमशान भूमि ले जाल जाए। अलेजाक रोड नोवेल फ्रांस में 49 बरिस के 49 के श्री मनोज कुमार बैं, श्री मनोज कुमार बैं जे मनोज नाम से जस्ती जान जात रलन, गुजर गल हवन, उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती कल्याणी बैं के मकान अलेजाक रोड नोवेल फ्रांस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रोज बैल के शमशान भूमि ले जाल जाए। शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल में 39 बरिस के 39 के श्रीमती शालिनी धनपत भवानी दीन, श्रीमती शालिनी धनपत भवानी दीन पैदाशी नाम धनपत जी शालिनी नाम से जस्ती जान जात रलन, गुजर गल हवन, उनकर माटी काल फजर के 10 बजे उनकर घरे शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जाल जाए। शोक में डूबली सब परिवारों के संगे हमी के संवेदना
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: राशिफल। आइए जानते हैं आने वाला सप्ताह आपकी राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। काम, धन, परिवार और रिश्तों के साथ साथ जानते हैं आपका शुभ अंक और शुभ रंग।
1: आपकी राशि रेडियो मिश एरीज मेष राशि।
0: ये सप्ताह आपके लिए उत्साह और नए प्रयासों का रहेगा। काम में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और आपकी मेहनत पर लोगों का ध्यान जाएगा। धन के मामले में सोच समझ कर कदम उठाए। परिवार में किसी अपने का सहयोग मिलेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखे। लकी नंबर है 9। लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस वृषभ राशि।
0: इस सप्ताह आपको अपने पुराने काम पूरे करने का अच्छा अवसर मिलेगा। धन से जुड़ी स्थिति सामान्य से बेहतर हो सकती है। घर में सुख और शांति बनी रहेगी। किसी करीबी से हुई बात आपको खुशी दे सकती है। फासले लेते समय धैर्य रखें। लकी नंबर है 6। लकी कलर है हरा रंग।
1: जेमिनी मिथुन राशि।
0: आपके लिए ये सप्ताह नए विचारों और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। काम में आपकी बातों को महत्व मिल सकता है। रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। अनावश्यक चिंता से दूर रहना आपके लिए बेहतर होगा। लकी नंबर है 5। लकी कलर है पीला रंग।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह परिवार और अपनों के साथ प्रेम और अपनापन बढ़ाने वाला है। काम में थोड़ी व्यस्तता रहेगी लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। धन को लेकर सावधानी रखें और बिना सोचे खर्च ना करें। किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। लकी नंबर है 2। लकी कलर है सफेद रंग।
1: लेओ सिंह राशि।
0: आपका आत्मविश्वास इस सप्ताह मजबूत रहेगा। काम के क्षेत्र में आपको अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल सकता है। बड़े फैसले जल्दबाजी में ना करें। परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा। अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें। लकी नंबर है 1। लकी कलर है हरा रंग।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: इस सप्ताह मेहनत अधिक रहेगी लेकिन उसका अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। काम को लेकर कोई नई जिम्मेदारी सामने आ सकती है। धन की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बचत पर ध्यान दें। रिश्तों में छोटी बातों को लेकर मन दुखी ना करें। लकी नंबर है 5। लकी कलर है हरा रंग।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: यह सप्ताह रिश्तों में मधुरता लेकर आ सकता है। काम में किसी अपने का सहयोग मिलेगा। धन से जुड़ा कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है लेकिन फैसला ध्यान से करें। अपने मन की बात अपनों से साझा करना आपको हल्का महसूस करा सकता है। लकी नंबर है 6। लकी कलर है गुलाबी रंग।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आपके लिए ये सप्ताह हौसले और दृढ़ निश्चय का है। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। काम में सफलता के लिए लगातार मेहनत जरूरी रहेगी। किसी के साथ व्यर्थ बहस से बचें। अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। लकी नंबर है 9। लकी कलर है गहरा लाल रंग।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: ये सप्ताह आपके लिए सीखने और आगे बढ़ने का है। काम में नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी सोच और परिश्रम दोनों आपको आगे ले जाएंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी पुराने मित्र से बात आपका दिन बना सकती है। लकी नंबर है 3। लकी कलर है पीला रंग।

8:21 हुए हैं। श्रोताओ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जी हाँ, सुबह के इस खूबसूरत घड़ी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने कहा, अभी प्रस्तुत है आपका साप्ताहिक राशि।

0: कैप्रिकॉन मकर राशि।
1: इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी मेहनत और धैर्य रहेगा। काम में धीरे धीरे प्रगति होगी। धन के मामले में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन बचत पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। अपनों के लिए समय जरूर निकालें। लकी नंबर है 8, लकी कलर है नीला रंग।
0: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: नए विचार आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। काम में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात फायदेमंद हो सकती है। धन के मामले में सावधानी रखें। परिवार के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा। अपने फैसलों पर विश्वास रखें। लकी नंबर है 4, लकी कलर है आसमानी रंग।
0: पाइसेस मीन राशि।
1: मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह आपके मन को सुकून देने वाला हो सकता है। काम में आपको अपनी कला और सोच दिखाने का मौका मिलेगा। धन के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। अपनों के साथ मिलेगा और किसी पुरानी चिंता से राहत मिल सकती है। लकी नंबर है 7, लकी कलर है बैगनी।
0: ये थी आपकी राशि रेडियो मशीन। रेडियो मशीन पर
1: तो श्रोताओं, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। याद रखिए, ग्रहों के चल की चाल अपनी जगह है, लेकिन आपकी मेहनत, अच्छी सोच और सही फैसले आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। इसी विश्वास के साथ अपना सप्ताह शुरू कीजिए। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।

जी हाँ दोस्तों, आज चलिए यादों के उस दौर में जब बॉलीवुड के गाने सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि दिल में बस जाते थे। लेट 70s और अर्ली 80s का ज़माना मेलोडी, रोमांस और एवरग्रीन लिरिक्स का खूबसूरत दौर था। तो साथ दीजिए और यहाँ पर आपको हम सुनाने जा रहे हैं हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ 8:50।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस स्मॉल इंडस्ट्री डे हर बरिस मनावल जाला 30 अगस्त के। इ दिन लघु उद्योग स्मॉल इंडस्ट्री के बढ़ावा देवे के और बेरोजगार लोग के रोजगार के अवसर देवे के उद्देश्य से मनावल जाला। भारत जैसन विकासशील देश के आर्थिक विकास खातिर लघु उद्योग के महत्व के भूमिका पर जोर तो देवल ही जाला, लेकिन मॉरिशस जैसन छोटा टापू देश में छोटा उद्योग के महत्व पर और बहुत जोर देवल जाला। और हमने के देश में ये उद्योग तब सबसे जस्ती कामकाजी साबित होल जब हमने के देश में लॉकडाउन चलत रहल, जहाँ पर सब जोन कारोबार बा ठप पर गल रहल, कितने जना नौकरी बिला दिले रहलन सा। और ऐसन में मॉरिशन सरकार स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के जरिए कितने सुविधा देलक, छोटा उद्योग शुरू करे होला लोग के, औरत लोग के विशेष सुविधा देवे के प्रावधान कर गए। और ई लघु उद्योग तब से चल ले आवता, ई रुके के नाम नहीं लेवता। ऊ चाहे कितना भी छोटा उद्योग रही जो छोटा पैमाना पर करल जाता, सब कोई के

0: बहुत सहयोग देवल जाता और सामान्य रूप से मजदूर और श्रमिक के सहायता जस्ती देवल जाला। ये उद्योग जेकर में 10 से 25 लोग मजदूरी के बदले में काम करेलन सा उ लघु उद्योग के अंतर्गत आवेलन सा। लघु उद्योग खातिर सरकार कितने सुविधा देवता, जैसे कि लोन बा, मशीनरी के सुविधा बा, और एकर में औरत लोग के जस्ती से जस्ती जो मौका बा, अवसर बा, उ देवल जाला। और फिर एगो और समस्या बा जेकर से निपटे खातिर ई लघु उद्योग बहुत अच्छा साबित होवेला, और उ है बेरोजगारी के समस्या से निपटे खातिर। जब आप पढ़ल लिखल शिक्षित हवा और आपके आपके मनपसंद नौकरी नहीं मिली, तो सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप अपन लघु उद्योग शुरू करा। लघु उद्योग से आप सकबा एगो मध्यम उद्योग बने और आगे चल के सकबा बड़ा उद्योग भी बने। और जैसे तोहरा बोलत है जा कि ये लघु उद्योग खाली मॉरिशस में नहीं बल्कि विश्व भर में प्रेरित करल जाता सब कोई के करे के, कहे कि अब एगो ऐसा समय चलल बा जहाँ पर देखत हवा एक दिन युद्ध आवता, उधर वायरस फैल जाता, फिर जो क्लाइमेट चेंज की समस्या बा वो भी आवता। तो ऐसन में बहुत ज़रूरी बा कि व्यक्ति अपन पैर पर खड़ा रही, व्यक्ति अपन उद्योग चलाए, और ये जो छोटा उद्योग है वो लोग के हर स्तर पर प्रोत्साहन देवल जाला। जनता के भी प्रोत्साहित कराल जाला कि आपके कुछ खरीदे के होई तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा ब्रांड नहीं खरीदा, बल्कि अपन देश के जो स्थानीय पैदावार बा, ख़ास तौर पर जो छोटा उद्योग बा, स्मॉल एंटरप्राइज, हुआ पर ख़रीदारी करा। कहे कि एकर से आपके देश के इकोनॉमी के फ़ायदा होई, आपके जो जनसाधारण बा उ लोग के प्रगति होई, और साथ में आपके देश सकी खुद अपन पैर पर खड़ा रहे, अपन सामान खुद पैदा करे, और आपके भी कोनो भी समस्या होई तो दूर नहीं पड़ जाए के जब युद्ध के दौरान कोनो नाव नहीं सकता आए, जहाज़ नहीं सकता आए विदेश से, तो एकर पर आपके पैदावार निर्भर नहीं रही। कहे कि आपके पैदावार खुद आपके देश के जो छोटा एंटरप्रेन्योर लोग हवन जा उ लोग ही पैदा करे लन जा। कार्यक्रम के ध्यान से सुन ला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

आज बजकर 55 मिनट हुए हैं श्रोताओं, आपने साथ दिया इस कार्यक्रम में। सुबह का नजराना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला और भूलिएगा नहीं 9 बजे संक्षिप्त समाचार और समाचारों के बाद नीतूषा की प्रस्तुति में आज की चर्चा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। और मैं उषा कौर आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलते हैं बहुत जल्द। आप अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार, शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: गाड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 9 बजे हैं। संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार।
2: नमस्कार नितुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। पिछले आधिकारिक गणना 2013 में हुई थी, जब मॉरिशस में लगभग 3 लाख आवारा कुत्ते दर्ज किए गए थे। तब से इस संख्या में क्या बदलाव आया है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और परोपकारियों का मानना है कि ये संख्या बढ़ी है। अब एम्सो जल्द ही इन जानवरों की नई गिनती शुरू करने वाला है। पहले की तरह रास्तों पर चलने के बजाय अब इस कार्रवाई के लिए नई टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल होगा। एम्सो की तरफ से अब ड्रोन और थर्मल इमेजिंग के इस्तेमाल से आसमान से कुत्तों की गिनती की जाएगी। इन सेवाओं के लिए मार्केट रिसर्च का टेंडर पिछले फरवरी महीने में जारी किया गया था। ये एक ऐसा माध्यम है जिसका इस्तेमाल शायद ही कहीं और हुआ होगा। यदि ये अभियान सफल हुआ तो मॉरिशस निश्चित रूप से इसे लागू करने वाला दुनिया के प्रथम देशों में शामिल होगा। मॉरिशस में ईंधन की कीमतें निर्धारित करने में प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट अहम भूमिका निभाता है। ये सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मंडी में

0: दामों के उतार चढ़ाव का असर कम करने में मदद करता है। हालांकि भारी घाटे के कारण ये स्थिति पब्लिक फाइनेंस के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। अर्थशास्त्री मनीष अदुकोनी का मानना है कि लंबी अवधि के संतुलन के लिए व्यावहारिक उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है। समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समाज के सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पहचान बना रहा है। हालांकि इससे पैदा होने वाली संभावनाओं के अलावा इसे नियमबद्ध करने का भी मुद्दा अहम बन रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अफ्रीकी देशों की तैयारी का स्तर जानने के लिए हाल में अफ्रीकन AI गवर्नेंस इंडेक्स नामक एक नए टूल की लॉन्चिंग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उत्तरी साइप्रस के समंदर में यात्री जहाज के उलट जाने से कम 8 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लापता बताए जा रहे हैं। जानकारियों के मुताबिक फेरी में 259 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे। प्रारंभिक जांच के तहत लापरवाही के आरोप पर जहाज के कैप्टन और 7 क्रू सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हवा आज के चर्चा कार्यक्रम में सबको के प्रणाम नमस्ते। हाँ पन्या तो बरसता मूसल बरसात बरसता तो अपन ख्याल रखिएगा और हमने तुम्हारा स्वागत करे थे जा आज के कार्यक्रम में जो है आज की चर्चा और आज हमने चर्चा करब जा प्याज ओनियन जी हाँ जोयों पर हमने बतियाब जा हमने जो सीखते हैं प्याज के वो कैसे चला था कौन कौन चैलेंजेस के वो सामना कर रहा था ये सब हमने ढेर बतियाब जा आज। और हमने के विशेष मेहमान हवन फागिद अनी से आप हवा रिसर्च साइंटिस्ट एंड सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट श्रीमान भेद नंदन दोबे जी जिनका हमने स्वागत करी राजा। दोबे जी नमस्ते।
1: नमस्ते सभी दर्शकों को।
0: आज हमने प्याज पर बतियाब सब और प्याज हमने के आगे बढ़ाए से आगे ये जो टॉपिक हुआ है प्याज के जो सीखते हैं मोरिस में वो कैसे बातें अभी
1: हाँ शुरू के आगे हम बोलते जैसे हम सब कोई जानी ना सा प्याज एगो सब्जी जिनके बहुत महत्व है
0: जी
1: हम के देश में और हम के पकवान में प्याज हम के पकवान के बहुत स्वादिष्ट करेला। अब सोचा एगो पलदामुन के चटनी जब कर या एगो बिरयानी पकावत या एगो दाल छौंकत तो जे ओकर में प्याज नहीं रही तो प्याज पकवान वा नहीं छले कि खाई
0: आगे बोलत रही सब नामो गंद तुला सोस
1: हाँ।
0: अब जे प्याज भी नहीं रही
1: प्याज नहीं रही
0: ढेर जना खालन जा
1: हाँ तो अब जो हम के सीखते बा प्याज के गर साल जब देखनी सा 2025 में तो हमने पे 18,000 टन प्याज के
0: जिसवित मिल्टन है
1: जिसवित मिल्टन प्याज के सेवन कर लेनी सा
0: जी
1: है और उक्कर में सिर्फ हमी जो लोकल जो पूजा का इना सा वो सिर्फ 6,000 टन है
0: माने कि हमने जस्ती खाई ला सा
1: हाँ।
0: जितना हमने पैदावार कर लिया
1: हाँ।
0: सा
1: सिर्फ आपे फे को जब देख बता 30% ही खाली हमी पूजा कर इना सा
0: जी।
1: और जो बाकी है जो बहिना सा 12,000 टन वो हमी विदेश से मंगाइना सा जैसे कंट्री है जैसे साउथ अफ्रीका इंडिया ये सब पे से हमें ये सब प्याज मंगाने सा अरे प्याज हुआ जहाँ के नामी के कुत्ते हो जला गल साल हमें 50 करोड़ रुपया प्याज हुआ के मंगाई लाई सब
0: मतलब हमने ने सकब से बोले कि हमने तो सुफिजा है प्याज में
1: 700 मिलियन हमें जब देखा था गल साल प्याज मंगाई लाई सा हाँ बहुत बा बहुत और खाली हमें प्याज जो खाई के नहीं मंगाइना सा और जो प्याज है जो तारल प्याज
0: जी
1: जो हमें बिरयानी में डालना सा जो बढ़िया सा जो फ्री है हयू देव से मंगाइना सा
0: तो जैसे बोला था जो प्याज हमने ढेर मंगाएला सा बाहर से तो हमने लगे जो पैदावार होला वो लोकल वाइते है इब्रिड है कौन चीज है
1: नहीं तो जब देखबा तो लोकल जब मोरिस में हम दो तरह के प्याज के वाइते प्रांति का इना से
0: अच्छा।
1: दो तरह के एक वह जो हमी जो फौजे का इना से जो हमी के बीज है लोकल जैसे वाइते जो तुपी है जैसे वाइते वेओनिक है जैसे वाइते बेलारोज है जैसे वाइते फ्रांसिया है और दूसरा तरह के है जो वाइते इब्रिड है वो हमें विदेश से मंगाइना सा
0: जी
1: है वो हमें विदेश से मंगाइना सा और जैसे तालेरवा बोला था नहीं खाली हमें प्याज नहीं मंगाइना सा हमें तारल वो प्याज मंगाइना सा देव से
0: अच्छा
1: जो फ्रिया जो बनिया सा जो बिरयानी में सिर्वी होला बस ये मौसम लोग जो पकावेला सा लोग लेता नहीं आ जाके फ्रिया करे के लोग डिरेक्ट देव से मंगावेला और जब देखा तो 2023 में हमें आपे प्रे 50 टन 50 टन जो फ्रिया मंगाई लेनी सा और गल साल जो रहा आपे प्रे हमें 100 टन
0: मतलब कि साल दर साल हाँ, बढ़ते जाता
1: और जो प्री पे कर लेनी सा अब देखा 2023 में है जो 50 टन रहा वहाँ पे पर हमें 50 लाख रुपया कुत्ते हो गल
0: बाप रे
1: और 2025 में जब देखा था है जो 100 टन जो बोला था ये हमें के आप पर 100 लाख रुपया कुत्ते हो गल
0: जी
1: तो सोचा था हमें 6 लाख कुछ ना कुछ करे के जब हमें के प्रोजेक्शन लोकल के चना बढ़ाए के ताकि यही सब जो हमें के जो पैसा जो दियो जाता
0: वो हजे रही
1: हजे रही
0: हाँ तो जितना जना हमने के संगे जुड़ल हो वह कुछ पूछे की बातें आज प्यार पर प्याज पर प्यार के साथ प्याज पर बतियात है ऐसा

0: তা আপনি সঙ্গে জুড়ল রহিয়া কাত সঙ্গ দু কাতোবা কাতোবা সাইং চার শূন্য দু আট শূন্য আর পাঁচ পর সকবা যা কুছো পুছে হামনিকে বিশেষ মেহমান হবেন শ্রীমান দোবি ফাগেদ আনেসে তা প্যাজ পর কুছো পুছে কে বাতে হামনিকে মেহমান হবেন যা তা হাইজা পরি হাম তোহার সে পুছব যে ট্রেন্ড অফ প্রোডাকশন বা ও কেসে বাতে মরিস
1: যে হামকে ট্রেন্ড অফ প্রোডাকশন যাব দেখবা তা হামকে প্লিজ ও মোয়ে যাব দেখবা তা হাই আমি সকব সব পুজে করে 6000 সে 7000 হাই আমি কে মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম হয়
0: জি जी तो हमनी जानी लाजा मोरिस में सी जो सिमोंस बात है ढेर जाना हमनी माटी के मूल कार्यक्रम कर ले है जब प्याज पर हम देख लीजा ढेर मात्रा में कई जना वो अपन सिमोंस में निकाले ने जब प्रोजुक्शो करे लन जा तो जो स्मॉल ग्रोवर्स हवन जा जो कॉर्पोरेट ग्रोवर्स उन लोग में कौन फर्क पाती
1: हाँ तब जब स्मॉल ग्रोवर्स आर कॉर्पोरेट में जब देख तो पहला मैं बोला पहला बच्चा बीच के सेक्टर पर
0: जी
1: जब देखबा तो जो 6000 टन जो प्याज हम पोजे कहना से ओकर में हम के आप 1500 किलो बीज हर साल लगेला हर साल 1500 किलो बीज अब एकर में जब देखबा तो 70% सो संजीस पूसो जो वॉइते हम से भी कहना से वो विदेश से आवेला विदेश से आवेला और ये हम के आप 3 crore rupees
0: उजाला है कुत्ते उजाला
1: 3 crore rupees कुछ तो जला सब वही थे जो विदेश से आवेला बस जब देखवा था एगो किलो जो वही थे वाना दे ओके वो 20,000 से 30,000 किलो कुत्ते होला
0: जी
1: और जो 30% जो रगल बा वो हम ही अपन वही थे लोकल से भी कहीं ना सा
0: अच्छा
1: वही थे लोकल जब से भी कहते जब बताते हैं वही थे बिलावोज बा जो है टुपी बा फ्रांसिया बा तो ये सब कहे है सब कमती है बस ये का रखान मोजन है वो कमती है अब जो जो विदेश से वही तो जो नावेला वो का रखान मो जस्ती है तो जो है जो कोपोरे था जब दिख बा था वो लोग जो आप प्रे को 60 से 70%
0: जी
1: वो लोग है विदेश के बीच से भी करेला कहे लोग के चला रखान मो मिले के ना
0: जी जी
1: जब रखान मो मिली तो लोग के थोड़ा जस्ती पैसा मिली
0: तो हमने सब जानी ला जा हम जब बात कर रहे थे सब प्याज के तो हमने जो लोकल खुशी रही ला सब तो हमने के तनी सुन बोला हमने जानी ला लाल बाटे हाँ। तनी सुन पियर बाटे एगो उजरवे रहल एगो छोटा छोटा टूपी नियन एकर बारे में तनी सुन बता हाँ, जब वही थी
1: देखबा त मोरिस में जब देखबा था हम के पहला जन वही तेरा उजवाई टूपी रहल जेके लोकल रेड बॉय ना सा ये हम के दादा दादाई लोग 100 साल हो गल बातवा हब्बी लगवा मोरिस हाँ जब देखबा तो सब हई वतवा हम घोसा पीछे सब वहाँ पर आ बेलमा पालमा में प्याज है जो बालू के माटी में सब रोपा थल तब कल कले जब देखा दन सा जब रानमो नहीं मिला था उकर पसे उकर रानमो फे भा
0: जी
1: जब देखबा तो 8 से 10 टन हेक्टर मिलेला तब भाई किसान भाई लोग के तो लोग के आमदनी थोड़ा कमती मिला था ना तब नवा वे है तो जा करनी सा जैसे रहा हाउ लेपो कर हल बॉय ते वेओनिक जो लाखिनियों से मंगाई लेनी सा और बॉय ते वा उकर आम कर गान में जस्ती रहल 12 से 15 टन हेक्टर अब जब देखवा तो हाई सब बॉय ते उनके एगो का हस्ते से बहुत है पोता वो बहुत पंजेट है चाहे जब दलबा तो आँख में से लुट चुला
0: जी जी
1: आज बिरयानी के लिए बहुत अच्छा हाँ तो अब हाउ होगा तो भाई जब देखा था तब रेस से हमें खोज कार करनी सा फागे बार मिनिस्टर बगल से तब ना वहाँ वही तो इब्रे धनी सा इब्रे क्या है जस्ती हम के चला पूजा करे के ना बस हम के दिन पर दिन हम के पुपिला शौक बोते होता तो प्याज के ओकरो मांग बाते तो है सब वही तो नहीं थोजिया होल तो अभी जो समस्या बा जब देखा था इसे तो है सब वही तो जो इब्रे जब भैया दे ओके तो एक हमें एक बहुत समस्या होता कि जो वही थे हमें जो फागे कमौदे करा था वो 4 साल या 5 साल के बाद रेस से मंडली में नहीं मिला था
0: अच्छा
1: हाँ अगर एगो किसी बहन से एगो पेनी हुई सुन जाता बस ये विदेशों में पारे जिसके हम ही के देश में विदेशों में उस सब नहीं सकता सा ला कौचते है सब बीच के हो जाए करे के मुँह पर जब देख पाता सांस मोकलीमा होता जब एक कुत्ता हुआ था सांस मोकलीमा वैसे को मुटका पानिया हुआ था तो सब बीच के प्रोताशियों देव में वो सब गाते हो जाता
0: जी
1: तो पारे जैसे मोरिशो में मुँह पर पारे तो दिख पाता और लोगों के बहुत जब सिकलते होता अब जब मुँह पर जब सिकलता था लोग के फ्री जन बा
0: वो बढ़ जाला
1: बढ़ जाला तब
0: फ्रेट अब फ्रेट वो सब
1: सब बढ़ जाता सब अब वहाँ से अब जब मोरिश आवा था तब यहाँ पर आर बढ़ रहा तब हाई गो जब स्टिल ने पक रहा था कुपोजिक्शन पर
0: तो हाइजा परी जो प्याज के बातें फिक्स बा ना
1: हाँ फिक्स बा

0: सगरो
1: सगरो फिक्स बा हाँ जन जन बनिया सभी 25 रुपया जन लिबर बा उसा 50 रुपया किलो ताई ता फिक्स बा तू तीन बरिस ता काहे फिक्स बा पसे गवर्नमेंट एगो कमें डिफरेंट तरह के हाउ दो ता फैसिलिटे दो ता
0: सब्सिडी
1: सब हाँ सब्सिडी दो ता जिमें प्रीवा फिक्स है जिमें जन हमी जन हाउ लोग बा कंसुमाते लोग बा लोके उतना
0: मुश्किल सब नहीं होई जी सब कोई की फैसिलिटी हो जाए
1: सब की फैसिलिटी ही
0: ता अदोबी जी

0: हमी के बिहार के सेक्टर एवलिए होता हमी के जो छोटा किसान बा वो लोग के जन पॉपुलेशन बा किसे बोला नंबर ऑफ किसान उगर बगल जमीनिया होता और जो कॉर्पोरेट बा वो लोग टेक ओवर करा था
1: जब कॉर्पोरेट की बात करे थे मतलब जो बड़का बड़का जो कंपनी
0: हाँ जैसे बा सेंट एंटोन बा जैसे मेजिन बा जैसे तेरा बा जैसे बेलेर शुगर स्टेट बा वो लोग के जस्ती वो लोग हाउ करता का है बस वो लोग सब चीज मैकेनिजे करेगा
1: और आजकल तो मैदव काम करवा के प्रॉब्लम
0: जब देख बा प्याज के जब एको हाउ करता एको रोपाई करता देखा मैं बहुत मैदव लगेला जस्ट से तू छोटा किसान लोग के पहला बार प्याज सिमी करेंगे अब जो ट्रांसप्लांटी करे जो हाउ में जस्ती प्याज मैं देव लगेला और जब रिकुलते वो करबा तो जस्ती मैं देव लगेला बहुकों जब देखबा कॉर्पोरेट लिख के तो लोग सेमी जगह करेला
1: जी
0: जब मशीन से लोग सेमे कर देला तो वो लोग के मैं देव नहीं चाहला ट्रांसप्लांटी करे के जिगेक रिकुल्ट में चालन सा तो है जो मैं देव जो ट्रांसप्लांटा समय कुतला तो लोग के कमती हो जाला और जब रहला फोन जिसित डाले के घास के दवाई डाले के तो सब ट्रैक्टर से डाले रहन सो वापरी
1: आजकल टेक्नोलॉजी की हमने बात करे थे ऐसा इनोवेशन ढेर
0: ढेर बा
1: जी तो हमने संगे जुड़ल रहिया हमने वापस आप जा एगो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद तो हमने के संगे जुड़ल हवा आज प्याज पर बतिया था ऐसा

0: आज की चर्चा।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा कार्यक्रम के संगे हमनी संगे जुड़ल हुआ तो हूँ। जितना जना अभी रसोई में हवन जा सकेला खाना वो सब बनावत हुआ सब कोई की बोको आज प्याज के इस्तेमाल करत हुआ। अब जानना प्याज के कितना हमने इस्तेमाल करी लाजा कितना मंगाए लाजा कितना पोजुशो हाजा परी होला। और दोबी जी हमने जब बात करे थे जा कोनो चीज के रुपाई से आगे हमने अब जाना था जा जो प्याज बातें कर बिया बातें ओकर खत्म होला ओकर थ्रेतमा होला। हमने बात करब जा जो चैलेंजर्स पर ओकर से आगे जब हमने बोलब जा जन थ्रेतमा होला हॉट वाटर ट्रीटमेंट होला तो निमन से जन सिमोस बाती जन बिया बा ऊ निमन से ओकर रुपाई होला और गौंदमा वो अच्छा रहेला।
2: हाँ तो जब देख बार जब जन बोलें सा हॉट वाटर ट्रीटमेंट जन 50 डिग्री 20 मिनट हमें सर्वी करना सा हर प्याज के ओके थ्रेते करे के तो एक में ढेर बीमारी है ओके ओकर नाश हो जाला। जब नाश हो जाला जब हम सब बीजवन सेमे करब तो निमन ओकर फसल होला
1: जी
2: कर खान में वो मौत होला क्या है पसे जब देखबा तो एगो बीज एगो जवाइयों देवेला
1: जी।
2: जब हवी बीजवा में बीमारी रही
1: तो सगरो फैल जाला
2: तो सगरो फैल जाला तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट बा है सब बीमारी वन के कमती करेला नहीं बताई 100% होला
1: जी।
2: सिर्फ आप पेपर 80% सब बीमारी वन के निकाल देवेला तब हमी के जो खेत में एक सबके होते।
1: अच्छा हबी एगो चीज बोले हुआ जो मालादी वो सब बातें हमनी जानी ला जा जब देख ली जा कारों में गएली सा ढेर जन खेतीहर हवन जब लौते हवन जो वो आजकल दुगो बीमारी से वो लोग सामना करत हवन जा जब प्याज के बात करत है जा तो और कौन कौन चैलेंजर्स जो बातें प्याज के सकते वो फास करता।
2: हाँ तो पहला चुनौती जो हमें देखा था हबी जो फास करते हैं सा वो बीज जब बीच में नहीं रही तो प्याज नहीं रही। अब जब बीच के जब देखा सकर सेक्टर जैसे तलेरवा बोलनी 70% हमें विदेश मंगाईना सा तो हमी आर जब देखा समी के वही थे लोकल ये सब बीमारी के संकट संकट भाकर जैसे बात ट्विस्टर डिजीज जैसे बात स्टेमफिलियम तो जब हबी जब देखा था ऐसा फारे एगो सोल्यूशन देख ले बा है ट्विस्टर डिजीज के जैसे गत देख लें माटी के मोल में हमार कुलेग रहा वाली वो है बतैला कैसे सकब से के कंट्रोले करे तो हबी सकब से हमी बीज जो बा सकब से पूजे करे। अब जो वोते बा हमी के लोकल जैसे बा जो टुपी जो बेलाहोस जो फ्रांसिया देखकर बीज सकब से जस्ती निकाले और जो नवा वोते जो अभी फागे जो रिकमोदे करे अभी तो उकड़ो बीज सकब से उगमोते करे तब सकब से हमी के प्रोजेक्शन
1: जी माने कि फागे के जो रिसर्च जो जैसे बोला था वह ये सब के आइडेंटिफाई करा था वह।
2: हाँ तक बस खाली हम नहीं हम ये डिफरेंस डिवीजन है फागे में।
1: अच्छा
2: जैसे बा कैसे पैथोलॉजी पैथोलॉजी जो हम के भाई वाली वो मलादी पर काम करेला। अब जैसे बा एंटोमोलॉजी वो सब कीड़ा पर काम करेलन सा बस के प्याज में दूगो कीड़ा बहुत नाश करेला
1: जी।
2: एगो है थ्रिप्स एगो है लीफ माइंडर तो हयु सब के हम के जो भाई एंटोमोलॉजी में वन सा वो लोग इस सब पर खोज काज कर रहे थे।
1: तो फाखे देने से कौन जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स वो आइडेंटिफाई जैसे बोला था वह और कैसे एम्प्लीमेंट कर रहे था।
2: हाँ तो जैसे बोला था नहीं अब जब देखबा बीच के ना जब देखबा बीच के तो हमार जो डिविजन एगोनॉमी तो एक में दूगो रिसर्च प्रोजेक्ट हम आइडेंटिफाई कर लें और एक पर काम कर रहे थे जिसने खातों में जिस बीच से अब भी ले जब जिसने सका था मैं जिस ओकर हा जो पहला जो

0: projet ha ou ha ami développé karate cha nawa ba ite ego program de croisement pare un breeding project ba ina sa ari go jusar o creme ego jusar parti ha ami videsh se ba ite opi manga ina sa opi matlab open pollinated jekar bit sakap sa ami moris me nikale jen ba ite hybride nay ba ite opi ekar bit sakap sa ami nikale hybride bit ne sakap sa nikale
1: कई जना सकेला नहीं समझते वन जा जैसे बोले थे वो ओपन पोलिनेटेड जो हाइब्रिड बम है ओकर मतलब कहा खाली बाहर से मंगावल गल बात है कि ओकर कोनो मीनिंग बा डेफिनेशन
0: बात है हवे जैसे प्रथ है प्याज के दो तरह के है एक है ओपी ओपी प्याज जेकर बीज से कब से निकाले
1: जी
0: अब देओ में देओ से जो वायतवन आवेला वह वायत हाइब्रिड ओकर जब रेस इफेक्ट में जाओ प्याज वा प्लांटे कर अब से ना ओकर बिया नहीं
1: सकब अच्छा
0: नहीं सकब सकर बिया निकाले पसे ओ प्याज नहीं है फुलाई कबो
1: तो मोरिस में जितना हमने रोपाई करत है सब प्याज के ओ जितना हमने जैसे बोले थे रोपाई करत हो प्रोजुक्शो बाते तो ओकर जो प्याज वा बाते जो बल्ब बाते जो बीज बाते ओ नहीं सकल जाए फोपाशे करे है जे
0: हाँ सकब से करे तो हवी बड़ा थे ना तो हई तो पागे खोज करा था नहीं कर पर हमी के जो विदेश से ओपी वरायटी जो मंगावा था सब तो हई सबके रिसर्च करते जा इसके हई सब वही तेवन पे देव में सब वही तेवन पोजल बा तो हई सब मोरिस में आन के
1: अदाप्ते जैसे हो
0: जिससे हाँ जैसे बोला तो चाहिए अदाप्ते करे के मोरिस में अब चाहिए देखे के इसकी हई हई वही तेवा बिलमा में सकता होई कि लाशुमिया में सकी होई
1: तो मोरिस में जैसे बोले हो वह घों साहब पे चिस्सा कहाँ कहाँ पर प्याज के जस्ती पैदावार रुपाई होला
0: हाँ जब देखबा तो प्याज के जब देखबा तो वही जो बिलाहोज टूपी सब ये सब प्याज हमी बालू बालू में प्लांटे कहीं ना सा जैसे बा रेजियन बेलमा पालमा तू दे दूस जैसे बा पेची साहब घं साहब अब जब देखबा तो दूसर एगो रेजियन बा लाशोमिया लाशोमिया वहाँ पर माटिया अब वहाँ पर सकबा जैसे वही फ्रांसिया ओकर रानमो जस्ती फोरा जैसे वही हाइब्रिडा रानमो जस्ती फोरा बस ये माटी के भाव में ओकर रानमो जस्ती होला पोकन बालू में ओकर में उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं है ना तो ओकर में जब भाई सब प्लांटे कर बता कर अगर प्रोजेक्शन मैक्सिमम नहीं मिलेला तो हवी खातिर हाई सब वॉइटवन प्लांटे के नहीं ऐसा पस हाई सब वॉइटवन किसी तरह तभी बोलनी 8 से 10 टन हेक्टर तो सेकेंड सब अपनी पूजा करे अब देखबा जैसे बाप प्लेन सोफी लामारी सेंट एंटोन हई सब कॉर्पोरेट लोग ये लोग हई सब वॉइटे दूसर वॉइटे प्लांटे करा जैसे वॉइटे हाइब्रिड ça veut dire जोन जोन रीजन बा प्लांटे होला ça veut dire मी बा बिलमा बिलमा जहाँ पर बालू के लाशुमिया बा प्लेन सोफी बा लामारी बा आर है जन कॉर्पोरेट लोग बा जैसे बा मिजिन है जैसे बा सेंट एंटोन तेरा जोन लेनो में हा आर ले सुद में जैसे बिले लोग बा
1: तो अभी हमने जैसे बोलत रहला अभी जोन बीमारी उस बातें ट्विस्टर उस बातें अटके कर रहता हमने के प्याज के सीमेंस के तो फायदे ने से कौन सॉल्यूशन कौन कौन कौन सॉल्यूशन बातें इस सब के सैनिटेशन बातें कौन चाहेला करे के
0: हाँ जैसे देख बात है सब जैसे ट्विस्टर डिजीज है जैसे ट्विस्टर डिजीज है एक कार्य को कंडीशन है जब वो बीमारी वाला आवेला
1: मतलब
0: जैसे देख बात अगर एको टेम्परेचर चला अगर एको सर्टेन टेम्परेचर अरे को सेटेन इमिजिते चला कर मैं और जब प्लांटे कर पाओ प्रोजेक्शन में और जो इमिजिते हुआ और हो पन्निया इफेक्ट में जब पन्निया आल तब इमिजिते हुआ प्री होल और टेम्परेचर हुआ बाहर तब हो मलेरिया इवॉल्व होला
1: तब प्याज के जब रुपाई होला ओकर इरिगेशन कैसे होला
0: हाँ तो इरिगेशन हम भी जैसे बा तो जैसे बा हम जैसे बात नहीं मिले चाचा चाची लोग तो लोग ऑनशे हुए में तो सर्विस करते हैं सा
1: मतलब
0: मतलब है जो हा स्प्रिंकलर
1: अच्छा जो ओवरहेड चक चक जैसे चक चक बोली ला जा
0: हां सा और जो कोपोरेटो लोग हा वो लोग को चक चक सर्व करेला पूता हबी जो हम मी फारे के कमांडे का ऐसा वो है ड्रिप इरिगेशन
1: गुटा गुट
0: का है बस वो पत्ता के अफेक्ट नहीं करेला वो डायरेक्ट रासिन
1: में जाला
0: हां कर पनिया जो बा वो रासिन में जाला डायरेक्ट द हाई सेल मात्र कुत्ते होला
1: और दुगो बीमारी हुआ बा वो लोग के भगाए खातिर हमें जाने से थ्राप सब बातें कौन सी इस्तेमाल होला
0: थ्राप सिर्फ होला कीड़ा लोग के
1: हाँ

0: बीमारी के है सब हम के चला सैनिटाइजेशन करे के सब जो हम के जो मैनेजमेंट जो बढ़िया सा कल्चरल प्रैक्टिस जो बढ़िया सा है चला हम के नियम से शिफ्ट करे के जैसे बा प्लांटे करते हैं सा अब जब देख बा ओकर में एगो प्लांट बीमार हो गल तो के चला नहीं आतान करे के नेट प्लांट बीमार हुई तब निकाले के
1: जब हमने के बोला जब है दुगो बीमारी वो आताके करत हो वंसा कौन सी क्या ताके करन सा खाली बिया सिमोस पत्ता
0: कौन सी सब है जो स्टेम फिलियम और ट्विस्टर डिजीज है ये दोनों का अफेक्ट करेला बीजों के प्लांटेशन में और जो बल्बों के प्लांटेशन में दोनों का अफेक्ट करेला सब बीज के कर जो यहाँ पर बीजवा होला और स्टेम हो के बल्बों के
1: अच्छा हम कहे कि हमने देख लीजिए कारों में कई जो प्लांटे हवन जाओ वो जो लथरा बातें प्लास्टिक ब्लू वो लोग डले हवन जाओ गो लागरेस उस सब में डाल के उस सब वो जो मुस्टिक जो बेबेटवा बातें वो में जाके चिपक जाना सब
0: हाँ तो जो बा जैसे तलेरवा बोला था नहीं प्याज के दो गो कीड़ा बहुत नुकसान करेला वो है थ्रिप्स
1: जी
0: और लीफ माइनर जो बहिना सा तो है जो ब्लू कलर के ट्रैप बोला तो ये थ्रिप्स के आता करेला
1: जी
0: तो जन ट्रिप्सन अपन कारों में बाहर कोना में डाल के तब तो चला कर पॉपुलेशन जिमिनिया होला बस यह जन ट्रिप्सन बहुत जीव से कंट्रोल करेंगे बस यह सब ट्रिप्सन जब देख था है प्याज के है प्लान के कर लिके में रहला कर लिके भीतर बस प्याज जब देख था प्याज में ढेर पत्ता है जब ट्रिप्सन जब भीतर रहला जब एप्लीकेशन का इन्ना सब फोन जिसित के तो थोड़ा जिप्सिल वाला भीतर जाए के जब भीतर जब जिप्सिल वाला जाए के तो बहुत कंट्रोल करेंगे कर 100% एफिकास नहीं होला
1: तो जब ड्रिप इरिगेशन करत हुआ काहे कि हमने जानी ला जब ड्रिप इरिगेशन करत हुआ कोनो चीज ओ में डाला जाला जो जो दवाई कुछ हो उन लोग गासिनवा के और मजबूत सब बना के तब कुछ हो डाला जाला ओ में
0: ड्रिप इरिगेशन से सबसे कम फर्टिलाइजर डाले फर्टिलाइजर सब डाले सिर्फ हाई फोन जिससे दिस सब नहीं
1: ना
0: फोन जिससे दिस सब नहीं खाली ये कर फर्टिलाइजर जब मैं कर गासिन में जाए तो जस्ती बड़ा हुई
1: अच्छा हमने के बोला अब जब प्याज के रोपाई होला वो ओकर शुरुआत कैसे होला बिया से हमने जानी ला जा और तरीका बातें
0: हाँ जब देख बता दो तरह के सकप से हमी प्याज के रोपाई करे पहला है बीज बीज और दूसरा है जो हमी बोया सा ज्वाइन मॉस पोछिया बोली ना सा
1: अच्छा
0: एक्सप्लेन करना तो बीज से सकप सा ओके जैसे किसान लोग उसकी अपन प्लेटफॉर्म में से में करे स्वा बीज सकी सीथे में सेमे करे आर जो बा कोपोड़े लोग लोग मशीन से सेमे करेला जैसे बनी सा सेमुआ सेमी जिरेक समझे जिरेक जला वो मटिये में कर प्लेटफॉर्म बन गल वो खाली अगर जिस तरह उसमें फेंक मजे सेंक सौ चिमेत ने हमके प्याज चहला तो
1: उस यूनिफॉर्म रहे
0: यूनिफॉर्म करेला सेमे कर ले जाता वो सो आपको मैं कौन लाभताज है जो ट्रांसप्लांटेशन जो छोटा किसान लोग के है ओकर में नहीं है सब जब वो जब प्लोमा जब बीज जब ढूक गल माटी में तो वो एक एक कुछ वो जब बढ़ ले जाता है मेरे को शोक लगा था ना अब जब शोक लगा था तो रे से परी नवा हासिन भी गए पस कबार के परेला ट्रांसप्लांटे हाँ दिगौजे करते हैं पस के हाउ में नहीं हाउ में जब देख पाता
1: सीधा
0: सीधा वो सब आज ओकर जब देख पाता कर रिकॉल एगो 15 से 20 दिन कमती लगेला हाई जन ट्रांसप्लांटेशन जब करा तो था ओके दो समय लगेला ओके रे से अडाप्ट हो के रे से अगर मैं खासिन भी है के हो मैं नहीं हो मैं सब जस्ती हाली हो के पूजा कराते हैं सा
1: तो एगो प्याज कितना बखत ले वेला उपारे हो के
0: सब जब देख बात है जैसे बोला था एगो प्याज 4 से 5 महीना
1: 4 से 5 महीना
0: लगेला
1: बीज वो और वो जो
0: नहीं अब जब बीज के हाई बीज के बोला था अब जब बोला था ज्वायमॉस ज्वायमॉस जन पूछिया ई कोचोला तक मजा हमके गल साल पूजा करे के बाद बिल तो हर साल 2022 में हमी उत महीना में बीच से में करब सा बीच से में करब सा 3 महीना के बाद छोटा छोटा बिल फो में होला ओके बढ़िया सा पूछिया जो ज्वाइन मॉस बस जब बाजार में मार्केट में जेबा तो देख बता कहूँ बेचाला बोला सा ज्वाइन मॉस बेचाता
1: हाँ
0: एगो चिपाके में 10-10 गो सा 15 गो पाके हुआ बेचारा
1: हाउ जन ट्राई मॉस उस सकप से लेके रुपाई करे
0: हाँ तब उ सकप सा फेक मजा उ नवंबर महीना में पारे होगा तो के रखब सा
1: तब भरती बड़ी प्याज के पोजुक्शो होला रुपाई होला नहीं, नहीं।
0: प्याज कर सीजन हा कर सीजन हा कर सीजन तो हुई खाते बात है जब नवंबर में हो प्याज वा जन ट्राई मॉस वा कबार देनी सा तब उ मॉस में ओके प्लांटे करब सा
1: चेहरा सुखाई के
0: हाँ तो हो सकबा सुबह घरे कैसे हो कैसे आगे हो मैं रखते

0: मंचान में लाओ
1: बांध के टांग
0: देवतनिसा तो सगवा हयु करे तब आवत बरिस तब मौस महीना में पश्चिम मौसम महीना में थोड़ा थोड़ा पानी आवेला मोटा पानी तो सकाप से थोड़ा सुन देखाले करे ना फिर मौस ले ओके हाउ पुछवन प्लांटे करब सा तो एक में दो गोला मौता सा पुछिया के स्वा ओके 40 दिन के बाद ओके लाख के ज्वाइयों सकाप से सेवी करे पश्चिम लाख के ज्वाइयों सेवी करिया सा हमी के वो गाय सब में डाले के स्वा 40 दिन के बाद एगो फसल मिल गल किसान लोग के अब जब देख बजे बिल्प करे खोजा था तो वो आर तीन महीना में फैक्ट मजे अप्रैल में से मैं कर प्लांटे करनी था अप्रैल में जो है जूलियत जूलियत में प्याज मिले लगी तो कुछ बा हमी के एगो दूसर एगो जो हमी प्याज बीज से सितंबर महीना में शुरू करें से पूजा करे के तो है जस्ती बुनेर से कब से के पूजा करे के जुलाई जुलाई अगस्त में सब सब पूजा करे तो गोला मोहताज रही कि हम के प्रोजेक्शन लोकल सब सब है पेयो
1: दवा अभी हमने ओ उत्तर फिनी हो जा तो अभी लेतो बा अभी रुपाई हो था
0: हां तो गल साल दुन रहल एगो मोटका पानी आला नवंबर महीना
1: तो कैसे अडाप्ट करे न सका कि जैसे हमने बोला था अडाप्टासो बीच गाशो सब होला तो हमने के जो छोटा खेती हर सब हवन जा वो लोग कैसे अडाप्ट हुआ सका काहे कि आजकल हमने शौशम क्लाइमेटिक की बात कर रहे थे अभी देखा कोनो दिन इतना गरम दो तीन दिन से इतना ठंडा पड़ा था तो कोनो फर्क पड़ेला जो सिमोस के जो पोजीशन होला रुपाई होला
0: बहुत से बहुत बहुत फर्क करेला पर से प्याज जब देखबा तो कर सीजन है ना सीजन का है बोइना सा ओके चाहेला है जो प्लावा के एक बड़े के विस्तार चीफ जो बोइना सा ओके चाहेला विंटर विंटर चाहेला ओके तब ओकर में जस्ती पत्ता होई जब जस्ती पत्ता होई तब वहाँ उत में अभी कैसे बाहर सा उत सेक्टम में दिन बढ़ता ना
1: जी
0: और थोड़ा गर्म हो कर
1: था
0: जब भाई गर्म आज जन है दिनों बढ़ता तो प्याज लाहो से दिशानों लानी चाहिए
1: लाहो से दिशानों
0: लाहो से सा जब पतवा से जब खाई के बाव कर मैं वो सब नीचे दिशानों ला तब वो प्याज वाफो में होला
1: अच्छा
0: हाँ तब देख बस सेक्टेम्बर अक्टूबर नवंबर में तब हम ही प्रोजेक्शन लोकल करना सा
1: जी तब बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हमने संगे जुड़ा हुआ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आना चाहिए।

0: आज की चर्चा।
1: हमने के जोनी मोरी साइजा पर कितना हरियाली बाटे त सबके बो खुआज हमने बोला था सर जितना चना अभी अपन खेत कारू में काम कर रहे थे वजह हाँ आज प्याज पर बतिया थे जा तो दोबी जी हम तबिया तोहरा से पूछत रही कि फागे जोन बाटे कौन कौन रिसर्च प्रोजेक्ट वो आइडेंटिफाई कर ले रहल कर ले बाटे और वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे था।
2: हाँ तो जैसे पहला कुछ बोले नहीं पहला जोन फौजे रहल वो रहल हमें नवा वे ओपी जो देव से मंगाई जानी सा
1: ओपन
2: ओपन पोलिनेटर जेकर बीच से कब से मोरिस में निकाले और दूसर फौजे है हमी के चाहना हमेशा एगो दूसर फौजे एंथोजिया अरे बाले वाशो जो विदेश से मंगाई ना सा चाहना हमेशा एगो बैलेंस रखे के दो तरह दूगो तरह के ओपी और इत के मोरिस में कहे ही बोला था फैक मोजिया जब मोरिस में हई मलदिया आवा था किसी रहा ट्विस्टर डिजीज anthracnose, stemphylium, the beach ke production ke kar production jimini othal to hami kuch par depend rani sa bahar se na ab jab bahar se wahan pri jab ek problem hota to hami ke chala apan beach ugmote kare ke to har mesa hai dunno variety wa jon bat tara ke variety wa mein chala har mesa ek balance rakhe ke swa ek chala mi ek buffer stock jese boina sa chala rakhe ke jo buffer stock वैसे जब प्याज के जब देख पा तो मैक्सिमम दो साल सब सब कर रखे
1: तब
2: तब कर जमीनाशों अफेक्टिव होला तो है जो नमी के बीच जो पूजा कहीं ऐसा लोकल उस सब से दो बरिस के कर बफर स्टॉक सब से रखे सब जब फैक मजा मैं वही ते वंशिया
1: जी
2: प्लांटे करके पूजा करते हैं सब तो कर बीच से सब से जस्ती बीच पूजा करे कैसे हब्बी लापा हब्बी हाई बरिस जब देख पा था हाई पूजिक्षों वंशिया गत साल के है।
1: अच्छा
2: हाँ तो हई हब्बी जोन बा हब्बी और जमीनेशन जब देखनी सा था वो कतु में पूछा बा तो सब से गत साल के लिए वो सब रखे बहुत जन विदेश से वायते जन आवता हमी के रहल चार पाँच साल एगो वायते रहा वो बैक्स वायते हुआ थोड़ा बोला साठ से सत्तर टन हेक्टर प्याज करे हमी कॉपोरेट में मिलल तो हो सब वायते जब देखा था चार पाँच साल के बाद नहीं मिला था।
1: अच्छा
2: तब हमी के प्रोजेक्शन वो जिम्मे नहीं होता तब रेस से पड़ा था कैसे हम बोलनी है हमारे देश में फौजे हुआ मैं रेस से पड़ेला हमी के नवा वायते मंगाई
1: के
2: तो हाई सब कह के हमी के सहायता करे लगा ये सब हमी के लोकल सीड कंपनीज।
1: अच्छा
2: जैसे बाबूजे फेदेब जैसे बा ब्लैक कैम्प गोल्डन वाली ग्रीन वॉल ये सब कौन सी है वो लोग वहाँ

0: après, qu'est-ce qu'il y a? Un mois après, il y a une beach qui est lancée, compagnie, qu'est-ce qu'il y a? Sakata, Sud-Afrique, mais. C'est une chiesa, Sud-Afrique, mais. Ou quel local représentatif, on s'en a pris. Donc, on a juste facilité, voilà.
1: Oui.
0: Donc, de là, on a beach, donc, on a beach, on a évalué, on a ça. Après, on a station, mais. Quand on a station, on a dit, on a voit, on a niman, on a dit, ok, kisan bhai, on a dit, on a ça.
1: Oui.
0: Arjun, pahila projet, on a dit, on a Urahal voit, opi. Opi. Hami ke chala bahut ekar mein importance dale ke kahe bas hami ke chala apan beach project kare ke moris mein
1: ita sachi baat bola
0: tha ha taki hami ke jab dikba kaise bola tha ni na 4-5 saal ke baad hum sab nahi milela to
1: hami
0: ke jun ba chala hami ke vaiti var ke jasti
1: aur kaam hua tha abhi research hua tha
0: ta ekar mein du go vaiti deja recommande gol pa Belarus aur France aur habbi jun ba 2015 mein hami चार गो वही थे ओपी मंगाई जाए सा हाई एगो वर्ल्ड वाइड सेंटर से इवी आदेशी जन बहिना सा ये एगो सेंटर है जहाँ पर सब बीज सब सब्जी के वहाँ फिर स्टोके होला
1: अच्छा
0: तो हमें वहाँ पर एगो रिक्वेस्ट करनी सा हमें बनी सा हमें मोरिस में हाई तरह तरह के कास्ते सिखबा तब वो वहाँ पर स्वाद गए करके बोला देखा हाई सब वही थे उनके कास्ते सुन बा हमें तो कहते बात ऐसा तो जाने ला मुझे कितना मिला सिर्फ 3 ग्राम मिलेगा
1: हाई जी
0: 3 ग्राम 3 ग्राम से मास अब एक जब 3 ग्राम से मास बताइए
1: उसका प्रोपगेशन अब कितना सकेला हुई
0: हाँ तब 3 ग्राम ई 750 से मास बीच मिलेगा तो ई पहला साल हमी के बड़ा सीत्रे में से में करेंगे तब सीत्रे में से में करके तब अगर बिल प्रोजेक्ट कर आप सा अब गत साल जो ना आई तो उसका बिल बम लेकर कर बीच
1: जी
0: कर बीच पहुंचे कर पता ऐसे करत करत जेनरेशन से बया सा एगो जेनरेशन 2 साल लगेला पहला कुछ चला होकर बल्ब पहुंचे करे के देजम कुछ होकर बीच हो करे के तब ऐसे करत करत तभी हम जुन बा 4 गो वोइते वा में एगो वोइते वा के वो अडैप्ट हो गलबा मुरिस में कर खान मो जस्ती बा ओकर फूल कमती फुलाला सकेला हम जस्ती बोनेर प्लांटे करे ओके ओकर वोइते वा से सगप समी पूछिया करे ओकर से कब सा लकी जवाइयों करे ओकर से कब सा बिल्प करे पोचिया से आर करे को कहाँ से सीखा कर स्टोरेबिलिटी जो मैंने ऐसा बहुत अच्छा बा
1: जी
0: तब सकब सा ओके जस्ती दिन रखे फिर मजा मैं नवंबर महीना में ओके पोजिया करनी सा ओके से कब सा 4 महीना रखे जब 4 महीना रखा था इंसान तब बोला था ना दिसंबर जनवरी फरवरी तो हाई सब ले पोकवा हमें विदेश से मंगाई ना सा
1: जी
0: तो जब हमी के स्टोरेबिलिटी जब आई वो आई तो अच्छा पा
1: नहीं परी
0: देव से मंगाई के अब जब देव से नहीं मंगावते हैं सा तो हम के जन 100 मिलियन जन जाता बोला था
1: हुआ बात है वो कमती हो जाए
0: तो हाई दिशा में हम जस्ती लंफास डालते हैं जैसे बहुत है ओपी वन पर
1: अच्छा ये तो बढ़िया बार बात है तो हम सकब से बोले कि हाँ हमने की जो सकते प्याज बातें जोए बातें वो निमन रास्ता पर चले था रिसर्च होते जात बातें और वो जैसे बोले ला जा गौरमा मिली खुजुशो और बढ़ी और हमने के पैसा वो हमने लगे रहे तो अब हमने के तन सुन जल्दी बतावा कहे कि वक्त जो बातें वो भागते जाता और फाहिद दने से जो स्कीम्स बातें IMB दने से सरकार दने से कौन कौन मदद मिला था सबको
0: हाई बड़ी जुन बा सरकार बगल से एगो इस एगो वन ऑफ ग्रांट बा 10,000 रुपया मिला था बीघा पर जोन जोन किसान प्याज पनौते कर ले बा
1: अच्छा
0: हाँ हाई बा पहला और दूसरा बा जैसे बा फाहे जो नो प्रॉब्लम रही हमी हाई से यहाँ पर कोनो डिविजन रही पैथोलॉजी रही एंटोमोलॉजी रही नया पोत कोनो प्रॉब्लम रही है हमें यहाँ पर हाई सा आर एगो कमिटी है जोन कमिटी बनना से नेशनल यूनियन एंड गॉलिक कमिटी
1: अच्छा
0: यो नहीं वो नेशनल है ये हर महीना हर 3 महीना पर हम इस चीज़ हुई ना सा एक मैं सब रिप्रेजेंटेंट हूँ कर कोपोहित के कर चिप्लांटे के कर IMB बा कर मैं हम ही ऐसा फारे ऐसा SPWF बा और मिनिस्टर मिनिस्टर वो बा तो एक मैं सब जो समस्या होला उसके डिस्कस करी ना सा और जो फोर प्राइस सब जो डिस्कस होला तो हाई कमिटी में डिस्कस होला
1: अच्छा अभी ढेर जना तो हो रहा दुखत हुआ सुनत हुआ वो लोग की कौन सी बोलब कितना जना अभी वो लोग के त्राका हो गल बात हाँ ये सब बीमारी के संगे जुझत हुआ जा तो लोग की कौन कौन से देवा कौन कौन कौन कैसे वो लोग के सहराना देवा
0: हाँ आरे को चीज भुला के नहीं बोले के अभी जो बा प्याज बीज फ्रांसिया के
1: जी
0: उसी सीट पर बा 2,500 रुपया किलो में मिला था
1: अच्छा
0: तो सगबा सा प्याज वाले लेके सगब सा रखे गत साल से आप सबके से मैं करे स्वा

0: ओकर हब्बी लिपोक बा हब्बी उत महीना में है ऐसा सकब सा ओकर से पूछिया पूछिया करे
1: ओ लोग के जितना जना हबी तोहरा सुनत हुआ धला उलोग संगे कर प्रत्या कुछ होने बाते उ लोगों संगे
0: हाँ सखी सखिया के किने आईएमबे में बिचाता है सब बीचवन सखिया के किने
1: जी
0: अर्जुन बुलत है फागे से हर मेसा चलाया हाउ करे के हम काम करे थे सा जैसे था बोलने अभी नवा नवा वो थे ओपी जो नावा था आर एगो वो थे ओपी हबी अन्ना ऐसा वो नीला येलो
1: अच्छा
0: हाँ पीला पीला पीला सॉरी पीला
1: हम पूछा था जो नीला बातें जो प्याजवा कैसे रही
0: नहीं पीला पीला पीला हाउ वो आंदेल ऐसा वो हम 2023 में तो जा करना ऐसा तो कुरो पर अभी काम होता दस अब जब देख पाता पीला प्याज के रही लाल प्याज रही पीला का है जो सलाद में से भी होला
1: अच्छा एगो जो उजर रहल वो तो नहीं लौकेला का है
0: नहीं तो उजर में एगो जहक कोने को एगो कन में
1: बाहर से रहल की है
0: बाहर से आवेला वो
1: अच्छा
0: बाहर से आवेला तो हम उज्जर प्याजों में काम कर लेनी तो कौन प्रॉब्लम होला जब उज्जर प्याज जब जब रिकोल्टे करबा तो लाहो जब देखबा तो कुल वे हो जाला
1: वो अच्छा नहीं है
0: वो अच्छा नहीं है
1: आलुओं के बारे में बोला जला जे ओ तनि सु हरियर हरियर हो जाते नहीं चाहिए ला
0: नहीं अच्छा खाए के उला सोते के लिए नहीं
1: अच्छा अच्छा
0: तब भाव जब प्याज में जब वे वे हो लगेला तो जब देखो बाजारों में दलबता वो
1: कैसे ना बोले ओकर गासिन ओकर जेम है नहीं ओ नहीं है
0: नहीं नहीं
1: नहीं अच्छा तो जाते जाते तो हसे एगो अंतिम प्रश्न पूछती ढेर हमनी महिला लोग इस्तेमाल करे जस्ती महिलाओं लोग इस्तेमाल करे रहें जब प्याज के वो लोग कंप्लेन करे रहें जब हमारे प्याज जम गल उजैमे हो गल कैसे चाहिला रखे के जब किन ले ली सब बाजार से कैसे हमने धूप में घामा में डाली ला सब बोल काजे ने काहे बोलल जाला घामा में चाहे ला रखे के हमने के बोला फ्रिज में रखे के घामा में कैसे
0: नहीं तो जब जब देखबा तब प्याज जन विदेश से आवेला तो उस शमफाद में आवेला ना शमफाद में जब आवेला तो जैसे बया से उकर शमफाद में जाओ तो वहाँ पर ही सब शमफाद में डरलक तो प्याज के एगो जन बया से डोमेंसी पीरियड तो डोमेंसी पीरियड वो जब ठंडा में रखबा तो टूट जला तो वही खातिर जब हम प्याज के बीज जब हो जाएगा इना से तो ऐसा बिल्बन जो है वो हम शमफाद में रखी ना सा जब वो निकलेला तो डोमेंसी पीरियड जैसे टूटेला तो जमेला तब जमी तब के फासिल रही तो हवे खाते जब देखबा जब विदेश से जो ना वो सब पियजन आवेला तो वो सब शमफाद में आवेला ना बातों ही सब में तो हवे खाते रहोला तो जन बा हमी के करे के सकब से थोड़ा सुन प्याज घाम में रखे जब मैं हाउ जैमुआ कि लेता ले
1: लेता ले
0: हाँ 100% नहीं रही
1: नहीं हम ट्राई कर ली वो काम आवेला
0: हाँ
1: घाम में निमन से तलबा
0: सूख जाए निमन से
1: सूख जाए तो वो लेता ले वेला जैमे के
0: तो है जो नमी के वो आई थे जो लोकल वन बा ई सब जन वॉय थे जन भी है कमाते कब सा कर कालिते हुए दूसरा
1: तो सगवा बोले जाय से आगे कि हमने के देश कबो न कबो सकेला 5 बरिस 10 बरिस में हमने ओ तो सुविधा बनब सब प्याज में
0: हाय
1: तो रेशेशवा होते बाते
0: अभी रेशेशवा होते रही से मत तू देपान ह हमी के किसान भाई लोग पर जे ओ लोग प्लांटे करे सकी तो सकब सही करे सब देपान ह सब हाँ। किसान और कुपोड़े लोग पर
1: तो जब किसान के बात कर रहे तो हमने के चाचा दादा लोग तो अभी कहाँ हमने के जिने सु लोग ऐतिहासिक से हवन सा
0: नहीं ऐतिहासिक से हवन सा हमने नवा पीढ़ी कहाँ है तेरे आगे किल्चे में सब तो देख बाकी खाली सीखते फिनांसी में जाते हैं सा तो जब देख बाकी किल्चे तो चला आगे चे जो करे के चला मोडर्निजे करे के जैसे बड़ी ना सा वहाँ पर व्हाइट कलर जब बना तो यूँ पर चला हम आई किल्चे एक फासों करे के जब मैं वो व्हाइट कलर जब रही जैसे एगो अपन अपन पोता बे क्या होता तो प्लावा के देखी कैसे बा
1: आज तो टेक्नोलॉजी बातें
0: टेक्नोलॉजी बा कैसे
1: ड्रोन बातें आजकल बातें
0: सब पैसा
1: कैमरा बातें सब कुछ तो फैसिलिटी बा
0: सब में चाहला हम के इन्वेस्टी करे के
1: इनोवे हो
0: इनोवे करे के चाहला तब हम के नवा पीढ़ी लोग ढुकी कर में
1: तो चलो हमने के जो माटी है और मोल हमेशा रही और हमने वही खाए लासा जो हमने पैदावार करी लासा रुपाई करे सा तो आज के चर्चा कार्यक्रम है जो परिसमाप्त हो गल बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान भेदनंदन दोबी जी आप रिसर्च साइंटिस्ट सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हुआ प्याज पर तो ऐसे रिसर्च करते रहिए और नवा नवा वही जब आगे हमने सकब से बोले कि हाँ ई जो प्याजवा बातें हई हमने के है खाली हमने के है और का जनी बाद में हमने एक्सपोर्ट कर
0: बस नवंबर में कबो जस्ती हो जाला तो सकब समालेगास को सोलागिनो उसको न दे सकब से
1: तो चाहेला ओ हो जन पॉजिटिव माइंडसेट वा ओ चाहेला रहे माइंडसेट
0: बस महमी के चला हम के जस्ती किसान भाई लोग और कॉर्पोरेट लोग के जस्ती चला लोग
1: चला संगे संगे हाथ में हाथ डाल के हमनी अपन देश के आगे बढ़ा जा तो आज की चर्चा कार्यक्रम है जे परिसमाप्त होगा सब कोई की बहुत बहुत

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। स्थानीय अभिनेताओं अभिनेत्रियों भर्ते हुए स्क्रीन राइटर्स तथा सिनेमा के शौकीन लोगों के लिए ये खबर। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जल्द ही मॉरिशन प्रतिभाओं की तलाश के वास्ते एक प्रतियोगिता शुरू करेगा। देश में फिल्म उद्योग को नई गति देने के मकसद से इस परियोजना के अंतर्गत एक मॉरिशस एंटरटेनमेंट एकेडमी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक स्थानीय स्टूडियो और कैंपस की स्थापना भी शामिल है। समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समाज के सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बना रहा है। हालांकि इससे पैदा होने वाली संभावनाओं के अलावा इसे नियमबद्ध करने का मुद्दा भी अहम बनता जा रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अफ्रीकी देशों की तैयारी का स्तर जानने के वास्ते हाल ही में अफ्रीकन AI गवर्नेंस इंडेक्स नामक एक नए टूल की लॉन्चिंग की गई है। इसकी जिम्मेदारी होगी अफ्रीकी महाद्वीप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए नई बनाई गई नई नीतियों, संस्थाओं और मैकेनिज्म्स का मूल्यांकन करना। मॉरिशस में ईंधन की कीमतें निर्धारित करने में प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट अहम भूमिका निभाता है। ये सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मंडी में दामों के उतार चढ़ाव का असर कम करने में मदद करता है। हालांकि भारी घाटे के कारण ये स्थिति पब्लिक फाइनेंस के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। अर्थशास्त्री मनीषा दुकोनी का मानना है कि लंबी अवधि के संतुलन के लिए व्यावहारिक उपाय बनाए जाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उत्तरी साइप्रस के समंदर में एक यात्री जहाज के उलट जाने से कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लापता बताए जा रहे हैं। जानकारियों के मुताबिक फेरी में 259 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। प्रारंभिक जांच के तहत लापरवाही के आरोपों पर जहाज के कैप्टन और 7 क्रू सदस्यों को हिरासत में लिया गया।

0: ये थी अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 99 लापे स्ट्रीट पोर्ट लुइस में, लापे स्ट्रीट पोर्ट लुइस में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की मिसेज हफीज़ा बीबी करिम्बोकस, मिसेज हफीज़ा बीबी करिम्बोकस जो गोरी नाम से ज़रा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 1:30 बजे इनके मकान लापे स्ट्रीट पोर्ट लुइस से उठाकर दफनाने के लिए रिश्तेदार का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टू डेट 1:30 PM। नेहरू रोड बेल्टेया फोनिक्स में, नेहरू रोड बेल्टेया फोनिक्स में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अमृता रुकमीनिया, श्रीमती अमृता रुकमीनिया पैदाइशी नाम रमादीन जो रेशमा नाम से ज़रा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके पति श्री प्रवीण रुकमीनिया के मकान नेहरू रोड बेल्टेया फोनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डिया 3 PM। कैंस कौतो नंबर 2 वाक्वामी, कैंस कौतो नंबर 2 वाक्वामी 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड श्री बिहारी सिबरत जो राज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनकी माँ श्रीमती विद्यावंती मानती सिबरत के मकान कैंस कौतो नंबर 2 वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सोल्फेरिनो नंबर 5 वाक्वा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 12:30 PM। शोक में रुबेन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: समस्त श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। सुबह के 10:05 हो रहे हैं। आप इस समय रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं भक्ति धारा कार्यक्रम में। आइए श्री गणेश करते हैं।

रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, रामचरित मानस के बाल कांड के दोहा 260 यानी 260 और उसके नीचे की चौपाइयाँ मैं आज आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रसंग बहुत ही सुंदर चल रहा है, धनुर्भंग का प्रसंग है और अब लगता है बस धनुष टूट ही जाएगा, क्योंकि श्री राम गुरु की आज्ञा मान करके धनुष तोड़ने के लिए आ गए हैं। और सबकी जो चिंता थी, राजा जनक का जो पश्चाताप था, सीता जी की चिंता थी,

उनकी माँ के अंदर जो एक तरह की अधीरता थी, इन सब का लगता है कि अब अंत होने वाला है। तुलसीदास जी ने लिखा था कि जैसे एक बड़े जहाज को पा करके सब यात्री उसमें बैठ जाते हैं और उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि वो अपार समुद्र को पार कर लेंगे, उसी प्रकार श्री राम जी का जो बाहुबल है वो मानो अपार समुद्र की तरह है, और ये जो धनुष है शिव जी का वो किसकी तरह है, एक बड़े जहाज की तरह है। और ये जितने भी लोग हैं, यानी सीता जी की चिंता और उनकी माँ की चिंता, राजा जनक का पश्चाताप, नीच राजाओं का अभिमान, सबका संदेह, अज्ञान, जो तुलसीदास जी ने सबकी गिनती गना की थी, वे मानो सब के सब शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर चढ़ गए हैं। यानी अब धनुष टूटेगा और इन सब के संदेह, सबकी चिंताएं और अभिमान, सब कुछ चूर चूर हो जाएगा। आइए अब हम दोहा 260 और उसके नीचे की चौपाइयों पर विचार करें। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा यतन जानी बिकल बिसेके। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष रूप से व्याकुल जाना। अब राम जी बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। तैयार होने का मतलब अब सब कुछ देख लिया उन्होंने, आ गए, चल के आ गए रंगमंच पर। वहाँ उन्होंने एक दृष्टि उस धनुष पर डाली क्योंकि दूर बैठे हुए थे, अब उन्होंने धनुष को देखा और उसके बाद अब वो बिल्कुल धनुष उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या देखा, एक बार सबकी ओर उन्होंने दृष्टि डाली, जो कि स्वाभाविक है। जब कोई वक्ता मंच पर आता है तो इसके पहले कि वो अपने पेपर पढ़े, वो पहले एक बार उपस्थित लोगों की ओर दृष्टि डालता है। इसी प्रकार या कोई कलाकार जब आता है रंगमंच पर तो इसके पहले कि वो अभिनय आरंभ करे, एक बार वो सभागार में बैठे हुए लोगों पर अपनी दृष्टि डालता है। इसी प्रकार राम जी ने एक बार सबको देखा, कौन कौन लोग इस कक्ष में बैठे हैं, कैसे हैं, तो एक बार उन्होंने देखा। क्या देखा उन्होंने, चित्र लिखे से देखी। उनको लगा जैसे सारे लोग चित्र में लिखे गए हैं। क्या मतलब है आइए समझें, यानी कोई व्यक्ति हिलडुल नहीं रहा है, सबकी पलकें बिल्कुल यूं झपक ही नहीं रही हैं, सब लोग बिना हिले डुले एक टक राम जी को देख रहे हैं, क्योंकि सबकी आशा राम जी पर टिकी हुई है। यहां तक कि जो अभिमानी राजा हैं वो भी यही सोच रहे हैं अब क्या करेंगे राम जी, तो हर व्यक्ति राम जी को ही देख रहा है। तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं चित्र लिखे से, जैसे हमने एक चित्र बना दिया हो, एक चित्र में अपनी कलम ली हो, पेंसिल ली हो और हमने एक किसी का चित्र बना दिया, तो वो चित्र तो हिले डुलेगा नहीं ना। उसकी आपने आंखें यदि बंद रखी हैं तो बंद रहेंगी, खुली आंखें बनाई हैं तो खुली रहेंगी। तो जैसे चित्र हिलता डुलता नहीं है, स्थिर रहता है, बिल्कुल वही स्थिति सभी लोगों की थी जो उस सभागार में उपस्थित थे। तो राम जी ने सबको देखा लेकिन उन्होंने विशेष रूप से सीता जी की ओर देखा। क्यों? क्योंकि असली तो सीता जी ही थी ना, सीता जी के भाग्य का निश्चय होने वाला था, इसलिए उन्होंने चितई सी कृपा यतन, कृपा यतन यानी राम जी जो कृपा के धाम हैं, उन्होंने सीता जी की ओर देखा और क्या पाया उन्होंने, जानी बिकल बिसेकी। उन्होंने देखा कि सीता जी विशेष रूप से व्याकुल हैं। बाकी लोग तो व्याकुल हैं, राजा जनक व्याकुल हैं, स्वाभाविक है, एक पिता की मर्यादा, एक पिता की आन बान दांव पर लगी हुई है, उनकी क्या स्थिति रही होगी, माँ की क्या स्थिति रही?

रही होगी। तो सभी लोगों के चेहरों पर जो चिंता का भाव था, लेकिन असली आकुलता, असली व्याकुलता सीता जी के मन में थी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि चितई सी य कृपा य

इकासुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। बहुत सुंदर लिख रहे हैं तुलसीदास जी, सदा की ही तरह, कि राम जी ने जब सीता जी को देखा तो उन्होंने देखा कि सीता जी बहुत विकल हो रही हैं। विकल मैंने बहुत व्याकुल हो रही हैं, बहुत बेचैन हो रही हैं, बहुत दुखी हो रही हैं, क्योंकि हमारे मन के भाव हमारे चेहरे से प्रकट होते हैं। हम कितना भी छुपाएं अपने सुख या दुख को, हमारा चेहरा हमारे मन के भावों की खुली हुई पुस्तक है या दर्पण है। तो राम जी सीता जी को दूर से देख रहे हैं, लेकिन देखते ही समझ गए हैं कि सीता जी अब प्रतीक्षा नहीं कर सकती, अब उनकी अधीरता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। यदि तुरंत मैंने नहीं कुछ किया, मैंने कार्य नहीं किया, तो फिर सीता जी का बचना बहुत ही कठिन हो जाएगा, ऐसा राम जी के मन में भाव आता है। और उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। किसका? सीता जी का। राम जी ने देख लिया, समझ लिया कि सीता जी के लिए मैं एक क्षण की भी देरी करूंगा तो सीता जी के लिए वो युगों की देरी की तरह है, इसलिए अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। और तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी कि यदि प्यासा आदमी जो तरस रहा है पानी की एक एक बूंद के लिए, उसके मुंह में कोई दो बूंद पानी डाल दे तो वो मानो जीवित हो उठे, इतना प्यासा है वो व्यक्ति, लेकिन उसे दो बूंद जल की नहीं मिल रही है। वो ज्यादा नहीं मांग रहा है, दो बूंद पानी के लिए तड़प रहा है, लेकिन उसे दो बूंद पानी नहीं मिली और वो अपने प्राण त्याग दे। और उसके बाद कोई अमृत का तालाब उठा करके ले आए और अमृत के तालाब में भी उसको डाल दे, पानी मुंह में डालने की तो बात छोड़िए, उस व्यक्ति को ही अमृत के तालाब में डाल दे, तो क्या वो व्यक्ति जीवित होगा? उसके लिए उस अमृत के तालाब का क्या मूल्य? उसके लिए तो बेकार है, उसे तो केवल थोड़ा सा पानी चाहिए था जो उसे नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि समय और परिस्थिति पर की गई सहायता का मूल्य है। मुझे आज दो पैसों की जरूरत है, लेकिन आज मुझे वो दो पैसे नहीं मिले और कल को कोई लाके मुझे करोड़ों रुपए दे तो वो मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि जब मैं जिस चीज की मुझे इस समय आवश्यकता है, यदि उस समय पर वो चीज मुझे नहीं मिली तो बाद में उसका क्या अर्थ, उसका कोई महत्व नहीं है। और इसीलिए आगे की चौपाई और सुंदर है। इसी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, का बरखा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहाँ कृषि होती है, हम बहुत अच्छी तरह से इस चौपाई के अर्थ को समझ सकते हैं कि जब हमें वर्षा की आवश्यकता है, सूखा पड़ा हुआ है, खेती नहीं हो रही है, और उस समय वर्षा नहीं हुई, जब धरती को बरसात की आवश्यकता है, जब फसलों को बरसात की आवश्यकता है, उस समय तो बरसात हुई नहीं, सारी फसल सूख गई, बेकार हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया, प्राणी बिना जल के मरने लगे, उसके बाद यदि वर्षा हुई तो उस वर्षा का क्या मूल्य? वर्षा उस समय हो जब हमें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जब धरती की प्यास वर्षा बुझा सके, जब खेतों की प्यास वर्षा बुझा सके, तब उसका कोई महत्व है, तब उसका कोई मूल्य है। तो बोल रहे हैं का बरखा सब कृषि सुखाने, जब सारी खेती सूख गई उस समय यदि बरसात हुई तो उस बरसात का
भला क्या महत्व है। और अस हाँ समय चुके पुनः।

निकाह पछताने, और जब समय बीत जाए तो पछताने से क्या लाभ। समय का मूल्य है, समय पर यदि काम होता है तब जाकर के वो कार्य सार्थक होता है। इसलिए सदा समय को समझना, समय के मूल्य को समझना, ये बहुत आवश्यक है। तो तुलसीदास जी का तो यही सबसे बड़ा योगदान है, मैं मानती हूँ कि तुलसीदास जी राम कथा तो कह ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितने सुंदर नीति वचनों को पिरोते जाते हैं वो हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आप समझ सकते हैं। वो ये बात नहीं कह सकते थे, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, वो अपने प्रसंग पर आते कि ठीक है, उन्होंने सीता जी को देखा कि सीता जी व्याकुल हैं, और अब राम जी ने सोचा मैं तो तुरंत धनुष उठा लूँगा, तो कथा तो आगे बढ़ जाती। लेकिन तुलसीदास जी का ये भी उद्देश्य है कि जो नीति वचन हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, उन बातों को भी इस कथा में पिरोते चलें, ताकि वो हमारे जीवन को रास्ता दिखा सकें, हमारे जीवन को आलोकित कर सकें। इसलिए वे कहते हैं समय चुके पुनिका पछताने, समय का महत्व है। समय बीत जाता है तो हम रोते हैं बैठ के, हम पछताते हैं, और इसीलिए कहा गया कि चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब चिड़िया खेत को चुन गई तब फिर पछताने से क्या होगा। सावधानी तो आपको पहले बरतनी थी, और हम सब प्रायः यही करते हैं कि समय के मूल्य को नहीं समझ पाते हैं, और फिर बाद में तड़पते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन जो क्षण बीत गया वो दोबारा हमारे जीवन में कभी नहीं आता। इसलिए अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। जी में ऐसा समझकर राम जी ने जानकी जी की ओर देखा, और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। राम जी ने जब सीता जी की मन स्थिति को समझ लिया तो वे पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए। इसके कई अर्थ हो सकते हैं कि वैसे तो राम जी को पता था, लेकिन कभी सीता जी ने तो राम जी को बताया नहीं था कि उनके मन में क्या है, ना राम जी ने सीता जी को बताया था, राम जी ने लक्ष्मण जी को बताया था, अपने गुरु को बताया था, सीता जी को तो बताया नहीं था, ना सीता जी ने राम जी को बताया था। तो राम जी एक तरह से आश्वस्त होना चाहते थे कि सचमुच सीता जी चाहती हैं कि मैं धनुष तोड़ दूं, और जब उन्होंने सीता जी की उस मन स्थिति को देखा तो वे पुलकित हो गए कि जैसे मेरे मन में सीता के लिए प्रेम है, वैसी ही स्थिति, वही भाव दशा सीता जी की भी है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। प्रभु बहुत पुलकित हुए, राम जी बहुत प्रसन्न हुए, क्यों, सीता जी के विशेष अनुराग को अपने प्रति देखकर। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम के उदामिनि जिमि जय लयउ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयउ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। उस स्थिति में भी राम जी जिस प्रकार हर कार्य को कर रहे हैं, वो भी अपने आप में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा पाठ है, एक बहुत बड़ी सीख है। सीता जी को देखा उन्होंने, पहले सबको देखा, फिर उन्होंने सीता जी को देखा, मन में आश्वस्त हो गए कि सीता जी मुझे प्रेम करती हैं, वो चाहती हैं मैं धनुष उठाऊं। एक क्षण भी विलंब किया तो सीता जी के लिए बहुत ही कठिन स्थिति हो जाएगी, क्योंकि यदि बरखा समय पे नहीं हुई तो कृषि नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब यदि मैंने अभी धनुष नहीं उठाया तो सीता जी कहीं अपने प्राणों से हाथ न धो बैठें, और तब मैंने यदि धनुष तोड़ा तो उसका क्या महत्व, इसलिए अभी तोड़ना है। तो ये सब उनके अंदर चल रहा है, लेकिन फिर भी जब वे धनुष के पास आते हैं

तो सबसे पहले क्या करते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। ये है श्री राम की मर्यादा, ये है श्री राम का जीवन जिसमें मूल्य भरे पड़े हैं, कैसे व्यवहार करना है, कैसे आचरण करना है। जिन गुरु के कारण श्री राम जनकपुरी आए, जिन गुरु के आदेश का पालन करके श्री राम धनुष उठाने आए, उन गुरु को प्रणाम करना, उन गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, आभार प्रकट करना, ये श्री राम को भगवान राम बनाता है। यही वे गुण हैं जिन्हें जीवन में उतारना आवश्यक है। गुरु के प्रति कितना आदर, गुरु के प्रति कितना सम्मान, जिसे आज हम खो रहे हैं, वो सारी बातें हमें हमारे ये ग्रंथ सिखाते हैं। तो तुलसीदास जी ने प्रणाम किया कैसे, मन ही मन, मन में प्रणाम किया, क्योंकि प्रणाम करके तो उठे थे, अब वहाँ से प्रणाम करते तो अच्छा नहीं दिखता, लेकिन मन में ही प्रणाम कर लिया। और अति लाघव उठाई धनुलीना, और बड़ी फुर्ती से, यानी फुर्ती का मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा कोशिश कर रहे हैं, यूं उठा रहे हैं जैसे सब राजा आते थे कोशिश करते थे, नहीं, फुर्ती से उठा लिया, मतलब कुछ है ही नहीं, जैसे कहा ना कि गरुण छोटे से सांप को उठा लेता है, वैसे ही राम जी ने उस धनुष को बड़ी फुर्ती से उठा लिया। और आगे क्या होता है श्रोताओं, इस प्रसंग को हम अपने आगामी कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। आइए एक भजन सुने और उसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम संपन्न करें। अगले कार्यक्रम में हम देखेंगे कि किस प्रकार राम जी ने धनुष तोड़ा, क्या प्रतिक्रिया हुई लोगों की, धनुष टूटने से वातावरण कैसा हुआ, इन सब का आनंद हम अगले कार्यक्रम में लेंगे। अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ श्रोताओ, इस समय आप भक्ति धारा कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। राम कहे श्याम कहे, जिस भी आप अपने इष्ट देव का नाम ले, बस भक्तिमय तरीके से ले और श्रद्धा होनी चाहिए और शुद्ध मन। तो चलिए शुद्ध मन से आज, क्योंकि सोमवार है, तो हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी का आशीर्वाद कृपा प्राप्त करते हैं।

बस शिव शंभू का नाम लीजिएगा, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। 10:51 हुए हैं शंभू जी। हाँ, शंभू शिव का नाम ले रही है। शिव जी आप सबके साथ हैं, हम सबके साथ हैं। बस अपने मन मंदिर को साफ रखिएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत शायद ना पड़े, क्योंकि जब तक हम अपने मन को, अपने मन मंदिर को शुद्ध रखेंगे, तब तक शिव जी उसमें बसे रहेंगे।

सुबह सांझ का यह भक्ति धारा कार्यक्रम समाप्त हो चला। श्रोताओं, 11 बजे के समाचारों के बाद आप उर्दू प्रोग्राम सुन पाएंगे। तब तक नीतूषा की ओर से प्रणाम, शुभ दिन।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। पिछली आधिकारिक गणना 2013 में हुई थी, जब मॉरिशस में लगभग 3 लाख आवारा कुत्ते दर्ज किए गए थे। तब से इस संख्या में क्या बदलाव आया है, इसकी कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और परोपकारियों का मानना है कि ये संख्या ज़रूर बढ़ी है। अब एम्सो जल्द ही इन जानवरों की नई गिनती शुरू करने वाला है। पहले की तरह रास्तों पर चलकर और पारंपरिक ट्रांसेक्ट सर्वे की बजाय अब इस कार्रवाई के लिए नई टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल होगा। एम्सो की तरफ से अब ड्रोन और थर्मल इमेजिंग के इस्तेमाल से आसमान से कुत्तों की गिनती की जाएगी। इन सेवाओं के लिए मार्केट रिसर्च का टेंडर पिछले फरवरी महीने में जारी किया गया था। ये एक ऐसा माध्यम है जिसका इस्तेमाल शायद ही कहीं और किया गया हो। यदि ये अभियान सफल हुआ तो मॉरिशस निश्चित रूप से इसे लागू करने वाले दुनिया के प्रथम देशों में से एक होगा। अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि में मदद करते हुए जनता की भविष्य की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए मूल ढांचों पर फिर से गौर करना, ये दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में 20 से 25 अगस्त के बीच आयोजित सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिंपोजियम 2026 में चर्चा में रहे मुख्य मुद्दों में से एक रहा। मॉरिशस के सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश ने इस सम्मेलन में मॉरिशस का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें अफ्रीकी महाद्वीप में मूल ढांचा विकास से जुड़े विभिन्न साझेदार एकत्र हुए थे। स्थानीय अभिनेताओं अभिनेत्रियों उभरते हुए स्क्रीन राइटर्स तथा सिनेमा के शौकीन लोगों के लिए यह अच्छी खबर। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जल्द ही मॉरिशन प्रतिभाओं की तलाश के वास्ते एक प्रतियोगिता शुरू करेगा। देश में फिल्म उद्योग को नई गति देने के मकसद से इस परियोजना के अंतर्गत एक मॉरिशस एंटरटेनमेंट अकेडमी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक स्थानीय स्टूडियो और कैंपस की स्थापना भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, नेपाल में हाइड्रो पावर परियोजना स्थलों की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इस बीच और मारे गए लोगों की खबरें सामने आ रही हैं। अभी तक इस आपदा में मरने वालों की संख्या 900 पार कर गई है और 4,247 लोगों के अभी भी लापता होने की खबर है। भारत और चीन से कई विशेषज्ञ टीमें वहां पे मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से एक सुरंग में फंसे लोगों के साथ संपर्क करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हो पाया है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। कैंसर

0: कौतों नंबर दो वाकवा में गैस कौतों नंबर दो वाकवा में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड श्री बिहारी सिबोरत जो राज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनकी माँ श्रीमती विद्यावंती मानती सिबोरत के मकान गैस कौतों नंबर दो वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सल्फेनियो नंबर 5 वाकवा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेथ हाउ फॉस नोन नेहरू रोड बेल्टिया फेनिक्स में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अमृता रुक्मिनिया पैदाशी नाम रामादीन जो रेशमा नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके पति श्री प्रवीण रुक्मिनिया के मकान नेहरू रोड बेल्टिया फेनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM नंबर 99 लापे स्ट्रीट पोर्ट लुइस में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की मिसेज हाफिजा बीबी करिम्बकस जो गोरी नाम से ज़रा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे इनके मकान लापे स्ट्रीट पोर्ट लुइस से उठाकर दफनाने के लिए गिश्त का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM पॉइंट डिस्नी रोड बुवालों में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड श्रीमती ललिता गुलजौ पैदाशी नाम बुलक सिंह जो अमृता नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके मकान पॉइंटेसनी रोड बुवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तो वो मेबा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM शेनफील्ड रोड हिविया जोपा में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड श्री देवानंद रामभरत जो जॉर्ज नाम से ज़रा जाने जाते थे और पहले हिविया जोपा में सिटीजन्स एडवाइस ब्यूरो के पूर्व कर्मचारी थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती कविता रामभरत के मकान शेनफील्ड रोड हिविया जोपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उत्तरीव की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 8:30 PM शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।
2: दिन के 11:06 हो रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से सुनिए दो विज्ञप्तियां। काहोइनुफ और आसपास के इलाकों के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि आज सोमवार 31 अगस्त को दोपहर बाद के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी, जबकि कल मंगलवार 1 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक NHDC सुल्याक और मोसलमा घीघरी में भी मरम्मत कार्यों के चलते ही बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जो ही मरम्मत कार्य पूरे होंगे बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की आपूर्ति को सामान्य पर ला दी जाएगी। इस असुविधा के लिए CB अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
3: शम्मे फरोजा

आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रखना हश्र में हमें अपने अर्श के साए तले, रखना हर्ष में हमें अपने अर्श के साए तले, काम वो करें कि नसीब हमें जन्नत हो जाए, काम वो करें कि नसीब हमें जन्नत हो जाए। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फजल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में आप समात फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक, हम्द, बयान, नातो सलाम और आपके पैगामात। ताखीर ना करते हुए आइए

और जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करें जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो उनसे कहो सलामुन अलैकुम, तुम्हारे रब ने अपनी जात पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है कि जो कोई तुम में से नादानी से कोई बुरी हरकत कर बैठे फिर उसके बाद तौबा कर ले और नेकुकार हो जाए तो वो बख्शने वाला है मेहरबान है। और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करती हैं ताकि तुम लोग उन पर अमल करो और इसलिए कि गुनहगारों का रास्ता जाहिर हो जाए।

ऐ पैगंबर, कुफार से कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मुझे उनकी इबादत से मना किया गया है। ये भी कह दो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करूंगा, ऐसा करूं तो गुमराह हो जाऊं और हिदायत याफ्ता लोगों में न रहूं।

कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार की दलील रोशन पर हूं और तुम उसकी तकजीब करते हो। जिस चीज यानी अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है, ऐसा हुक्म अल्लाह ही के इख्तियार में है। वो सच्ची बात बयान फरमाता है और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। कह दो कि जिस चीज के लिए तुम जल्दी कर रहे हो अगर वो मेरे इख्तियार में होती तो मुझ में और तुम में फैसला हो चुका होता, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी हुई है।

और वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए, फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है, फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा।

और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर कयामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक के बरहक अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है।

कहो भला तुमको जंगलों और दरियाओं के अंधेरों से कौन निकाल लाता है जबकि तुम उसे आजिजी से और चुपके चुपके पुकारते हो और कहते हो अगर अल्लाह हमको इस तंगी से नजात बख्शे तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार हों।

और जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो हमारी आयतों के बारे में बेहुदा बकवास कर रहे हों तो उनसे अलग हो जाओ यहां तक कि वो और बातों में मसरूफ हो जाएं।

और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, उनसे कुछ काम न रखो। हां, इस कुरान के जरिए से नसीहत करते रहो ताकि कयामत के दिन कोई अपने आमाल की सजा में हलाकत में न डाला जाए। उस रोज अल्लाह के सिवा न तो कोई उसका दोस्त होगा और न सिफारिश करने वाला, और अगर वो हर चीज जो रूए जमीन पर है बतौर मुआवजा देना चाहे तो वो उससे कबूल न हो। यही लोग हैं कि अपने आमाल के वबाल में हलाकत में डाले गए, सो इनके लिए पीने को खौलता हुआ पानी और दुख देने वाला अजाब है, इसलिए कि कुफ्र करते थे।

0: कहो क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारें जो ना हमारा भला कर सके ना बुरा, और जब हमको अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? फिर तो हमारी ऐसी मिसाल हो जैसे किसी को जिन्नात ने जंगल में भुला दिया हो और वो हैरान हो रहा हो और उसके कुछ रफीक हों जो उसको रस्ते की तरफ बुलाएं कि हमारे पास चला। कह दो कि रास्ता तो वही है जो अल्लाह ने बताया है और हमें तो ये हुक्म मिला है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार बने, और ये भी कि नमाज पढ़ते रहो और उससे डरते रहो, और वही तो है जिसके पास तुम जमा किए जाओगे, और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है, और जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा तो हश्र बरपा हो जाएगा, उसका इरशाद बरहक है, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन उसी की बादशाहत होगी, वही पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है और वही दाना है खबरदार है।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफें उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जिसने हमें पैदा फरमाया, हमें अशरफुल मखलूकात का शर्फ अता किया, अक्ल व शऊर से नवाजा और अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। वो रब कितना मेहरबान है जो

हमारी खामोश दुआओं को भी सुनता है, हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ है। हमारी ख़ताओं के बावजूद हमें अपनी नेमतों से महरूम नहीं करता और हर सुबह हमें ज़िंदगी का एक नया मौका देता है। ए पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावते कुरान पाक की तौफीक अता फरमा। आमीन।

0: सिर्फ़ पाक परवरदिगार ही वो ज़ात है जो हमारी ख़ताओं, कोताहियों, गलतियों और गुनाहों के बावजूद हमें बार बार माफ़ फरमाता है। हम बार बार भटकते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, मगर उसकी रहमत के दरवाज़े कभी बंद नहीं होते। बेशक हमारा रब बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। मौज़े सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं। पीर का दिन है, अगस्त की 31 तारीख है और माह नूर माह रबीउल अव्वल की आज 19 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251-7005, जी हाँ 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। अब आप समाअत फरमाएंगे मुबल्लिगे दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समाअत फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह करीम इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और एक फ़रिश्ता इस दुरूद पाक को मुझ तक पहुंचाने पर मुकर्रर है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला होज़नी रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है कि मुल्क शाम के मकाम हलब में मौज़ीन रसूल हज़रत सैयदुना बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु से मेरी मुलाकात हुई और मैंने इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़र्च के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ माल होता उसे खर्च करने की ज़िम्मेदारी मेरी होती थी। बायसत से वफात शरीफ तक ये काम मेरे हवाले रहा। जब कोई बेलिबास मुसलमान प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप मुझे हुक्म फरमाते और मैं किसी से कर्ज़ लेता और चादर ख़रीद कर उसे ओढ़ाता और खाना भी खिलाता। एक दिन एक मुशरिक मेरे पास आया और कहने लगा कि ए बिलाल, तुम मेरे सिवा किसी और से कर्ज़ ना लिया करो, मेरे पास कसीर माल है। मैंने ऐसा ही किया। एक दिन मैं वज़ू करके अज़ान देने के लिए खड़ा हुआ तो क्या देखता हूँ कि वो मुशरिक कई ताजिरों के हमरा मेरे पास आया और मुझे बहुत बुरा भला कहा और कहने लगा, तुम्हें कुछ मालूम है वादे में कितने दिन बाकी हैं? मैंने कहा, वक्त वादा करीब आ गया है। इसने कहा कि सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं, अगर इस मुद्दत में तुमने कर्ज़ अदा ना किया तो मैं तुम्हें ग़ुलाम बनाकर बकरियाँ चरवाऊँगा जैसा कि तुम पहले चराया करते थे। ये सुनकर मुझे फ़िक्र दामनगीर हो गई। यहाँ तक कि मैं इशा की नमाज़ पढ़ चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने काशाना अक़दस में तशरीफ़ ले गए। मैं इजाज़त लेकर हाजिर ख़िदमत हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों, वो मुशरिक जिससे मैं कर्ज़ लेता हूँ इसने मुझे ऐसा ऐसा कहा है, आपके पास

भी अदाए कर्ज के लिए कुछ नहीं और मेरे पास भी कुछ नहीं। वो मुझे फिर रुस्वा करेगा। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इन लोगों के पास जाऊं जो मुसलमान हो चुके हैं, यहाँ तक कि अल्लाह पाक अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना माल अता फरमाए कि जिससे मेरा कर्ज अदा हो जाए। ये कहकर मैं वहाँ से निकल आया। सुबह के वक्त जाने के इरादे से जब मैं बाहर निकला तो एक शख्स दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, ए बिलाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया है। मैं वहाँ पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि सामान से लदे हुए 4 ऊँट मौजूद हैं। मैंने अंदर जाने की इजाज़त मांगी तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो, अल्लाह पाक ने तुम्हारे कर्ज की अदायगी का सामान कर दिया। फिर फरमाया, तुमने 4 ऊँट देखे? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फरमाया, ये ऊँट हाकिम फदक ने भेजे हैं, ये इन पर लदा हुआ गल्ला और कपड़े सब तुम रख लो और इनके ज़रिए अपना कर्ज अदा कर दो। मैंने हुक्म पर अमल करते हुए ऐसा ही किया। फिर मैं मस्जिद में आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया तो आपने पूछा, इस माल से तुझे क्या फ़ायदा हासिल हुआ? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह पाक ने वो तमाम कर्ज अदा फरमा दिया जो इसके रसूल पर था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माल में से कुछ बाकी भी बचा है। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इससे भी बेताल्लुक़ करो, जब तक कि ये किसी ठिकाने ना लगे मैं घर नहीं जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईशा से फारिग हुए तो मुझे बुलाकर इस बकिया माल का हाल दरियाफ़्त किया। मैंने अर्ज़ किया, वो मेरे पास है, कोई साइल नहीं मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मस्जिद ही में रहे। दूसरे रोज़ नमाज ईशा के बाद फिर मुझे बुलाया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने आपको सुबकदोश कर दिया। ये सुनकर आपने तकबीर कही और ख़ुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और वो माल मेरे पास हो। इसके बाद मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि आपका आशाना अक़दस में तशरीफ़ ले गए। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, आपने सुना कि हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर सखावत फरमाया करते थे कि थोड़ा सा माल भी अपने पास रखना गवारा ना फरमाते, बल्कि जब तक लोगों में तकसीम ना फरमा देते उस वक्त तक मुतमईन ना होते थे। ख़ुद किसी चीज़ की हाजत होने के बावजूद भी गरीबों और मोहताजों पर सदका कर दिया करते और साहिल को इस कदर नवाजते कि उसे दोबारा मांगने की हाजत ही पेश ना आती। मगर अफसोस, सद अफसोस, हमारी हालत यह है कि दुनिया की मोहब्बत दिल से कम होने का नाम ही नहीं लेती। हर वक्त दुनिया की नेमतें और आसाइशें बढ़ाने ही की धुन लगी रहती है। हज़रत मजमा अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बुज़ुर्ग के मुतालिक बयान करते हैं कि उन्होंने फरमाया, अल्लाह पाक का मुझे दुनिया की आसाइशों से बचा लेने का एहसान इस दुनिया की कुशादगी, माल और दौलत वग़ैरह की सूरत में मिलने वाली नेमत से अफजल है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया को पसंद नहीं फरमाया। इसलिए मुझे वो नेमतें जो अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद फरमाई उन नेमतों से ज़्यादा प्यारी हैं जो इसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नापसंद फरमाई। याद रखिए, दुनिया के मालो दौलत की कसरत और इसकी खूब आसाइशें होना बेशक नेमत है, मगर इन चीज़ों से बच कर रहना ये बड़ी नेमत है। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, दुनिया मीठी सरसब्ज़ है, जो इसमें हलाल तरीके से माल कमाता है वो सही हकूक़ में खर्च करता है, अल्लाह पाक उसको सवाब अता फरमाएगा और उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और जो इसमें हराम तरीके से माल कमाता है और इसको गैर हक में खर्च करता है, अल्लाह पाक उसको दारुल हवान यानी ज़िल्लत के घर में दाखिल फरमाएगा। हज़रत अल्लामा अब्दुर्रऊफ़ मुनावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक के तहत फ्यूज़ुल क़दीर में तहरीर फरमाते हैं, मालूम हुआ कि दुनिया फ़ी नफ़्सी यानी दरअसल मज़मूम नहीं यानी बुरी नहीं है, चूँकि यह आखिरत की खेती है, इसलिए जो शख्स शरीयत की इजाज़त से दुनिया की कोई चीज़ हासिल करे तो ये चीज़ दुनिया यानी ये चीज़ आखिरत में उसकी मदद करती है। हमें भी चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा दुनिया के पीछे भागने और हराम ज़रा इख्तियार करके माल और दौलत जमा करने के बजाय रिस्क हलाल कमाने का जहन बनाएं और हज़्ब

Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Pyare pyare meethe meethe islami bhaiyo, hamare pyare aqa sallallahu alayhi wa sallam kis qadar sakhawat farmane wale the ke jo cheez apni zarurat ke liye khareedi hoti wo bhi batore tohfa kisi ko ata farma dete. Hame bhi chahiye ke hum bhi pyare aqa sallallahu alayhi wa sallam ki is pyari sunnat par amal karne और मुसलमानों के दिल में खुशी दाखिल करने की नियत से एक दूसरे को तोहफा पेश करने की आदत बनाएं कि तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है और अदावत दूर होती है. जैसा

0: हज़रत आता खुरासानी रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे के साथ मुसाफहा करो, इससे कीना जाता रहता है, और हदिया यानी तोहफ़ा भेजो, आपस में महब्बत होगी और दुश्मनी जाती रहेगी। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ये दोनों अमल बहुत ही मुजर्रब यानी तजर्बा शुदा हैं, जिससे मुसाफा करते रहो उससे दुश्मनी नहीं होती, अगर इत्तेफाकन कभी हो भी जाए तो उसकी बरकत से ठहरती नहीं है। यूं ही एक दूसरे को हदिया यानी तोहफ़ा देने से अदावतें ख़त्म हो जाती हैं। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, याद रखिए, तोहफ़े का लेन देन हो या फिर कोई और मामला, हलाल ज़रिया ही इख्तियार किया जाए, क्योंकि हराम ज़रिए से हासिल होने वाले माल को खाना पीना पहनना या किसी और काम में इस्तेमाल करना हराम व गुनाह है। इसकी सज़ा दुनिया में माल की किल्लत व ज़िल्लत और बेबरकती है, और आखिरत में सज़ा जहन्नम की भड़कती हुई आग का दर्दनाक अजाब है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स हराम माल कमाता है और फिर सदका करता है उससे कबूल नहीं किया जाएगा, और उससे खर्च करेगा तो इसके लिए इसमें बरकत ना होगी, और इसे अपने पीछे छोड़ेगा तो ये इसके लिए दोजक का ज़ादे राह होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि जायज़ तरीके से हलाल कमाएँ और अपनी ज़रूरत के अलावा जो बचता नज़र आए उसे फजूलियात में बर्बाद करने के बजाय अपने मोहताज व गरीब मुसलमान भाइयों की माली मदद करें। मसाजिद, मदारिस और नेक कामों में तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना माल खर्च करें, इंशाअल्लाह इसकी ढेरों बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबीयिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
1: मौज़े सामीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे मुबल्लिगे दावते इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सब्र बुर्दबारी की सिफ़ात नबूवत की अज़ीम तरीन सिफ़तों में से हैं। हदीस पाक में है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने कभी भी अपनी ज़ाती मामलात और मालो दौलत के सिलसिले में किसी से इंतकाम नहीं लिया, मगर उस शख्स से जिसने अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ को हराम करार दिया तो उससे अल्लाह ताला के ही लिए बदला लिया।

मौजूद सामीन, इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। शरीफ मातुआ, जी हाँ, शरीफ मातुआ ने अपनी मरहुमा बीबी मरहुमा फौजिया मातुआ, यानी ये बेगम है शरीफ साहब की, और मरहुमा फौजिया मातुआ के इंतकाल को 2 साल हो चुके हैं, उनके लिए ईसाल सवाब की गुजारिश की गई है। इसके अलावा पोटली से बीबी रादिया बीबी वाजिदा अपनी बेटी बीबी वाजिदा के लिए ढेर सारी दुआएं और प्यार भेज रही हैं, और सैंपल से रेहाना हुसैन बकस अपनी बहन मरहुमा बीबी फजीला हुसैन बकस, जिनके इंतकाल को आज 1 महीना हुआ है, उनके लिए ईसाल सवाब की गुजारिश कर रही हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। और रेहाना ने एक कलाम की फरमाइश भी की है। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाएगी। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

好听吗？好听，点赞、评论、关注、收藏、转发、弹幕支持一下，谢谢！别忘了强烈推荐哦。

819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

घड़ी मिला लीजिए, समय ठीक 2:30 बजे हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है और बिल्कुल 4 बजे तक हम आए हैं आज के इस पसंदीदा कार्यक्रम को लेकर। सोमवार का दिन है, 31 तारीख अगस्त महीना, और बिल्कुल अगस्त महीने का ये है आखिरी सोमवार। आपको ढेर सारी खुशियों के साथ आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ रत्ना, पहुंची हूँ आपका साथ देने के लिए।

जहाँ पर आपके पसंदीदा गीतों की फरमाइश आप हम तक पहुँचा सकते हैं 4028085 के माध्यम से, 4028085। और मैसेज अगर भेजना चाहते हैं तो 5251705 नंबर है रेडियो मॉरिशस का, जी हाँ 5251705। तो आइए धनवान के इस गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही लाजवाब सा ये गीत है, 90s के दौर का, और इस फिल्म में नजर आए थे अजय देवगन, करिश्मा कपूर और बिल्कुल मनीषा कोइराला। तो चलिए इसी गीत के साथ आज के इस बढ़िया कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

0: की पसंद।
1: भाई प्यार तो हो ही जाता है जहाँ पर दिल में मोहब्बत हो, एक दूसरे के लिए प्यार हो, जज्बात हो, सम्मान हो, वहाँ प्यार हो ही जाता है और प्यार बस यही मांगता है। चलिए इसी के साथ ये प्यार की दौलत लुटाते चले और आपकी पसंद कार्यक्रम का ये अगला गाना जो है जाएगा शकुंतला जी के लिए, जो मोताइलोंग से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और प्यारी ननंद गायत्री साथ है बेटा अजय और बेटी सुनीता अनवरफोंस से और नातिन है रिधि और फिल्म है एक फूल चार कांटे से लिया हुआ। ये अगला गीत लता जी की प्यारी सी आवाज़ में।

फिल्म मोहरा और गीत है उदित नारायण और साधना सरगम की प्यारी सी आवाज़ में, और ये गाना जाएगा अनीता जी की पसंद पर। फ्लिक ऑन फ्लैक्स से जो जुड़ी हुई हैं इस वक्त उनकी प्यारी बहनें अनुराधा और लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। तो चलिए ये प्यारा सा गीत आपके लिए और सभी सुनने वालों के नाम।

0: आपकी पसंद।
1: तो चलिए इसी के साथ बिल्कुल पौने तीन बज चुके हैं और आगे बढ़ते हैं इस अगले गीत की फरमाइश को लेते हैं, और ये है फिल्म सौतन से लिया हुआ गीत राधा जी की पसंद पर। सैपिये से भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये अगला गाना जाएगा रोशनी, शांता, अनीता और सभी सुनने वालों के नाम जिन जिन को ये गाना पसंद है। किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रखा हुआ गीत है। बिल्कुल 4 बजे तक ये कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा, तो ज़रूर हमारा साथ दीजिए।

चलिए इसी गीत के साथ हम नाम जोड़ना चाहेंगे सुनीता जी का, घोंगुप से भी जुड़ी हुई हैं, उनकी प्यारी बहन कुंगुमा से है विमला जी, और गुडलैंड से वीना जी और अमृता जी घोंगुप से ही साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति जी भी यूनियन पार्क से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मयूर, प्रीति, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और किनिता के साथ।

0: जिंदगी प्यार का गीत है, बस इसे गुनगुनाते रहना है और इसी के साथ
1: आपकी पसंद,
0: बिल्कुल आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम है। और यहाँ पर आफेज, आपका जन्मदिन आपने कल मनाया, आप बिल्कुल 30 तारीख को आपका जन्मदिन था, आपको कहेंगे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और इसी के साथ आपके बेटे, आपकी बेटी, बेटे, दामाद, बहू की ओर से, नाती पोतों की ओर से और शौहर की याद में आपने मांगा है एक प्यारा सा गाना जो आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और रनखटोला का ये गीत है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, पर बिल्कुल इस गीत को सुनकर आपकी आंखों में आंसू ना आए, क्योंकि कई बार हम आपको रुलाना तो नहीं चाहते पर ये जो गाने हैं ये हमारे दिल को चीर कर बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए इस गीत को हम करेंगे ज़रूर आपके लिए, क्योंकि आपका जन्मदिन है, हम आपको नाखुश नहीं करेंगे, पर बिल्कुल आप रोइएगा मत।

हर दिल जो प्यार करेगा वो तो गाना गाएगा ही। लता जी, मुकेश साहब और महेंद्र कपूर साहब की आवाज में रखा हुआ ये गाना जाएगा गीता जी की पसंद पर। पोंफिया से साथ दे रही हैं आप और आपके प्यारे पति रोहित, साथ है तीन नाते आदित्य आरव तानिश, साथ है प्यारी परी जानवी और आपकी तीन बेटे तीन बहुओं के नाम करेंगे संगम फिल्म का ये गीत। और साथ ही साथ शिमला जी आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बेलगोज की ओर से, बहन है रूमा, साथ है आरती, इंदिरा, भाई है राकेश और धीरज, बेटा नमलेश और बेटी कीर्तिना के नाम। चलिए यही गाना हमें जोड़ेगा सुपहर के 3 बजे के समाचारों के साथ। समाचारों के बाद इस कारवां को आगे बढ़ाते चलेंगे।

0: करेगा वो
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 3 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे समाज के हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रही है, लेकिन इससे मिलने वाले अवसरों के साथ साथ इसे सही तरीके से नियंत्रित करने का सवाल भी उठ रहा है। अफ्रीकी देशों की इन चुनौतियों से निपटने की तैयारी का स्तर जानने के लिए एक नया उपकरण लॉन्च किया गया है, अफ्रीकन AI गवर्नेंस इंडेक्स। ये सूचकांक अफ्रीकी संघ के 55 सदस्य देशों में AI के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियों, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है।

0: आज भुइनो लोगैत की दो पुस्तकों का विमोचन किया गया, द अम्ब्रेला द पावर बिहाइंड ग्लोबल लॉ और नाको टेरोरिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग इन अफ्रीका एंड द इंडियन ओशन। इनके जरिए भुइनो लोगैत संस्थाओं, सुरक्षा और सत्ता की सीमाओं पर अपने विचार सामने रखते हैं। विदेशी खबरों में नेपाल में आई जल प्रलय की भयावहता से दो दिन पहले ही पहाड़ खतरे के संकेत देने लगे थे। चीनी सीमा पर केरांग से लेकर त्रिशूली नदी और उसके पार नेपाल के रसुआ तक जगह जगह भूस्खलन होने लगा था। पहाड़ से पत्थर खिसक रहे थे और रास्ते बंद हो गए थे। नेपाल में लापता लोगों की संख्या बढ़कर 4,200 से ज्यादा हो गई है। राष्ट्रीय आपदा एजेंसी ने इसकी जानकारी दी। खोज अभियान में आग बुझाने और बचाव के लिए प्रशिक्षित कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। सीमा के दोनों तरफ मौसम का कोई भरोसा नहीं है, जिससे राहत और बचाव कार्य लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं। अगले 24 घंटों तक लगातार बारिश होने का अनुमान है। और आज तेल की कीमतों में 2% से ज़्यादा की तेज़ बढ़ोतरी हुई है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत फिर से $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। ये बढ़ोतरी तब हुई जब अमेरिकी सेना ने होर्मुज़ जलमार्ग में ईरान के लारक द्वीप पर दो ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया। जुलाई के अंत के बाद ईरान पर अमेरिका का ये पहला हमला है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। इकबाल रोड विचैमिल थ्रियोली में 58 साल के 58-year-old के जनाब अशरफ चेदी, जो अशरफ से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात 8:30 उनकी बेगम मिसेस बीबी रुखसाना मनबहाल के घर इकबाल रोड विचैमिल थ्रियोले से उठाकर खिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: इस समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल 3:03 हो चुके हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नजर डालते चले। ये विज्ञप्ति है सैंखुआ के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर एमिल बासेट, सेंट मैरी एपास, सेंट मैरी रूत बासैन नंबर 1, नंबर 2 मौसलमा लावाले और सोफिया लेन के निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 2 सितम्बर को सुबह 10 बजे से लेकर दिन के 1 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए इसी के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हैं आज के इस कार्यक्रम में। जी हाँ, आपकी पसंद का कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में हम ले रहे हैं हमारी अगली फरमाइश, जो है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रखा हुआ गीत। और ये है असली नकली फिल्म से लिया हुआ गीत, जो जाएगा रफ़ीक दौलत जी के लिए। प्लेन माइयों से भी हमारे साथ जुड़े हैं और उनकी प्यारी बेगम नूर जहाँ के नाम मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गीत।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद कार्यक्रम। और इसी के साथ चलिए अगला गाना जो है ये है विश्वानी दुबन की पसंद पर, फिल्म रंग का गीत, उनकी प्यारी बहनें इंदिरा और शारदा, नीला और प्रतिभा, और साथ है शोभा और गीता गजाधर, हमेशा साथ देती है। और गाना है अलका याग्निक और कुमार शानू, साथ है पी सुनंदा की आवाज़ में। और बिल्कुल आपको याद होगा इस फिल्म में दिव्या भारती और आयशा झुलका नजर आई थी विवेक सदाना के साथ।

0: मालिक।
1: भाई किसी से गाना मांगना, किसी के लिए गाना मांगना खता थोड़ी होती है। दिल को खुश करना यही तो प्यार का एक अंदाज होता है। और चलिए इसी प्यार के अंदाज को जारी रखते हैं। यहाँ पर अमीना जी हमारे साथ पोंप खाल से जुड़ चुके हैं और आज उनकी प्यारी भाभी जैबून का जन्मदिन है और प्यारी पांच ननंदे उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनको दिल से दुआ देती हैं। फाइमा, नाजमा, फाजिमा, अमीना, मुनीजा और साथ है शोहर कासम। और प्यारा सा ये गाना जाएगा जैबून आपके लिए लता जी की प्यारी सी आवाज में। चलिए खुशियां ऐसी ही हो, दिल हमेशा खुश रहे, पंछी की तरह आजाद पवन में उड़ता रहे। वैसे जहां हम खुशी की बात करते हैं वहां देजीना भी हमारे साथ पिचिकों से जुड़ चुकी हैं और आज उनकी प्यारी बेटी डॉक्टर विलाशा का जन्मदिन है जो विक्टोरिया हॉस्पिटल में इस वक्त है। और सी शंकर रावदी और साथ ही साथ दादी कृष्णावती उनको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं।

0: की पसंद।
1: 3:19 बिल्कुल 4 बजे तक जारी है हमारा ये प्यारा सा प्रोग्राम और यहाँ पर लीला जी आशिकी से साथ दे रही हैं। दिल बहुत उदास है क्योंकि जब अपने छोड़ चले जाते हैं दुनिया तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, मानो ज़िंदगी थम सी गई हो। और ऐसा ही कुछ उनके जीवन में हुआ है। उनकी प्यारी बहन तारा और जीजा हैं धनन, प्रीति है प्यारी सी बेटी कनाडा से, और बिल्कुल नीतीश सिकुरी को अंतिम विदाई। दिल कुछ भारी पुष्पांजलि का ये गाना उनके नाम करेंगे मुकेश साहब की आवाज़ में।

प्यारी सी आवाज मोहम्मद रफी साहब की फिल्म है गजल, और ये गाना जाएगा उदय जी के नाम। और विज पोस्ट से साथ दे रहे हैं प्यारी पत्नी संगीता, बेटी है स्मृति और कीर्ति, दामाद है नागेश, साथ है छोटा सा नाती केयान और उनकी प्यारी समधन ज्योति और समधी जी हैं सुनील, जो वाशिगी से इस वक्त हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं। और ये गाना जाएगा आपके सभी परिवारों के लिए।

फिल्म है सिकंदर आज़म, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ एक बार फिर, और ये गाना है शीला जी के पसंद पर जो दीपिने से जुड़ी हुई हैं और उनको ये गाना बेहद बेहद पसंद है।

भाई कुछ गीत कितने दिल से बनाए जाते हैं, जहाँ सुनो और उसका असर सीधा आपके दिल पर होता है और उसके उसका प्रमाण है आपके जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से जर्जर आंसू बहते हैं। और बिल्कुल इसी के साथ चलिए लाजवाब गीतों का ये सफ़र आगे बढ़ाते हुए, अगला गाना जो है बहुत ही मज़ेदार गीत है और ये है फिल्म शोर से लिया हुआ गीत, बसंती जी की पसंद पर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बोबासे से।

0: आपकी पसंद।
1: चलो इसी नगमे को गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते चले, और आंखों ही आंखों में जो इशारे हो जाते हैं उसका क्या कहें। ये अगला गीत है फिल्म CID से लिया हुआ, गीता दत्त की आवाज में साथ दिया है मोहम्मद रफी साहब ने, और यही गाना जाएगा शोभा जी के लिए। दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, माला, बिंदु, मलेगा से है अनुषा, किरण, कृषय, केशनी, प्रनीता, राम रतन, कुआरू, रिदोई, रघुबर और जालू परिवार के नाम। सुदेवी जी इस गीत की मांग कर रही हैं वक्वा से, तो आइए एंजॉय करते हैं ये गाना।

चलिए, इशारे तो होते रहते हैं, पर दिल जब किसी को याद कर ले तो भाई। बिल्कुल, मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़, और साथ दिया है मुकेश साहब ने, और ये गाना है बहुत ही प्यारा सा।

जी हाँ, दिल ने फिर याद किया, ये गाना है विद्या जी की पसंद पर। यूनियन पार्क से साथ दे रही हैं बहनें हैं सती, सुरेखा, बबीता और खासकर चाची कुमारी के लिए।

प्यार भाई कहीं दिल याद कर रहा है तो कहीं दिल भंवरा बने उड़ता फिर रहा है तेरे घर के सामने फिल्म से लिया हुआ ये गाना जाएगा गीता जी के लिए जो मोतीलाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई।

चलिए इसी के साथ रिहाना इस वक्त बिल्कुल ठंड के मारे कंबल में लेटे लेटे रेडियो को एंजॉय कर रही हैं। फिनिक्स से और चांदनी पुरुषोत्तम भी हमारे साथ जुड़ चुकी है ब्रिटानिया से। बंधु परिवार जुड़ा हुआ है त्रियोले से।

0: बस दिल का राग सुनते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी के साथ लता जी की आवाज में रखा हुआ अगला गीत है फिल्म आरती से लिया हुआ। ये गाना जाएगा मनीता जी के नाम, उनकी प्यारी मम्मी सुमानती और बहन है आरती, सचिता, बबीता, रेखा, भाभी है उषा, भाई है सत्यम, जो इस वक्त सेंट जूलिया विलाज से जुड़े हुए हैं।
1: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे
2: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद में चाहे गजल हो, चाहे फिल्मी गीत या फिर कोई भजन, बिल्कुल आप ही का कार्यक्रम है। तो ये अगला गाना जो है जाएगा हीरामती जी के लिए, जो बाशीगी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और जी हाँ, वैसे हीरामती जी आपका गाना हम थोड़ी ही देर में अभी चलाएंगे। ये गाना जाएगा शांति जी के लिए कॉटेज से, और बिल्कुल उन्होंने ये भजन की मांग की है। तीन बेटी तीन दामाद दो नाती नातीन, और उनके पति के लिए और सभी सुनने वालों के नाम, सभी MBC टीम के लिए।

0: दोनों।
1: चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर समाप्त करने का समय हो चला है दोस्तों। और आखिरी गीत जो है हीरामती जी की पसंद पर बुआशीगी से भी हमारा साथ दे रही हैं और आपकी पसंद कार्यक्रम का ये रहेगा अंतिम गीत। और ये है एक प्यारी सी गज़ल मुनावा परिवार के नाम। और इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम बस यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आप सभी ने ध्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बाद आप सुन पाएंगे प्रकाश कार्यक्रम ठीक 4 बजे। और ये कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण की जाएगी श्रीमती अंजू गर्बरन जी द्वारा। और बेशक हमारी और आपकी मुलाकात अब होगी ठीक 5:30 बजे बचपन ऐसा कार्यक्रम में, तो भूलिएगा नहीं। और इसी गीत के साथ हम लेंगे विदा। जी हाँ, गुलाम अली की आवाज़ में रखा हुआ ये गीत आज का ये अंतिम गीत। आपने ध्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। शुभ संध्या आप सभी को। नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: हिंदी माथे की बिंदी विश्व भाषा बनी हमारी हिंदी। सुनिए पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, प्रस्तुति श्रीमती अंजू गर्बरन की।
2: पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, गत कार्यक्रम में आपने एक छात्रा को सुना था जो एक सुंदर कहानी लेकर आई थी। केशव रिसोल जी यहाँ पर आज हमारे स्टूडियो में फिर से उपस्थित हुए हैं दो छात्राओं के साथ। एक है दिव्याशा और दूसरी है वशिष्ठा, जिनके साथ वे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। केशव रिसोल जी और दोनों छात्राओं को मैं स्वागत कहूंगी आज के प्रकाश कार्यक्रम में। माध्यम पाक्षिक कार्यक्रम का ये है और ध्येय भी ये है कि हम श्रोताओं तक हमारे छात्रों की

0: जो प्रतिभा है उन तक पहुँचे और इस प्रतिभा को और अच्छे से वे उभार पाएं। आज दिव्याशा और वशिष्ठा कविताएं लेकर आई हैं, तो चलिए आज के कार्यक्रम में कविताओं का आनंद लेते हैं, फिर केशव रिसोल जी से बात होगी।
1: सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मिदिदिन दिव्याशा है। आज मैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता भारत माता के बारे में बताने जा रही हूँ।
0: स्वागत है।
1: भारत माता एक देशभक्ति की भावना से भरी कविता है। इस कविता में कवि ने भारत को केवल एक भूमि या देश के रूप में नहीं बल्कि एक माँ के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उनके सुख दुख में साथ देती है और उनके लिए अनेक कष्ट सहती है, उसी प्रकार भारत माता भी अपने सभी नागरिकों को प्रेम और ममता प्रदान करती है। कवि के लिए भारत माता त्याग, ममता, सहनशीलता और शक्ति का प्रतीक है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता, उसकी हरियाली, नदियाँ, पर्वत और उसकी गौरवशाली परंपराओं भी कविता में दिखाई देती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कवि भारत माता के दुख संघर्ष को भी सामने लाता है। इससे हम यह समझने में मदद होती है कि देश के प्रति प्रेम केवल उसकी सुंदरता की प्रशंसा से नहीं बल्कि उसके दुखों और समस्याओं को समझने में होती है। मैं एक पद प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 30 कोटि संतान नग्नतन, अधर शुद्धित शोषित निरस्त्र जन, मूर असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। इस पद में कहा गया है भारत माता की 30 करोड़ संतान हैं जो वस्त्रों के अभाव के कारण नग्न शरीर हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है, जिसके कारण वह अशुद्धित हो रहे हैं, उसका निरंतर शोषण हो रहा है, रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र भी नहीं प्राप्त करते, अपने रक्षा करने के लिए कोई भी साधन उसके पास नहीं है, अन्न वस्त्र आदि न मिलने के कारण संपूर्ण समाज पीड़ित है। मूर्ता, असभ्यता, अशिक्षा और निर्धनता के कारण भारत की स्थिति इस प्रकार है, मानव अत्याचार और शोषण के कारण उसका सिर झुका हुआ है। अपने संतान के दुखों से संतप्त भारत माता ऐसी जान पड़ती है जैसे घर बार न होने के कारण किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए जीवन व्यतीत कर रही हो।
2: नमस्ते सभी को, मैं दुर्गेशना परम सिंह हूँ और मैं आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ महादेवी वर्मा जी। विरह का जलजात जीवन, वेदना में जन्म करुणा में मिला अवसर, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात, आंसुओं का कोश और दृक अश्रुओं का टकसाल, तरल जल कण से बने घन सा क्षणिक मृदु, जीवन विरह का जलजात, अश्रुओं से मधुकन लुताता आ यहाँ मधुमास, अश्रुओं ही की हाट बन आती करुण बरसात, जीवन विरह का जलजात, काल इसको दे गया पाल आंसुओं का हार, पूछता इसकी कथा निश्वास ही में बात, जीवन विरह का जलजात, जो तुम्हारा हो सके लीला कमल यहाँ आज, खिल उठे निरूपम तुम्हारी देख स्मित का प्राप्त, जीवन विरह का

0: जात।
1: बहुत सुंदर कविता है महादेवी वर्मा जी की। केशव जी, आपने इन दो छात्रों को तैयार किया इन कविताओं को प्रस्तुत करने के लिए,
2: जी
1: क्या सोचकर?
2: जी पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास में 4 काल हैं,
1: जी
2: तो छायावाद को लेकर मुझे अत्यंत प्रेम है उन कविताओं को पढ़ने के लिए, इसीलिए मैंने पंत जी और महादेवी वर्मा जी की कविताएं चुनी।
1: चुनी जी।
2: छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है, जिसका समय लगभग 1918 से 1936 माना जाता है, उसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन
1: पंत,
2: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी
1: वर्मा।
2: इन चारों कवियों ने हिंदी कविता को नई संवेदना, नई भाषा और नई दिशा प्रदान की। इसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जैसे कि प्रकृति का सौंदर्य पूर्ण और मानवीय चित्रण देखा जाता है इसमें, आत्मानुभूति और व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति।
1: ये इनकी कविता ने बहुत बखूबी बताया हमें, महादेवी वर्मा जी अपनी संवेदनाओं को लेकर बहुत अच्छे से प्रस्तुति देती थी अपनी कविताओं के माध्यम से।
2: हाँ।
1: जी
2: तो महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रमुख छायावादी कवित्रियों में गिना जाता है।
1: बिल्कुल।
2: तो जीवन विरह का जलजात, कविता में कवित्री ने विरह को केवल दुख के रूप में नहीं बल्कि जीवन की गहराई और आत्मानुभूति के रूप में चित्रित किया है।
1: बिल्कुल।
2: यहाँ जलजात अर्थात कमल का प्रतीक हमें यह संदेश देता है कि जैसे कमल जल में रहकर भी निर्मल और सुगंध बना रहता है, उसी प्रकार जीवन के दुख, वियोग और संघर्ष भी मनुष्य को संवेदनशील, धैर्यवान और परिपक्व बना सकते हैं। यह कविता हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विरह केवल पीड़ा ही नहीं देती बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती हैं और हमें आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करती है।
1: बहुत खूब आपने बताया। और महादेवी वर्मा की कविताएं तो इतनी सुंदर हैं और इसीलिए तो वो चौथा स्तंभ मानी जाती हैं छायावाद का। छात्रों को तैयारी करवाने में आपको कोई समस्या आती है या कि कविता की ओर उनका अपना ही झुकाव होता है?
2: नहीं, मैं बोलूँगा कि झुकाव है, कविता
1: झुकाव है
2: जी।
1: कहानी से अधिक झुकाव है या कि कविताओं के लिए?
2: नहीं, कहानी में।
1: कहानी हाँ, में
2: क्योंकि शायद बच्चों के लिए कहानी
1: आसान है,
2: आसान है,
1: आसान है, कविताएं मुश्किल होती हैं।
2: हाँ, कविताएं मुश्किल होती हैं क्योंकि जब हम कविता का उत्तर देते हैं तो हमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष ये सब इसमें
1: बताना
2: पड़ता है। रस है, छंद है, अलंकार
1: है। पूरा उसका विश्लेषण कर देते हैं कविता का तब उनके लिए आसानी पैदा होती होगी, ये ऐसा मेरा मानना है कि कोई भी विषय आप अच्छे से समझ लें तो उसको जानना आसान हो जाता है, जबकि कुछ कठिन शब्द होते होंगे, कुछ कठिनाई होती होगी, इसीलिए वे कविता को छोड़ के कहानी की ओर झुकते हैं। पर गुरुजनों का, गुरु बहनों का कर्तव्य है कि बच्चों के लिए वो पूरे समझा कर अगर कविता से

0: अगर कविता से
1: नहीं है
0: जी, कहानी
1: कहानी में शीर्षक है, एक कथोपकथन है
0: जी,
1: और शायद वार्तालाप भी होंगे, और अंत में उद्देश्य, भाषा शैली तो दोनों में है
0: जी,
1: कविता में भी है और कहानी में भी है।
0: तो कहानी की भाषा शैली उनको आसान लगती है बजाय के कविता की भाषा शैली जो है, क्योंकि कवि या कवित्री अपनी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, जबकि कहानी में वो आसानी से एक वाक्य से दूसरे वाक्य तक पहुंचते में समझ जाते हैं
1: जी।
0: उनका प्रयास होता है कि आसानी से कहानी पढ़ ली जाए, कविताओं की ओर झुकाव कम होता है। पर इनके झुकाव के लिए आप ऐसा विशेष क्या करते हैं कि वे कविता से भी कुछ सीख पाएं, कुछ प्रेरणा पा पाएं?
1: शायद मैं अलग पढ़ाता हूँ
0: जी,
1: क्योंकि कविता को लेकर 3 पंक्तियाँ या 4 पंक्तियाँ हैं, तो मैं पहला पंक्तियाँ पढ़ लेता हूँ, उसका सारांश,
0: उसका अर्थ, उसका सारांश
1: कर देता हूँ, कठिन शब्दों समझाता हूँ, और बाद में बच्चों को कहकर कि 2-3 या जो 4th पंक्तियाँ हैं वो अपने आप करें,
0: फिर वे आसानी से पकड़
1: पाते
0: हैं,
1: आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि कठिन शब्द तो मैंने बोल दिया है,
0: कठिन शब्द का अर्थ आप दे चुके हैं। तो कक्षा में कितने छात्र, मतलब अगर 40 छात्रों की एक कक्षा है तो उसमें से कितने का झुकाव कहानी की ओर है और कितने छात्रों का झुकाव कविता की ओर जाता है?
1: शायद हाफ हाफ, हाँ 20 कहानी के झुकाव में होंगे और 30 और 20 कविता,
0: हाँ तो आधा आधा है। तो ये छात्र की मनोदशा पे भी है आधारित, कहानी की ओर झुकते हैं या कि कविता की ओर। आपने ऐसा प्रयास किया कि उनकी तैयारी करवा के कविताएं उनको कंठस्थ कराई हैं, क्योंकि कविता का आनंद तभी है जब वे कंठस्थ हो जाए, क्योंकि रुक रुक के पढ़ना कविता का सार गायब कर जाता है। तो कहानी के जगह कविता को कंठस्थ कराना कितना मुश्किल होता है आपके लिए?
1: कविता को कंठस्थ करने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करना होगा,
0: अभ्यास की आवश्यकता विशेषता होती है
1: जी।
0: तो इन छात्रों को मैं कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आई स्टूडियो में, अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत की, और साथ ही आपके गुरुजी ने मेहनत की और आप तक ये संदेश पहुँचाया कि आप MBC आकर हमारी श्रोताओं के साथ अपनी कविताएं साझा कर पाएं। और आप गुरुजी को धन्यवाद देना चाहूँगी केशव रिसोल जी कि आपने ऐसा प्रयास किया कि अपने छात्रों की तैयारी करके आप स्टूडियो तक लेकर आए, कविता हमारे श्रोताओं के साथ बांटी। एक अन्य प्रयास के साथ आपको फिर जोड़ेंगे इसी कार्यक्रम में अन्य छात्रों को अवसर देने के लिए, क्योंकि हमारा ध्येय ये है कि छात्र अच्छे से हिंदी का प्रयोग जाने और सरल रूप से अपनी बात को अन्य लोगों तक पहुंचा पाएं, तभी आप भाषा समृद्ध हो पाएंगे, क्योंकि शब्द भंडार बहुत होता है, बहुत सी कहानियाँ भी आप पढ़ लेते हैं, कविताएं भी पढ़ लेते हैं, पर किसी मंच पर जाके बोलना या किसी रेडियो कार्यक्रम में बोलने के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ समझ होनी पड़ती है कि आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े। केशव जी, आपको भी आभार प्रकट करना चाहूँगी कि 2 छात्रों के साथ आप आज यहाँ पर उपस्थित हो पाए। यज को यहाँ धन्यवाद देंगे जिन्होंने कार्यक्रम आप तक पहुँचाने का हमारे साथ कार्यभार संभाला, और एक आप श्रोतागण में से भी किसी को भाग लेने की आवश्यकता सूझती हो या आप सोचते हो कि हम भी एक कार्यक्रम हिंदी में प्रस्तुत कर सकते हैं, भाषा सरल है ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए आपको भी हम आमंत्रित कर सकते हैं, प्रयास आपका हो अगर तो। बहुत बहुत आभार। एक अन्य कार्यक्रम में प्रकाश के साथ हम फिर जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सबको शुभ संध्या।
2: अभी आप सुन रहे थे पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, श्रीमती अंजू गर्वरन की।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। एमबीसी रेडियो आपके साथ।
3: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मॉरिशस की लहरों पर बचपन ऐसा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना और पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी हूं। आशा करते हैं आज की शाम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बीत रही होगी। तो चलिए बचपन ऐसा में आज कुछ ऐसी बचपन की यादों के साथ हम बातें करेंगे और किस प्रकार से पहले के ज़माने के बच्चे कलेक्टिंग में मानते थे, यानी कलेक्शन करना हॉबी हुआ करती थी उस ज़माने में। तो उस ज़माने की हॉबीज़ और इस ज़माने की हॉबीज़ में क्या अंतर आया है, इस पर आज के इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे और आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को आप दिल लगाकर सुनेंगे। तो चलिए आज के इस पहले गीत के साथ करते हैं एक लाजवाब सी शुरुआत।

दोस्तों, पुराने समय में यानी शुरुआती दौर में आज के आधुनिक युग में जो बच्चे हैं उनकी जो हॉबीज है वो बहुत हद तक अलग हुई हैं। बिल्कुल जैसे हम कहते थे ना, पहले के जमाने में कई सारे बच्चे कुछ ना कुछ चीजें इकट्ठा करने का शौक रखते थे। आज के जमाने के बच्चे भी भाई शौक तो रखते हैं, लेकिन उन दोनों शौकों में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। पुराने समय के बच्चों की अगर हम बात करें, यानी हम जब छोटे थे उस जमाने की अगर हम बात करें, तो उस जमाने में बच्चे मुख्य रूप से भौतिक यानी फिजिकल और प्राकृतिक चीजें इकट्ठा करना पसंद किया करते थे। अब जैसे देश विदेश की यानी विभिन्न देशों की डाक टिकट स्टैम्प्स का कलेक्शन किया करते थे, साथ ही साथ कई बार देश विदेश के पुराने सिक्कों में भी कई सारे लोगों को रुचि हुआ करती थी। ये तो चलो हुई बातें, पर साथ ही साथ हमारे यहाँ तो कई बार हमारे दोस्त भी ऐसे थे जो माचिस की डिब्बियों का कलेक्शन किया करते थे। मतलब रंगीन कवर्स वाली जो माचिस की डिब्बिया आती थी, हम उसे जमा किया करते थे। साथ ही साथ उस जमाने में कॉमिक्स की किताबें हुआ करती थी, कॉमिक बुक हुआ करती थी, जो बिल्कुल हमारे एक तरह का टाइम पास हुआ करता था। और इतनी ज्यादा खुशी होती थी अगर कोई हमें कॉमिक की किताब दे दे। इतना ही नहीं, आज के जमाने में स्लैम बुक्स, पर उस जमाने में ऑटोग्राफ बुक्स हम जमा किया करते थे, जिसमें हम कहीं पर हम चले जाएं और हमें कोई ऐसी सेलिब्रिटी दिख जाए, उनका ऑटोग्राफ उस किताब में हमें संजोकर रखने में एक अलग ही मजा आता था। ये थी हॉबीज पहले के जमाने की। आज के बच्चों में भी हॉबीज हैं, पर उनकी हॉबीज कुछ अलग प्रकार की। एक गीत का ब्रेक लेते हैं और आते हैं अभी थोड़ी ही देर में आपको बताने के लिए आज के जमाने में बच्चों को किन किन हॉबीज में खुशी मिलती है।

0: झुमका, नाक में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।
0: अगरबत्ती का छुआछा आग से बैठा पानी ताप।

0: देखो घूंघट डाल के चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पर से बट पर वोट मतलब क्या? माथे बोले मतलब हिंदी, हिंदी में अलजेब्रा छान। पी आई पी अटलवेर बनियान, पी आई पी अनवागान।
1: बचपन ऐसा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। रत्ना आप सभी के साथ जुड़ी हुई है मीडियम वाट 19 किलोहर्ट्ज़ पर। हर सोमवार की शाम 5:30 से 6 बजे के बीच हम आपके साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, आज का युग पहले के ज़माने से बहुत ही अलग है। आजकल के डिजिटल और तकनीकी युग में बच्चों के शौक बेशक बदले हैं। डिजिटल एसेट्स, जी हाँ, वीडियो गेम्स में स्किन्स और इमोट्स, ऐसे एसेट्स आज के बच्चे हमेशा कलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा खुशी अनुभव करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर तो एनिम मर्चेंडाइज यानी बिल्कुल पोस्टर्स या फिर छोटे कार्टून्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कलेक्ट करने में बच्चों को बेहद आनंद मिलता है। बिल्कुल एक समय था, आपने देखा होगा कई सारे बच्चों को हॉट व्हील्स यानी वो जो छोटी गाड़ियाँ जो बिल्कुल खींच कर आप उसे छोड़े और वो बस रफ्तार पकड़ती हुई दौड़ती हुई आगे निकले। हॉट व्हील्स की गाड़ियों का सिलेक्शन भी कलेक्शन भी करने में बच्चों को बेहद बेहद आनंद मिलता है। इतना ही नहीं, ट्रेडिंग कार्ड्स का भी कलेक्शन बच्चों को करना बेहद बेहद पसंद है आज के ज़माने में। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मार्वल डिज़्नी

और फनको पॉप के पुतले कलेक्ट करना और अपने टेबल पर सजा कर रखना बच्चों को बड़ा ही आनंद आता है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिनको जमा करने में बच्चों को एक अलग ही खुशी मिलती है। यानी आज के ज़माने में डिफरेंट टाइप के ईयरफोन्स, स्मार्ट वॉच बैंड्स और कीबोर्ड की कैप्स बच्चों को जमा करने में बड़ा ही आनंद आता है। ये तो चलिए रही कुछ चीज़ों या खिलौनों की बात, पर कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ही डेवलप्ड हैं और स्निकर्स बिल्कुल यानी ब्रांडेड और ट्रेंडी जूतों का कलेक्शन करना भी बेहद पसंद करते हैं। हो गई ना आपस में खुशबूस शुरू कि मुझे क्या पसंद है, तुझे क्या पसंद है। बिल्कुल रेडियो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसी ही लाजवाब बातों के साथ आपको बचपन की कुछ ऐसी ताज़ा तरोताज़ा यादें जो हमें सच में एक बार फिर बच्चा बनने पर मजबूर कर देती हैं।

तो दोस्तों, आज किस कार्यक्रम में हमने बात की कुछ ऐसी हॉबीज की, कुछ ऐसे कलेक्शंस की, और बिल्कुल पोस्टर्स के कलेक्शन को लेकर आज हम छोटे छोटे पुतले या छोटे छोटे ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स का समावेश करते हैं अपने बेडरूम में, अपने डाइनिंग एरिया में, जहाँ पर उनको देखकर हमें एक अलग ही खुशी मिलती है। और बचपन का जो दौर है वो बहुत ही स्पेशल होता है, और बचपन की यादें आज भी जब हम सुनते हैं, सोचते हैं या फिर बचपन की कोई फोटोग्राफ्स देखते हैं तो हमारा दिल और भी खुश हो जाता है। तो बस एक प्यारा सा बचपन सजाते हुए अपने बच्चों को भी हम एक अच्छा सा बचपन देने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि यही वो दिन है जो आगे चलकर उनकी एक अच्छी मेमोरीज वाली एल्बम में फिट इन होंगे। सही कहा ना? इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर फुल स्टॉप लगाने का समय हो चला है। आप सभी ने हमारा दिल से साथ दिया, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले सोमवार को एक और ऐसे नए कार्यक्रम के साथ, बचपन ऐसा। और बस एक हसीन शाम की शुभकामनाएं देते हुए आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर फुल स्टॉप लगाएंगे। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा?
1: पके पेड़ पर पका पपीता।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: सभी को हमारा नमस्कार। शाम के ठीक 6 बजे हैं।

पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के 6 दिन बाद भी हालात बहुत ही गंभीर बने हुए हैं। हजारों लोग अब भी लापता हैं और दुर्गम इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी हैं। नेपाल में जमीन पर कैसी है स्थिति, इसे लेकर नेपाल के पत्रकार दिवाकर राय से खास जानकारियां इस बुलेटिन में। सड़क हादसों और नशे में गाड़ी चलाने के बढ़ते मामलों के बीच सड़क सुरक्षा कानून को और कड़ा करने की तैयारी है। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल कल राष्ट्रसभा में पेश किया जाएगा, जिसमें वाहन जब्त करने से लेकर सजा बढ़ाने तक कई अहम बदलाव प्रस्तावित हैं। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन का अब पहले ही अनुमान लगाया जा सकेगा, इसके लिए एक नया एप्लीकेशन शुरू किया गया है, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र सहित कई बातों के आधार पर पेंशन की रकम का हिसाब लगाया जा सकता है। मॉरिशस की सहकारी संस्थाओं के लिए विदेशी बाजारों तक पहुंच आसान बनाने की पहल की गई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने गो एक्सपोर्ट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका मकसद स्थानीय सहकारी संस्थाओं को अपने सामान मॉरिशस से बाहर बेचने और निर्यात की दिशा में आगे बढ़ने में मदद देना है। और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी CSO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हैं। इस दौरान वे सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। वहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और विभिन्न समुदायों के लोगों से मुलाकात की। और अब समाचार विस्तार से। हिमालयी क्षेत्र में आई विनाशकारी बाढ़ के 6 दिन बाद भी नेपाल में हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं। कई इलाके अब भी तबाही के निशान समेटे हुए हैं। हजारों लोगों का कोई पता नहीं और बचाव दल समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं। सबसे कठिन तलाश उन सुरंगों में चल रही है, जहां हाइड्रो पावर

0: परियोजनाओं के सैकड़ों कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। दुर्गम पहाड़ी रास्ते और मलबे के बीच राहत अभियान लगातार जारी हैं। पड़ोसी तिब्बत में भी इस आपदा का भारी असर पड़ा है। नेपाल और हिमालयी क्षेत्र में बाढ़ के बाद कैसे हैं हालात, सुनते हैं इस रिपोर्ट में आस्था गोबिंद चितामन के साथ।
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के 6 दिन बाद भी तबाही का पूरा आंकलन नहीं हो पाया है। मृतकों और लापता लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार नेपाल में अब तक कम से कम 903 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,247 लोग अब भी लापता हैं। इनमें 3,655 नेपाली नागरिक और 592 विदेशी नागरिक शामिल हैं। बुधवार को नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास हिमनद का एक हिस्सा टूटने के बाद बर्फ, चट्टानों, मिट्टी और पानी का तेज बहाव नीचे की घाटियों की ओर आया। देखते ही देखते कई गांव इसकी चपेट में आ गई। सड़कें और पुल बह गए, बिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा और कई इलाकों का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया। इस समय बचाव दलों की सबसे बड़ी चिंता हाइड्रो पावर परियोजनाओं में काम करने वाली 937 लापता कर्मचारी है। रसुवा और नुवाकोट जिलों में 11 पनबिजली परियोजनाओं में उनकी तलाश की जा रही है। आशंका है कि इनमें से कई कर्मचारी सुरंगों के भीतर फंसे हो सकते हैं। सुरंगों में जमा भारी मात्रा में मिट्टी और मलबे को हटाने के लिए मशीनों और नियंत्रित विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ सुरंगों में बचाव दल प्रवेश करने में सफल हुए हैं, लेकिन तलाश अब भी जारी है। नेपाल की सेना, पुलिस और बचाव कर्मियों के साथ भारत और चीन के विशेषज्ञ भी अभियान में मदद कर रहे हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टरों के जरिए भोजन, दवाइयाँ और दूसरी जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है। आपदा के बाद नई चिंता संभावित भूस्खलन और पहाड़ी इलाकों में बने अस्थायी जलाशयों को लेकर भी है। अधिकारियों को आशंका है कि इनके टूटने से दोबारा बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रभावित इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है। सीमा के दूसरी ओर तिब्बत में भी तबाही हुई है। चीनी अधिकारियों के अनुसार वहां 16 लोगों की मौत हुई और 546 लोग लापता है। चीन ने 2000 से अधिक बचाव कर्मियों को अभियान में लगाया है। नेपाल में फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती हजारों लापता लोगों का पता लगाना है।
0: नेपाल की तस्वीरें तबाही की कहानी बता रही हैं, लेकिन जमीन पर हालात इससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हैं। राहत और बचाव अभियान के बीच हजारों परिवार अब भी अपनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति को और करीब से समझने के लिए हमारे सहयोगी शहजाद जुमन ने नेपाल के पत्रकार दिवाकर राय से बात की, उनको सुनते हैं।
2: More than 10,000 people have already been rescued, and we have again more than 20,000 segregated personnels deployed to various affected areas who are in the search and rescue operation right now. So, but the operation is being hampered by bad weather. Because it's monsoon here, and Nepal has lots of difficult terrains, and also the risk of landslide and further flooding has made the task very, very difficult. We have helicopter operations that have been affected by the weather. Looking at the scale of what happened last Wednesday, and looking at the scale of disaster that we saw and Nepal experienced, yes, there is a very, very real possibility that the death toll could rise further, unfortunately. In this situation, you know, nothing is enough, you know. No amount of money or no amount of assistance is enough. The only thing is we need to do our best. We need to, you know, give our best and try to help people in need.
0: साल की शुरुआत से अब तक हमारी सड़कों पर 103 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। 1500 से ज्यादा वाहन चालकों की अल्को टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 500 चालक ड्रग्स के प्रभाव में पाए गए। इन आंकड़ों के बीच रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल कल संसद में पेश किया जाएगा। ज्यादा जानकारियां इस रिपोर्ट में।
3: 1 जनवरी से अब तक यानी 8 महीनों में 1505 अल्को टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2025 में पूरे साल ये संख्या 968 थी। 494 चालकों को ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के लिए पॉजिटिव पाया गया। चिंताजनक आंकड़ों के बीच सरकार एक सख्त कदम प्रस्तावित कर रही है। उन चालकों के वाहन की जब्ती जिन्हें शराब या ड्रग्स के लिए पॉजिटिव पाया गया हो, रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के तहत

0: इसको ये अधिकार होगा कि यदि कोई चालक में शराब निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है, ड्रग्स टेस्ट में वो विफल रहता है या उसके शारीरिक व्यवहार में नशे के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं, तो पुलिस उसके वाहन को जब्त कर सकेगी। 8 महीनों में सड़क हादसों में 103 लोगों की मौत, इनमें दुपहिया वाहन इस्तेमाल करने वाले सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक 10,254 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस पर पेनल्टी पॉइंट्स लगाए जा चुके हैं। हाल के दिनों में रोड रेज यानी सड़क पर गुस्से और हिंसक व्यवहार की घटनाएं भी लगातार बढ़ी हैं। इस समस्या से निपटने के लिए विधेयक में रोड रेज से जुड़े व्यवहारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इस नए अपराध के दायरे में हमला करना या हमले की धमकी देना, अपशब्दों का इस्तेमाल, किसी आक्रामक हथियार का उपयोग, किसी वाहन को पकड़ कर लटकाना, वाहन का दरवाजा जबरन खोलने की कोशिश करना, वाहन को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक सड़क पर यातायात की स्वतंत्र आवाजाही में बाधा डालना या आम लोगों में डर पैदा करना शामिल हैं। रोड रेज के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और अधिकतम 12 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने और किसी अन्य व्यक्ति की मौत का कारण बनने को भी रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के तहत एक अलग अपराध बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकतम 5,00,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा। वहीं दोबारा अपराध करने पर अधिकतम जुर्माना बढ़कर 1,000,000 रुपए और अधिकतम जेल की सजा 8 साल तक हो सकती है।
1: अच्छी तरह से देखभाल की गई आर्टेरियोवेनस फिस्टुला डायलिसिस कराने वाले मरीजों के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। मॉरिशस के मरीजों को इसकी बेहतर देखभाल में मदद करने के लिए भारत से एक वास्कुलर सर्जन अपनी विशेषज्ञता साझा करने आए हैं। खून तक पहुंच के इस ज़रूरी रास्ते की बेहतर निगरानी के लिए अब एक नया ऐप भी मरीजों की मदद करेगा। ज़्यादा जानकारियाँ करुणा लालू के साथ।
0: कचमिलिया की मेडिक क्लिनिक में एक चिकित्सा कक्ष में श्री पी, जो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, पिछले 15 वर्षों से डायलिसिस पर हैं।
2: Une opération ça nous fait dès la 20 juin pour nous gagner pression 10 ans pour nous capable faire dialyse. Faut donc une bonne pression, un bon fistula et là que vous capable faire dialyse.
0: उनके रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उनके पास एक आर्टेरियोवेनस फिस्टुला यानी कि AVF है, लेकिन इस फिस्टुला की सुरक्षा और नियमित निगरानी आवश्यक है। मरीजों को इसकी बेहतर देखभाल करने में मदद करने के लिए भारत से एक वास्कुलर सर्जन को मॉरिशस आमंत्रित किया गया है। डॉक्टर हिमांशु वर्मा कहते हैं,
3: वी ट्रेन देम बाय स्पेशल टेक्निक बाय गिविंग देम स्टेथोस्कोप्स एंड वी ट्रेनड them how to listen to their fistula themselves. This technique will enable them to identify the problems in their fistula before it fails. That is a time window you can still fix it.
0: एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया जिसकी मदद से मरीज अपनी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख सकते हैं और अपनी AVF की निगरानी कर सकते हैं। इसमें खासतौर पर अपने रक्तचाप की नियमित जांच और निगरानी की सुविधा शामिल है। मॉरिशस में लगभग 1500 मरीज डायलिसिस पर हैं। इनमें से करीब 150 मरीज अभी एक कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं जिसे उदाहरण के लिए गर्दन में लगाया जाता है और जिसके जरिए डायलिसिस किया जाता है।
4: कैथेटर डी प्रोन टू इन्फेक्शन ए एंजिमून सी डी गेन इन्फेक्शन डी कैपेबल डेवलप एन सेप्टिसेमी ए सा कैपेबल कुट मेम सू ला वी।
0: इसका उद्देश्य मरीजों को अपनी फिस्टुला को अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखने में मदद करना है, क्योंकि एक AVF कई वर्षों तक मरीज का साथ दे सकती है। डायलिसिस किसी मरीज के जीवन का अंत नहीं, कुछ मरीज इसके साथ कई वर्षों तक और कभी कभी कई दशकों तक भी जीवन जीते हैं।
1: रिटायरमेंट की उम्र में मिलने वाली पेंशन की गणना करने वाला ऐप पिछले सप्ताह लॉन्च किया गया। इस सिमुलेशन में कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे रिटायरमेंट की उम्र, महंगाई और रिटायरमेंट की उम्र के आधार पर कटौती और बोनस की व्यवस्था। मॉरिशस की सहकारी संस्थाओं के लिए अब विदेशी बाजारों के दरवाजे खोलने की पहल

0: इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने आज गो एक्सपोर्ट कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य स्थानीय सहकारी संस्थाओं को अपने सामान मॉरिशस से बाहर बेचने और निर्यात की दिशा में आगे बढ़ने में मदद देना है। ये पहल ऐसे समय में हुई है जब ईडीबी की योजनाओं के जरिए पहले ही सैकड़ों स्थानीय कंपनियों को निर्यात के लिए वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। और विदेशी खबरों में, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीएसओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हैं। इस दौरान वे सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। वहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और विभिन्न समुदायों के लोगों से मुलाकात की। पेश है रिपोर्ट।
1: भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। बिश्केक पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने वहां विभिन्न समुदायों के लोगों से मुलाकात की। उनके होटल में वंदे मातरम के नारों के साथ उनका अभिवादन किया गया। इस दौरान माँ तुझे सलाम पर योग की प्रस्तुति हुई, साथ ही भगवान शिव पर आधारित एक सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किया गया।

0: अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल जाकर भारत के राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्प अर्पित किए और महात्मा गांधी को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर किर्गिस्तान पहुंचे हैं। वे 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले 26वें SCO लीडरशिप समिट में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों का भी कार्यक्रम है। SCO इस वर्ष अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा कर रहा है। संगठन में फिलहाल 10 सदस्य देश हैं। भारत के अलावा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस इसके सदस्य हैं। किर्गिस्तान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि भारत क्षेत्र में सुरक्षा, संपर्क और अवसरों को आगे बढ़ाने के अपने दृष्टिकोण पर काम करना चाहता है। उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए SCO देशों के साथ मिलकर काम करने की भी बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी का बिश्केक दौरा उनकी 2 दिवसीय उज्बेकिस्तान यात्रा के बाद हो रहा है।
1: प्रीमियर लीग के दूसरे दिन के मुकाबले जारी हैं और इंग्लैंड के मैदानों पर एक बार फिर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इप्सविच के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इप्सविच को 5-2 से हराया, जबकि चेल्सी को ब्राइटन को हराने के लिए आखिरी तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। स्कोर 4-3 रहा। करुणा लालू।
2: ओल्ड ट्रैफोर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पीछे रहने के बाद शानदार वापसी की और फिर मैच पर पूरी तरह अपना दबदबा बना लिया। 29वें मिनट में डेविस ने टक्टर बॉयज के लिए पहला गोल किया। 40वें मिनट में ब्रूनो फर्नांडिस ने गोल कर दोनों टीमों को बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ की शुरुआत के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैच की कमान अपने हाथों में ले ली। 56वें मिनट में ग्रीव्स ने गोल कर यूनाइटेड को बरहत दिला दी। शानदार प्रदर्शन कर रहे रेड डेविल्स के कप्तान ने फिर कमाल किया। ब्रूनो फर्नांडिस ने 61वें मिनट में पेनल्टी पर अपना दूसरा गोल दागा और 68वें मिनट में एक और गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। एम्ब्यूमो ने भी गोल कर जश्न में अपना नाम जोड़ा, जबकि अतिरिक्त समय में अकपुम ने गोल कर अंतर कुछ कम किया। अंतिम स्कोर 5-2। ये जीत माइकल कारिक की टीम के लिए काफ़ी राहत देने वाली रही, खासकर हल सिटी के खिलाफ बेहद खराब शुरुआत के बाद। वहीं चेल्सी ने भी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। ब्लूज ने स्टैमफोर्ड ब्रिज में ब्राइटन को 4-3 से हराकर अपनी दूसरी जीत हासिल की। लाविया ने मैच के 4वें मिनट

0: में ही गोल कर चेल्सी को बढ़त दिला दी। इसके बाद 14वें मिनट में पेड्रो नेटो ने दूसरा गोल दाग दिया। फिर 32वें मिनट में जोआओ पेड्रो ने गोल कर चेल्सी की बढ़त और मजबूत कर दी। इसके ठीक 3 मिनट बाद ब्राइटन ने याल्कुए के गोल से वापसी की कोशिश की। दूसरे हाफ में सिगल्स ने अंतर और कम कर दिया। 63वें मिनट में जोआओ पेड्रो ने आत्मघाती गोल किया, लेकिन 74वें मिनट में पाल्मर ने शानदार शॉट के जरिए ब्लूज को फिर से राहत दिलाई। और हालांकि अतिरिक्त समय में 96वें मिनट पर ग्रॉस ने एक और गोल कर अंतर कम किया, चेल्सी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। अंतिम स्कोर 4-3, 2 मैच 2 जीत। चेल्सी ने अपने धमाकेदार आगाज की पुष्टि कर दी।
1: और अब पेश है मौसम संबंधी जानकारियां। मस्करिंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर तेज हवाएं चल रही हैं। आज रात बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी, खासकर पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर कहीं कहीं कोहरे भी छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 19 से 22 और साहिली इलाकों पर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:18 पर सूरज निकलेगा।

और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे। इकबाल रोड विच एमिल त्रियोली में 58 साल के 58 ईयर ओल्ड के जनाब अशरफ चेदी, जो अशरफ से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात 8:30 उनकी बेगम बीबी रुखसाना मुनबहाल के घर इकबाल रोड विच एमिल त्रियोली से उठाकर गिश्तिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8:30 PM। रॉयल रोड रोजबेल में सुपरकाश के पास 45 साल की 45 ईयर ओल्ड की मिसेस बीबी फजाना महमूद अली, पैदाइश नाम इस्लाम और जो फजाना से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज रात 9:00 उनके दामाद मोहम्मद यशिर परमिसा के घर रॉयल रोड रोजबेल सुपरकाश के पास से उठाकर प्लेनमायों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9:00 PM। अवका स्ट्रीट मौलाशू में 70 साल की 70 ईयर ओल्ड की श्रीमती शीला सिचोन, पैदाइश नाम मंगा, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:00 उनके बेटे राकेश सिचोन के घर अवका स्ट्रीट मौलाशू से उठाकर काथोकोको की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 11:00 AM। जब्बू लेन थोबिश रोड त्रियोली में 78 साल के 78 ईयर ओल्ड के श्री बाबू राव दुखी, जो विजय से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पहले कृषि उद्योग मंत्रालय अब्याकोम्बी में काम करते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सपहर बाद के 3:00 उनकी पत्नी जयंती दुखी के घर जब्बू लेन थोबिश रोड त्रियोली से उठाकर तेमिनिस त्रियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 3:00 PM। शेनफील रोड रिवियर जुरांपा में 66 साल के 66 ईयर ओल्ड के श्री देवानंद रामबरत, जो जॉर्ज से ज़्यादा जाने जाते थे और रिवियर जुरांपा

के CAB दफ्तर में काम करते थे कि मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 उनकी पत्नी कविता रामबरत के घर शनफिल गोद रिविया जुगौपा से उठाकर उतरीव रिविया जुगौपा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमरो एट 12:30 PM। पेंडिसनी रोड बुवालों में 67 साल की 67-year-old की श्रीमती ललिता गुलजा, पैदाइश नाम बुलक सिंह और जो

जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नुवेल फॉन्स में 49 साल के श्री अशोक कुमार कुरमुल, जो विशाल से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी पिंकी और भाई धीरज कुरमुल के घर नुवेल फॉन्स से उठाकर मार्गजानी रोजबेल का कब्रिस्तान ले जाई जाएगी और दफनाने के लिए मार्गजानी का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुमारो एट 9:30 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल मंगलवार 1 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक NHDC सुयाक और मोसल मोंग्रीग्री में और परसों बुधवार 2 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक सैंक्वा और आसपास के इलाकों में एमिल बासे सेंट मारी एपास सेंट मारी रूट बासिन नंबर 1 और 2 मोसलमों लावाले और सोफिया लेन में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

चेंज हो मामा ओके मामा नाउ ट्यून चेंज काइंड ऑफ क्लास ओनली इंग्लिश है।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे। सादर प्रणाम श्रोताओं, दिल से स्वागत करते हैं आप सभी का। आप सुन रहे हैं अपना आध्यात्मिक कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम। मैं हूँ देवीना और आज सोमवार की इस पावन संध्या पर आइए कुछ पल के लिए संसार को पीछे छोड़ते हैं, मन को शांत करते हैं, आंखें बंद करें और अपने भीतर बसे उस परमात्मा को याद करें। क्योंकि दिन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, प्रभु का नाम लेने के लिए कुछ पल हमेशा सदा के लिए निकाले जा सकते हैं। और आज इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं इस सुविचार के साथ, जिस मन में प्रभु का नाम बस जाता है उस मन में भय के लिए जगह कम हो जाती है। तो आइए प्रेम से कहते हैं हर हर महादेव।

श्रोताओ, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। भोलेनाथ जो थोड़े से जल तथा सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याण। जब मन परेशान हो तो शिव को याद कीजिए, जब मार्ग कठिन लगे तो शिव जी को याद कीजिए, तथा जब जीवन में खुशियां हो तब भी शिव को धन्यवाद देना मत भूलिए, क्योंकि भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं है, भक्ति तो धन्यवाद देने का भी नाम है। आइए इसी भावना के साथ सुनते हैं एक और मधुर भजन।

जय श्रोताओ, आप सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर भज्य प्रभु का नाम कार्यक्रम। आज का शुद्ध विचार आपके लिए, परिस्थितियां। रेडियो मॉरिशस पर आप सुन पा रहे हैं भज्य प्रभु का नाम कार्यक्रम। आज का शुद्ध विचार आपके लिए, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती श्रोताओ, परंतु उन परिस्थितियों में हमारा विश्वास हमारे साथ में होता है। इसलिए अगर आज का दिन आपके मन मुताबिक नहीं रहा तो उदास मत होइए। हो सकता है प्रभु आपको किसी ऐसी राह पर ले जा रहे हैं जहां आपके लिए कुछ और सुंदर लिखा हो। कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी नहीं। समय प्रभु का है, विश्वास हमारा। केवल विश्वास बनाए रखिए। तो चलते हैं अगले भजन की ओर।

कहीं भी आप हमें सुन रहे हैं, घर में, परिवार के साथ, सफर में, नौकरी के बाद आराम करते हुए, आज कुछ पल केवल अपने लिए तथा अपने प्रभु के लिए निकालिए। अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने जीवन साथी, भाई बहन, मित्रों तथा प्रियजनों के लिए प्रार्थना कीजिए, तथा उन लोगों के लिए भी जिन्होंने कभी आपका दिल दुखाया हो, जो आपको नहीं जानते हो, जो आप उनको नहीं जानते हैं, बस उनके लिए प्रार्थना करें। समस्त संसार के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जहां मन में प्रेम हो, क्षमा हो तथा करुणा हो।

जहाँ श्रोताओ, इसी सुंदर प्रार्थना तथा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज के भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ गया है। स्मरण रखिए, सुबह की शुरुआत प्रभु के नाम से कीजिए, दिन विश्वास के साथ बिताइए तथा रात प्रभु को धन्यवाद देकर समाप्त कीजिए, क्योंकि जिसके सिर पर प्रभु का नाम हो उसके जीवन में उम्मीद की कमी नहीं होती। मैं हूँ दिविना, आप सभी से अनुमति चाहूंगी, फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में। तब तक मुस्कुराते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए तथा अपने मन में विश्वास जगाए रखिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि। सादर प्रणाम।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मग़फ़िरत तलब करते हैं. हम अपने नफ्स के शर से और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं. अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता. और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं. और मैं गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है. सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ये रेडियो मॉरिशस की उर्दू नशरियात है. मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज जान अली. महफिल शब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है. अंजू टेक्निकी मदद दे रही हैं. प्रोग्राम का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करते हैं. अल्लामा इकबाल का फरमाना है, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه

इब्ने माजा की रिवायत है, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि अगर मैं वो करूं तो अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत से किनारा कशी इख्तियार कर लो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और जो कुछ लोगों के पास है उसकी तमन्ना छोड़ दो तो लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे।

या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लम अता हो इज़्न हाज़री का दर खैरुल वरा की आरज़ू है, दयारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लम की आरज़ू है, दिखा दे रहमत आलम का रोज़ा यही हरबे नवा की आरज़ू है, रहे हरदम ज़बाँ पे नाम उनका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही जज्बे वफा की आरज़ू है, करूँ जाली के आगे नात खानी यही नुक्तो सदा की आरज़ू है, हबीबे किब्रिया सल्लल्लाहु सल्लम का इश्क बहजाद हकीकत में खुदा जलल्लाह की आरज़ू है। गज़ल अज़ बहजाद लखनवी। सामीन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। टेक्निकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे। अपना ख्याल रखें। शब बखैर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
4: जी हाँ, आज की रात 31 अगस्त 2026 लेंदी के रात है, 9:02 होलबा। हम किरण आप सब कोई के स्वागत करत है, हमार करजोर नमस्ते स्वीकार कर। आशा करत है जा कि आज के इजोन सप्ताह बा आप सब कोई खातिर बहुत अच्छा से शुरू होलबा। थोड़ा कठिन लगेला ये सप्ताह के पहला दिन, लेकिन एक बार जे ई शुरू हो गल, सांझ हो गल, तो मतलब कि दिन कट गल जैसे तैसे, और अब ई सप्ताह के पूरा करे में ढेर घड़ी भी नहीं लगी। देखा देखते देखते ई महीना के आखिर तक चले ली जा। आज 31 अगस्त है, काल से सितंबर महीना के पहला दिन चढ़ जाए। तो आप सब कोई के ई पहला सितंबर के तारीख बहुत बहुत शुभ रही, ऐसन उम्मीद के साथ शुरू करी जा ई पहला गीत रागिनी सवारत के आवाज़ में।

रात के 9:13 होलबा और आप लोग साथ देवा था वजह ये सर्दी मौसम में कहूँ कहूँ बरसाती मौसम भी बा हवा पानी थोड़ा दिन से काफ़ी ओकर असर पड़ा था हमने के मौसम पर हमने के सेहत पर हमने के मिजाज पर और ऐसन में मसाला के तकारी चाहे पकावे के चाहे मसाला पीसे के और ये गीत सुने चाहत हवन बड़की मसाला पीसेला शीला और उनकर पति सुरेन और आप लोग अपन सब लेखा लोग के नाम ये गीत कर रहा था वजह ख़ास तौर पर अभी जे आपके साथ हवन सोनम और आपके पोता यौवन और साथ में कृष रिदोई के ई आवाज़ में ये गीत के जितना कोई भी पसंद करे लजा आप सब कोई के नाम ये अगला गीत और आपके फरमाइश ऐते बा आपके फरमाइश के बल पर ही ये प्लेलिस्ट फिर से बन ले जाला तो फ़ोन करा और अपन गीत

0: क्रिश रिदोई के आवाज में ये गीत के बाद जो नगला गीत के फरमाइश आलबा यहाँ पर मसाला के बात चलल, खाए पिए के बात चलल जो रसोई में बनेला और रसोई में ही रह जा। अब बसंत सुपोल जी हमने के कौन सी बेला था एकर बारे में बोलियन, बेलेला ये गीत सुने चाहत हवन छोटी पोलॉजिए से। और आप ये गीत ललिता प्रभावती दादी हरीश भैया और आत्माराम भैया के नाम करत हवा। और बसंत सुपोल के आवाज़ में ये गीत आप सब कोई के नाम जेकर ये गीत बहुत मनपसंद है।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

0: का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

रात के 9:26 होल बा और अगला जन गीत के फरमाइश आल बा वह सुनीता ननकू के आवाज़ में चमेली चमेली ई गीत सुने चाहत हवन पितों से अमृता गणेश। आप ई गीत पूरा गणेश परिवार के नाम करत हव, साथ में अपन पोती सोनिया परी, मीनाक्षी विशान और अपन बेटी के नाम और जितना कोई ई गीत खुशी रहेला जा आप सब कोई के नाम, जितना कोई ई बखत काम करत हव जा या फिर आराम करत हव जा या फिर ई बखत भोजन होवत होई त आप सब कोई के अमृता जी याद करत हवन और ई गीत आप सब कोई के नाम करत हवन।

नाकों के फुलिया भुइया गिरल जाला ई गीत संभावती दुमन के आवाज में मेविन के ओर से, बुनतिया के जानवी के नाम और ललिता जी के ओर से सुकलाल मौसी, देवीना, ज्ञानी, छोटी, प्रभावती, आत्माराम भैया और हरीश भैया के नाम।

अगला गाना सुना नुयान की आवाज में, साधु के बोली बोल के करनी करे सैतान, ई गीत के मांग कर लेवन आत्माराम जी बेलिया से, अपन चार गो बहिन ललिता, छोटी, प्रभावती और सुदेवी के नाम।

सुना नोयान के आवाज के बाद अगला जो गीत सुनबा वह सुमन रामतोहल के आवाज में बरसेला बरसेला। ये गीत सुने चाहत हवन फिनिक्स से रेहाना।

0: जीवन संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music all day, all night.

मैंने प्यार किया फिल्म से ये जो अगला गीत चला था शारदा सिन्हा के आवाज में, एक फरमाइश कर ले हवन बुआशरी से धनी जी, धनी जी के ये मनपसंद गीत था और आप सबको के नाम धनी जी के ओर से शारदा सिन्हा के आवाज में कहे तो से सजना।

0: का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night.

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day.

रात के 11 बजे में अब खाली 7 मिनट बाकी बा और आप लोग अभी ले प्यार से साथ देला जा। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। हमने के मुलाकात कल फजर के फिर से हुई हमारी धरोहर प्रोग्राम में और नहीं तो ई कार्यक्रम में भोजपुरी तड़का में फिर से मिलब जा बीफे के। आप सबको के शुभरात्रि और काल फजर के जो नवा दिन रही नवा महीना रही आप सबको खातिर बहुत शुभ रही ऐसा हमार शुभकामना बा। नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे लवली लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। गिनिशा बड़े प्यार से आई है आप लोगों का साथ निभाने के लिए इस प्यारे से सफर में। आपका सुनहरे पल, आपका दिल से स्वागत है। आज फिर हम लेकर आए हैं वो अनमोल नगमे जो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जिंदगी के हसीन लम्हों का एहसास है दोस्तों। तो बस मुस्कुराइए और यादों की इस महफिल का हिस्सा बन जाइए।

दोस्तों, हर पुराना गीत एक खुशबू की तरह होता है। जैसे ही सुनाई देता है, दिल पुरानी यादों के बाग में खो जाता है। आज के सफर में हम मिलकर उन यादों को फिर से महसूस करेंगे। तो बैठ जाइए आराम से और अगला नगमा आपके नाम।

कभी किसी गाने ने आपको अपने स्कूल की याद दिलाई है, या किसी अपनों की मुस्कान, या हो सकता है किसी का प्यार। वैसे भी आज के हर गीत में वही जादू छुपा है, तो बने रहिए हमारे साथ सुनहरे पल में। इस खूबसूरत से शो में हम लेकर आए हैं आपके मनपसंद गीत, तो चलिए अगला नगमा आप गुनगुनाइएगा जरूर और अपनी उन खूबसूरत यादों को फिर से याद कर लीजिए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रात कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, एक प्यारा सा पुराना गाना दिल को फिर से ताजा कर ही देता है। आज हम वही सुकून और प्यार लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए इस खूबसूरत से शो में। वैसे जिंदगी बदलती रहती है, लेकिन कुछ गीत हमेशा दिल में रहते हैं। आज उन्हीं एवरग्रीन मेलोडीज के साथ अपनी रात को यादगार बनाइए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।
2: अरे वही तो है।

0: पर सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो की दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास तब होता है जब एक गीत आपके दिल की बात कह जाए। शायद, बिल्कुल जी शायद आज का अगला गीत भी आपके लिए कुछ खास हो, किसको पता।

पुराने गीतों की बात ही अलग होती है मेरी जान, ना उनमें शोर होता है ना दिखावा, सिर्फ दिल से निकली हुई आवाज और रूह को छू लेने वाले सुर होते हैं। तो चलिए आप तैयार हो जाइए अगले गीत में खो जाने के लिए।

पुराने गीतों की बात ही अलग होती है मेरी जान, ना उनमें शोर होता है ना दिखावा, सिर्फ दिल से निकली हुई आवाज और रूह को छू लेने वाले सुर होते हैं। तो चलिए आप तैयार हो जाइए अगले गीत में खो जाने के लिए।

खूबसूरत नगमे सुनाते सुनाते इस खूबसूरत शो का अंत में कब पहुंच गया हमें पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है जब इंसान इन खूबसूरत नगमों में खो ही जाते हैं, जैसे कि हम अभी अभी खो गए थे इस एक घंटे की सफ़र में। लेकिन दिल छोटा ना कीजिए, फिर से आएंगे एक और खूबसूरत सी सफ़र के साथ रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, सिर्फ सुनहरे पल में आपके लिए ऑन रेडियो मॉरिशस। हमें इजाज़त दीजिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: Hey, hey, hey.

0: MBC Radio, your music companion.
1: श्री आर डी बर्मन जी हमेशा इंस्पिरेशन उनसे हमने लिया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए लाइफ में, कई इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किए, जैसे 12 स्ट्रिंग गिटार, मादल, बेस गिटार। एक बार इस इंडस्ट्री में म्यूजिशियनों की स्ट्राइक हो गई थी, कोई म्यूजिशियन बजा नहीं रहा था,
2: किसी को गाना रिकॉर्ड करना था। तो देखिए इंस्पिरेशन कैसे काम आती है। पंचम दा ने गाना रिकॉर्ड किया, वो गाना बहुत चला और उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें जो म्यूजिक के इंटरलूड्स हैं वो कुछ नहीं है, रिदम चल रहा है, एक आदाब जैसी वॉइस डायलॉग बोलती है, एक इंजन का इफेक्ट दे दिया है और गाना स्मूथली निकल गया। देखिए

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है?

0: गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन।
1: दिल रुबा, दिल पे तू

0: लगे हैं बुलबुलाओं में।
1: एक डोर में होते हैं दो मोती
0: एक साथ धड़के हैं।